सुप्रभात। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की छठी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं और हमारी आज की प्रसारण सेवा अब आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजना

योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्य

0: टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: फल से लदे वृक्ष सहनशीलता के सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं। तभी तो जब हम उन्हें पत्थर मारते हैं तो वो बदले में हमें फल देते हैं। वास्तव में सहनशीलता हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। हम जितने सहनशील होंगे उतने ही शांत और विनम्र भी होंगे। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम परेशान हो उठते हैं। अनेक परिस्थितियां हमें झकझोर देती हैं, हमारी सहनशीलता डगमगाने लगती है। यदि उस क्षण हम अपना संतुलन खो देते हैं तो उसका परिणाम सिवाय झगड़े के और कुछ नहीं होता। एक क्षण में बिगड़ा संतुलन हमारी सहनशीलता के सिंहासन को चकनाचूर कर देता है। इसलिए उस क्षण बहुत सावधान रहें, अपने मन पर पूरी शक्ति से काबू रखें और सहनशीलता पर आघात करने वाली परिस्थितियों का मुकाबला करें। एक बार एक जिज्ञासु संत कबीर के पास आया, बोला, मेरे सामने एक अजीब प्रश्न है, मैं गृहस्थ बनूं या संत बनूं? कबीर कपड़ा बुन रहे थे, प्रश्न सुना और बोले, चिंता ना करो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, इसके बाद अपना काम करते रहे। वो व्यक्ति अगले दिन फिर आया, वो अपने प्रश्न का उत्तर चाहता था। दोपहर का समय था, धूप निकली हुई थी। कबीर ने अपनी पत्नी को पुकार कर कहा, जरा दीपक जला लाना, सुई कहीं गिर गई है, खोजना चाहता हूं। उस व्यक्ति के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब कबीर की पत्नी सचमुच दीपक जलाकर ले आई। कबीर ने पास ही पड़ी सुई उठाकर रख ली, पत्नी दीपक लेकर वापस चली गई। अब उस व्यक्ति से रहा न गया। उसने पूछा, महाराज ये क्या है? धूप की तेज रोशनी में आपने दीपक मंगवाया और आपकी पत्नी दीपक ले आई। उसने ये भी न कहा कि भला धूप के होते दीपक? कबीर ने हंसते हुए उसे रोक कर कहा, गृहस्थ बनना है तो ऐसी ही सहनशीलता होनी चाहिए। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर शेष था। अगले दिन वो व्यक्ति फिर आया। कबीर उसे लेकर एक महात्मा के पास गए। उन महात्मा की कुटिया एक ऊंचे टीले पर थी। दोनों स्टीले की ऊंची चढ़ाई पार कर पहुंचे। महात्मा से कबीर की बातचीत होने लगी। कबीर ने बातचीत के दौरान महात्मा से पूछा, आपकी उम्र क्या है? महात्मा ने उत्तर दिया, 80 साल। फिर बातचीत होने लगी। कुछ देर बाद कबीर ने फिर प्रश्न दोहराया। महात्मा ने कहा, बेटा 80 साल। जब बातचीत पूरी हो गई तो चलते समय कबीर ने फिर पूछा, महात्मा जी आपकी उम्र कितनी है? महात्मा ने उसी शांत भाव से कहा, बेटा 80 साल। वापस आते समय टीले से आधी दूर आने पर कबीर ने फिर आवाज दी, महात्मा जी आपकी उम्र कितनी है? महात्मा कुटिया से बाहर आए और बोले, बेटा 80 साल। कबीर और वो व्यक्ति जब टीले से नीचे आ गए तो फिर आवाज दी, महात्मा जी आपकी उम्र क्या है? महात्मा ने अपनी कुटिया से बाहर आकर उत्तर दिया तो कबीर ने इशारे से कहा कि आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इस पर महात्मा टीले से नीचे उतर कर आए और बोले, बेटा 80 साल। वो व्यक्ति उन महात्मा को देखकर हैरान था कि उन्हें एक भी बार गुस्सा नहीं आया और वो बार बार शांत भाव से उत्तर देते रहे। बाद में कबीर ने कहा, ये था तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। अगर महात्मा बनना है तो ऐसा ही सहनशील बनना होगा। सहनशीलता कई बार हमारे भविष्य की परेशानियों से बचा लेती है। आज जो कठिनाइयां और परेशानियां हैं वे सदा नहीं रहने वाली। आज यदि हम उन्हें सहन कर लेते हैं और

0: और शांति से आज का समय गुजार देते हैं तो कल हमें इसका अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन सहनशीलता, वाचन स्वर था अनिल कुमार भारती, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब आरंभ करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ मातृवंदन के साथ।

आइए अब आरंभ करते हैं प्रभु आराधना। हर प्रार्थना के आरंभ में जिनका सुमिरन किया जाता है,

बुद्धि के दाता गणपति हम भक्तों के जीवन में सुख और शांति का संचार करें। भक्त के मन से निकली सच्ची साधना प्रभु के चरणों तक पहुंचे, इसी कामना से आइए शुरू करते हैं प्रभु प्रार्थना।

दया, त्याग, करुणा और कल्याण है शिव। भोलेनाथ का नाम सिर्फ उद्घोष नहीं है, वरन विश्वास है कि जब भी जीवन में अंधकार पड़ेगा तब शिव कृपा का दीप अवश्य जलेगा। भोले बाबा की भक्ति मन को सरल बनाती है और यही सरलता ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है।

हे राम, आपका बाल रूप भक्ति प्रेम का शीर्ष है, जिसमें आपका छोटे छोटे कदमों से चलना, उस पर पायल की रुनझुन, आपका हंसना गिरना और माता कौसल्या का आपको हृदय से लगा लेना हमारे प्रेम और भक्ति को और भी बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं आनंद धरती पर उतर आया हो। आपका बाल रूप सहज सरल है, जो मन को आनंदित कर रहा है।

श्रोताओं, इसी नाद के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। और विश्वास रखिए, भक्ति में शब्दों से अधिक भाव का महत्व होता है। सच्चे मन से निकली पुकार प्रभु तक अवश्य पहुंचती है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

काक भुशुंडी को अखंड भक्ति का वरदान देकर भगवान राम उन्हें अपनी माया से उत्पन्न जगत का रहस्य बताते हुए निज सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं, एक ही पिता के अनेक पुत्र अलग अलग स्वभाव और चारित्रिक विशेषताएं लिए होते हैं। कोई ज्ञानी, कोई तपस्वी, कोई वीर योद्धा तो कोई दानी होता है। पिता का प्रेम उन सबको समान रूप में प्राप्त होता है। निरा मूर्ख पुत्र भी पिता को अपने प्राणों के समान प्रिय होता है। उसी प्रकार मेरा सेवक मुझे प्रिय होता है। अतः सब कुछ त्याग कर हे काक भुशुंडी, तू मेरा भजन कर। इस भांति तुम्हारी गति कालातीत होगी, समय का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभु से अखंड भक्ति का वरदान प्राप्त कर उनके श्रीमुख से निज सिद्धांत की व्याख्या सुनकर काक भुशुंडी का तन मन पुलकित हो गया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की प्रस्तुति। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। आज रात्रि 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति होगी।

प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे अनुराधा कोटियाल से गढ़वाली लोकगीत कार्यक्रम शैल संगीत में। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहता है प्रातः 8:30 पर। क्षेत्रीय एकांश देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी होगी सुबह 9:00। 9:05 पर सदाबहार फिल्मी गीत। सुबह 10:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम यादें रेडियो की। इसमें आज आप सुनेंगे श्री सी के चक्रवर्ती से रमेश चंद्रा की बातचीत। सुबह 10:35 पर लोक संगीत में आज श्रोता सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए गुजराती लोकगीत। अपनी फरमाइश के फिल्म की श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में सुबह 11:00। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत में आज श्रोता सुनेंगे ललित कुमार के गाए भजन। दोपहर 12:30 पर बहने सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत। दोपहर 1:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। श्रोता सैनिकों के लिए फिल्म संगीत सुनते हैं दोपहर 2:30 पर। अपराह्न 4:02 पर श्रोता सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे महफूज अली खां से रूपक ताल और छपताल में तबला वादन। अपराह्न 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे अभिनेता सुनील दत्त। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनते हैं सायं 5:10 पर। सायं 5:45 पर पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत में आप सुनेंगे अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रिवर्स कार्यक्रम में किलकारी कार्यक्रम प्रस्तुति होगी विनय ध्यानी की। किसान साथी कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं सायं 7:00। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंटवार्ता उत्तराखंड में फलों की व्यवसायिक खेती। भेंटवार्ता करेंगे डॉक्टर सुरेश राम से।

0: श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब श्रोता सुने समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे 66 प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव 58 विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ. एन. राजम् अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एच.डी. कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अन्ताराष्ट्रिय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्यरूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कण्ठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमानकर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्साविभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् 21 दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्णस्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी 2-3 दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः 4th उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते।

0: अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे स्वास्थ्य संवर्धन संबद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरे

0: 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रातः के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत लोक रसधार। कार्यक्रम का पहला गीत बम्बई का बाबू फिल्म से मन्ना डे की आवाज में, मसरूर सुल्तानपुरी के बोल और एसटी बर्मन का संगीत।
1: तक धुम बजे।

0: लगान फिल्म में अभी आप आशा भोसले, उदित नारायण और साथियों को सुन रहे थे। जावेद अख्तर के बोल थे और ए आर रहमान का संगीत। इसी के साथ लोक रसधार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: Career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
2: Future-proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities.

0: amenities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने टिहरी की नगर पालिका नरेंद्र नगर, उधम सिंह नगर की नगर पंचायत गड़ी नेगी और चंपावत की नगर पंचायत पार्टी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा फल सुधार परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने SIR को पारदर्शिता व निष्पक्षता से संपन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग देने की अपील की। और मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी जिलों में आज और कल लू जैसी स्थिति की संभावना जताई। और अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने टिहरी जिले की नगर पालिका नरेंद्र नगर, उधम सिंह नगर की नगर पंचायत गड़ी नेगी और चंपावत की नगर पंचायत पार्टी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब जिला स्तर पर भी अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना के अनुसार कल से 29 मई तक सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन पत्र जमा होंगे। 30 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 31 मई को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिया जा सकेगा। 1 जून को सुबह 10 बजे से चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। इसके बाद 9 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 11 जून को मतगणना का कार्य किया जाएगा। तीनों निकायों के 18 वार्डों में मतदान के लिए 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा फल सुधार परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। परीक्षा फल सुधार के लिए छात्र अब 28 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले यह तिथि 24 मई निर्धारित की गई थी। बोर्ड के सचिव विनोद सिमल्टी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आवेदन करने की तिथि बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि कई विद्यालयों ने अभी तक आवेदन पत्र नहीं भरे थे। कुछ विद्यालयों ने नामावली डाउनलोड न होने से छात्रों को आवेदन करने में परेशानी हो रही थी। श्री सिमल्टी ने बताया कि सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अपने स्तर पर विद्यालयों को निर्देशित करने के लिए कहा गया है। नवनियुक्त गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। उन्होंने चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि बिना पंजीकरण के चारधाम यात्रा में ना आए। आयुक्त ने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, पार्किंग और ट्रैफिक समेत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा को व्यवस्थित बनाना और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देना ही सरकार की प्राथमिकता है।
3: जो चारधाम यात्रा हमारी चल रही है, इसमें आप जानते ही हैं कि ये पूरी तरह चरम पे चल रही है और 1 लाख से अधिक यात्री एक दिन में भी आ चुके हैं। हम लोगों से ये आग्रह करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करा कर ही आए और सीधे धाम पर पहुंचने के बजाय, उत्तराखंड बहुत खूबसूरत प्रदेश है तो यहाँ की खूबसूरती को एक एक दिन रेस्ट करके देखते हुए तब केदारनाथ जी के दर्शन करें। फिर जो श्रद्धालु पर्यटक यहाँ आ रहे हैं तो उन सबसे आग्रह है कि वो थोड़ा समय जो है प्रत्येक स्थान पर हाल्ट करें, वहाँ की खूबसूरती देखें, वहाँ घूमें फिरें। और हम लोग जो है पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी प्रकार से उनको असुविधा या उनको कोई भी परेशानी ना होने पाए। और मेरा ये भी आग्रह है कि सभी लोग प्रशासन जो भी निर्देश जारी करते हैं उनका अनुपालन करें।
2: पौड़ी में निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रेक्षागृह में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में BLO, सुपरवाइजर, BLA और IT वॉलंटियरों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मतदाता सूची

0: पुनरीक्षण, सत्यापन, प्रपत्र वितरण और ऑनलाइन फीडिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण प्रभारी दीपक रावत ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 8 जून से शुरू किया जाएगा। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। अभियान में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने और मतदाता सूची में त्रुटियों के संशोधन का कार्य किया जाएगा। प्रशिक्षण में बताया गया कि 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे। 8 जून से 7 जुलाई तक घर घर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। 14 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि 10 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी आशीष भटकाई और अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने जिला कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर SIR प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी साझा की। इस दौरान सभी दलों से इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में प्रशासन को सहयोग देने की अपील की गई। जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने बताया कि SIR का कैलेंडर जारी हो चुका है और उसके अनुरूप तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि प्री SIR की प्रक्रिया पहले से जारी है। प्रशासन का लक्ष्य SIR को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है।
2: SIR, जैसे हम जानते हैं कि अब उसका एक जो कैलेंडर है वो प्राप्त हो चुका है, तो उसमें गतिविधियां प्रारंभ होनी है। तो प्री SIR की जो गतिविधियां हैं वो आजकल चल रही हैं। मैपिंग की कार्रवाई भी गतिमान है, तो मैपिंग जो हो रही है उसको अधिक से अधिक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ भी एक डिटेल बैठक की गई है, जिसमें उनको सारी बातें जो SIR के प्राविधान हैं उनके संबंध में अवगत कराया गया है। और जनपद प्रशासन का ये पूरा प्रयास है कि पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से काम करते हुए इस गतिविधि को हम सब लोग पूरा करेंगे। उसी के संबंध में आज एक वर्कशॉप भी जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं उनके लिए रखी गई है और उनको समस्त उपबंधों से इस वर्कशॉप के माध्यम से डिटेल में अवगत भी कराया जाएगा।
0: चंपावत जिले के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लोहाघाट विकास खंड में 1 जून से विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान ने बताया कि शिविरों में ग्रामीणों को ब्लड टेस्ट, शुगर जांच, एक्सरे सहित विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सकीय परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ टीमें गांव और तोकों में पहुंचकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और गंभीर बीमारियों की प्रारंभिक पहचान सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को उपचार के लिए दूरस्थ अस्पतालों तक ना जाना पड़े। कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को बुमलाई में शिविर का शुभारंभ होगा। इसके बाद 2 जून से 15 जून तक लोहाघाट विकास खंड के विभिन्न गांव और क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य के मैदानी जिलों में आज और कल अत्यधिक गर्मी की संभावना है। विशेष रूप से हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिलों के कुछ स्थानों पर लू जैसी स्थिति बन सकती है। इसे देखते हुए जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून ने पत्र जारी कर सभी जिलों को सतर्क रहने एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही आपदा नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखने को कहा है। इसके अतिरिक्त बिजली व पेयजल की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में टैंकरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने आम जनमानस से अत्यधिक गर्मी के दौरान दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी एवं तरल पदार्थ का सेवन करने की अपील की है। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97

0: किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोद पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य निर्वाचन आयोग ने टिहरी की नगर पालिका नरेंद्र नगर, उधम सिंह नगर की नगर पंचायत गढ़ी नेगी और चंपावत की नगर पंचायत पार्टी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा फल सुधार परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने SIR को पारदर्शिता व निष्पक्षता से संपन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग देने की अपील की। और मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी जिलों में आज और कल लू जैसी स्थिति की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान्ह 10:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शैल संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा कोटियाल के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वहीं देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

अनुराधा कोटियाल की गाय गढ़वाली लोकगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम चल रहा है शैल संगीत।

0: अनुराधा कोटियार के गाए इसी गढ़वाली लोकगीत के साथ शैल संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है। अब समाचार सुने।
3: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
4: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल

0: दस्तानी, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए।

0: का नोरेम और करिश्मा ने दो दो गोल दागे। पांच बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनिषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues

नमस्कार देहरादून। आज के अंक के साथ आपकी अपनी श्रुति शर्मा आप सबका स्वागत और अभिनंदन कर रही है। श्रोताओं, कुछ तारीखें केवल कैलेंडर का हिस्सा भर नहीं रहती, संघर्ष सफलता ये परिवर्तन की पहचान बन जाती हैं। 26 मई भी एक ऐसा ही दिन है जिसने एक नया इतिहास रच दिया। इतिहास का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना IAF द्वारा चलाया गया एक ऐतिहासिक हवाई अभियान था। इसे 26 मई 1999 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय चौकियों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़ना था। 1971 के युद्ध के बाद कश्मीर क्षेत्र में वायु शक्ति का पहला सबसे बड़ा और अभूतपूर्व इस्तेमाल किया गया। भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने यह लड़ाई 16,000 से 18,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर लड़ी। इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होने से विमानों और हथियारों की क्षमता पर बहुत असर पड़ता है, जिससे यह मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया था। इस मिशन में वायुसेना ने अपने घातक लड़ाकू विमानों जैसे मिराज 2000, MiG-21, MiG-27, जगुआर और MI-17 हेलीकॉप्टरों को उतारा था। भारतीय सैन्य इतिहास में पहली बार ऊंचे पहाड़ों में छिपे दुश्मनों के बंकरों को नष्ट करने के लिए सटीक मार करने वाले लेजर गाइडेड बमों और GPS तकनीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में भारत ने अपने लड़ाकू विमान और एक हेलीकॉप्टर को भी खोया, पर फिर भी इसके बाद वायुसेना ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और मिसाइल रेंज से बचने के लिए अधिक ऊंचाई से सटीक बमबारी करना शुरू किया। भारतीय पायलटों ने सीमा के अंदर रहते हुए ही दुश्मन के मुख्य सप्लाई डिपो जैसे मुथोढालो और टाइगर हिल पर बने कमांडर सेंटरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लगभग 2 महीने चले इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने 7,600 से अधिक उड़ानें भरी, जिसने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी और थल सेना के लिए चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराना आसान कर दिया। समय की धार के ये वो पल हैं जो वर्षों बाद भी प्रेरणा बन गए हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। 26 मई साहस और कर्म का वो दिन बन गया जिससे देश की सीमाओं की रक्षा करने का पैटर्न ही बदल गया।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए अब जानते हैं आज के उत्तराखंड की अखबार की सुर्खियां। पूर्व सीएम कोश्यारी को मिला पद्म भूषण पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लोक कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश में नकली दवा बनाने और कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यदि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण में आबादी में करीब 28 लाख की बढ़ोतरी का अनुमान सामने आया है। मकान सूचीकरण व मकान गणना का काम पूरा होने के साथ ही जो आंकड़े आए हैं उसमें 15 साल में हुई आबादी, परिवार, घरों की बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि प्रदेश में उन्नत बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए योजनाएं तैयार की जाएं और कुल बागवानी क्षेत्र को भी बढ़ाने की दिशा में भी कार्य करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए।

और अब एक नज़र मौसम पर। उत्तराखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भी पारे में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने दुश्वारियां बढ़ा दी है। मैदान में लू का कहर है और दो दिन भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में भारी उछाल है। आगामी 29 और 30 मई को इससे कुछ राहत मिल सकती है। तो हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे कि इस गर्मी में, इस चिलचिलाती गर्मी में अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, अपने साथ पानी अवश्य रखें और घर पे हैं तो लगातार पानी पीते रहें, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें, फल खाएं और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।

0: Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: Future-proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
2: आइए अब जानते हैं कुछ खबरें इतिहास के पन्नों से। आज के दिन 26 मई 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य था नियंत्रण रेखा एलओसी पर कब्जा करने की नीयत से आए पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़ना और उनकी चौकियों को नष्ट करना। आज ही के दिन 1999 में क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम का पहला विकेट जल्दी गिर गया। उसके बाद सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने मैदान संभालते हुए 318 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। उस समय वनडे क्रिकेट के इतिहास में ये किसी भी विकेट के लिए पहली बार हुई 300 से अधिक रनों की पार्टनरशिप थी। आज ही के दिन स्विट्जरलैंड में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान देते हुए 26 मई 2005 को विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। आज ही के दिन 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये समारोह इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें पहली बार सार्क देशों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जो भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ा कदम था। इन्हीं इतिहास के पन्नों से आपको बताते हैं कि स्विट्जरलैंड ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो सम्मान दिया विज्ञान दिवस के रूप में, उस दिन को घोषित किया, उसी के विषय में और जानकारी आपको देते हैं। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 26 मई 2005 को 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर स्विट्जरलैंड जिनेवा पहुंचे थे। यह 30 से अधिक वर्षों के बाद किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष का पहला स्विट्जरलैंड दौरा था। डॉक्टर कलाम की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिष्ठा और उनके विशाल ज्ञान को देखते हुए स्विट्जरलैंड सरकार ने उनके आगमन के दिन यानी 26 मई को अपने देश में विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। अपनी इस यात्रा के दौरान डॉक्टर कलाम ने परमाणु अनुसंधान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला CERN का भी दौरा किया, जहां भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को उन्होंने काफी सराहना की जाती रही है। हमारा भारत कई क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाए रखा हुआ है, इसी में एक नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आइए सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दो दिन मौसम में अत्यधिक गर्मी रहेगी, इस गर्मी में तेज धूप और गर्म हवाएं यानी लू चलने की संभावना है। तो लू से अपने शरीर को हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को बहुत जल्दी प्रभावित करती है और थोड़ी सी सावधानी हमें सुरक्षित और स्वस्थ रख सकती है। लू से बचने के लिए दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक तेज धूप में निकलने से बचें। बाहर जाते समय सिर पर टोपी, गमछा या छाता रखें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। आपको प्यास लगी हो चाहे ना लगी हो, पानी अवश्य पीते रहें। और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं पर हमें भी संपन्न करने की अनुमति दीजिए। आप सबको नमस्कार। देहरादून।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार देहरादून के विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में मैं मानव डोभाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चिट्ठी है राजधानी देहरादून से और आलेख है अवधेश नौटियाल का। देहरादून में इन दिनों एक और चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और आस्था का उत्साह दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, कृषि और जन सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार सक्रिय है। तकनीक आधारित सेवाओं के विस्तार, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, किसानों के लिए नई डिजिटल व्यवस्था और नशे के खिलाफ अभियान जैसे कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं देहरादून जिले से पिछले एक महीने की प्रमुख गतिविधियां और खबरें। सबसे पहले बात चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर ऋषिकेश में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ट्रांजिट कैंप और पंजीकरण केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं। देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह ये बता रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है। यात्रा शुरू होने के महज 35 दिनों के भीतर 20,76,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। बढ़ती भीड़ के बावजूद प्रशासन, पुलिस और यात्रा प्रबंधन टीमें व्यवस्थाओं को संभालने में लगातार जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में सुरक्षा, पंजीकरण और आपदा प्रबंधन को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है ताकि हर यात्री सुरक्षित और सुगम यात्रा कर सके। उत्तराखंड में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और CDOT द्वारा अलर्ट संदेश जारी किया गया। इस नई तकनीक के जरिए किसी विशेष क्षेत्र के मोबाइल उपभोक्ताओं तक तुरंत चेतावनी संदेश पहुंचाया जा सकेगा। आगामी मानसून और चारधाम यात्रा के दौरान इसका व्यापक उपयोग किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि अब स्थान विशिष्ट अलर्ट जारी किए जा सकेंगे जिससे अनावश्यक भ्रम की स्थिति से बचा जा सकेगा। इसी क्रम में चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवाओं की निगरानी भी अत्याधुनिक तकनीक के जरिए की जा रही है। सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट स्थित यूकाडा के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हेलीकॉप्टर सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। खराब मौसम की स्थिति में भी DGCA और मौसम विभाग की टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब तक 21,000 से अधिक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से चारधाम दर्शन कर चुके हैं। अब बात कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई की। देहरादून में पूर्व गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आयोजित लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में 125 मामलों की सुनवाई हुई जिनमें 45 मामलों का निस्तारण किया गया जबकि 24 मामलों में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। जांच में खसरा नंबर बदलकर जमीन बेचने, दोहरी बिक्री और अवैध कब्जों जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भूमि धोखाधड़ी और अवैध कब्जों के मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं नियमों के विपरीत संचालित होमस्टे पर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिले में 103 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त किए गए हैं। जांच में कई होमस्टे होटल और बार की तरह संचालित पाए गए। कुछ स्थानों पर अवैध गतिविधियों और देर रात तक DJ व शराब पार्टियों की शिकायतें भी मिली थी। प्रशासन ने कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब बात किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़ी पहल की। देहरादून में किसानों को मिलने वाले अनुदान को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल करेंसी के माध्यम से भुगतान व्यवस्था शुरू की गई है। किसान अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे और सत्यापन के बाद डिजिटल वाउचर जारी किए जाएंगे। योजना के तहत पॉली हाउस निर्माण पर 80% तक अनुदान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे किसानों तक सब्सिडी सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचेगी। इसी क्रम में कालसी क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। पूर्व जिलाधिकारी सविन बंसल ने महिला समूहों की इकाइयों का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि उनके उत्पादों को गूगल मैप्स पर पंजीकृत किया जाए ताकि उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध हो सके। तो ये थी देहरादून जनपद से बीते दिनों की प्रमुख गतिविधियां, प्रशासनिक पहल और जनहित से जुड़ी खबरें। आज था तकनीक विकास और जनसेवा के बीच देहरादून लगातार नई व्यवस्थाओं और योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इन्हीं खबरों के साथ जिले की चिट्ठी कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी मानव डोभाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय एकांश देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 9:05 हुए हैं। पेश हैं सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन।

0: से आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे

जाती है। ऐसा ही एक अलग गीत आपको सुनवा रहे हैं बेटी बेटे फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, हसरत जयपुरी की बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत। और इस गीत में है इश्क, एहसास और रूहानी खूबसूरती। जब किसी की मौजूदगी जीवन में रोशनी बन जाती है ना, तो हर खुशी उसी से जुड़ी महसूस होती है। इस गीत में प्रेम भी है और आकर्षण भी।

श्रोताओ, आइए अब आपको सुनवाते हैं बालिका वधू फिल्म का गीत अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन का संगीत। ये गीत सादगी, प्रेम और अपनेपन के बेहद मधुर एहसास के साथ जुड़ा हुआ है। कम शब्दों में गहरे भाव व्यक्त करना इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती रही है। छोटी छोटी खुशियों को बहुत सहजता से पिरोया गया है। गीत सुनते ही मन में एक शांत, कोमल और सुहानी अनुभूति उठती है।

0: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोतो, जब किसी का साथ जीवन में रंग भर दे तो हर खुशी का कारण वही लगने लगता है और मन कह उठता है कि तेरे कारण सपनों में रोशनी है, तेरे कारण दिल में धड़कन है, तेरे कारण जीवन में मधुरता है। और पुराने सदाबहार गीतों की यही खासियत रही है कि वे सीधे दिल की गहराइयों को छू जाते हैं और मन की भावनाओं को गीतों के माध्यम से आप सबके सामने व्यक्त कर जाते हैं।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: आन मिलो सजना फिल्म में भी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे, आनंद बख्शी के भूल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की और धुन तैयार की है आर डी परमर ने।
2: कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

चौदहवीं का चांद, आइए आपको सुनवाते हैं इस खूबसूरत से गीत को, जहां प्रेम को चांद से उपमा देकर जोड़ा गया है और इसे हर शब्द इस गीत का दिल में उतर जाता है, और इसको अपनी इस जादुई आवाज से सजाया है मोहम्मद रफी ने। क्योंकि कुछ गीत के बोल और धुन दोनों मिलकर ऐसा एहसास रच जाते हैं मानो चांदनी रात संगीत बनकर बह रहा हो। सदाबहार गीतों की दुनिया में ये गीत आज भी उतनी ही मोहब्बत से सुना जाता है, क्योंकि इसमें सादगी भी है, नजाकत भी, और दिल को छू लेने वाली मिठास भी। आप सबके लिए चौदहवीं का चांद फिल्म से ये गीत, शकील बदायूनी के बोल और रवि का संगीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं गहरा दाग फिल्म का गीत, और इसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, शकील बदायूनी के बोल और रवि का संगीत। श्रोताओं, ये गीत हैं जहां दिल को सच्चा अपनापन मिल जाए तो जीवन की हर कमी कैसे पूरी होती है उसको प्रदर्शित करते हैं, और मन सिर्फ यही महसूस करता रह जाता है कि अब कोई आरजू बाकी न रही, अब कोई आरजू बाकी न रही, तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी खुशी रही।

श्रोताओं, दर्पण फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। आनंद बख्शी की शब्द रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम का जो गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, वहां गंगा जमुना की पावन धाराओं को जोड़कर प्रेम किया गया है और ये बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त भी किया गया है। फिल्म है बैजू बावरा। मोहम्मद रफी की सुरमई आवाज से ये गीत अमर बन पड़ा है। नौशाद ने इसमें शास्त्रीय संगीत की मिठास घोल दी है। इस गीत को सुनते ही मन में नदी की शांत लहरों जैसा सुकून उतर आता है, क्योंकि शब्दों में प्रेम, अपनापन और भारतीय मिट्टी की खुशबू महसूस होती है।

0: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं हिमालय की गोद में फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में इंदिवर के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। ये पुराने सदाबहार गीतों में प्रकृति को भावनाओं से जोड़ने की अद्भुत कला थी। नदियां, पर्वत, चांद, बारिश सब प्रेम और जीवन के प्रतीक बन जाते थे। आज भी इन गीतों को सुनो तो लगता है हम किसी हिमालयी क्षेत्र में गए हुए हैं जहाँ प्रेम पराकाष्ठा की सीमाएं पार कर रहा है।

0: इंतकाम फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। इसी के साथ सदाबहार फिल्मी गीत अब यहीं पर संपन्न होते हैं। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। अब श्रोता सुने FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप मानव डोभाल से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए 20 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। उत्तराखंड में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जलवायु परिवर्तन को वैश्विक चुनौती बताया। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिले में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर निर्देश जारी किए। हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में हुई सड़क हादसे में दंपति की मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों की जांच की जाए। अब तक देश विदेश के 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों की यात्रा की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया को राष्ट्र निर्माण और सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाने का आह्वान किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका नरेंद्र नगर, नगर पंचायत गढ़ी नेगी और चंपावत जिले की नगर पंचायत पार्टी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में सैन्य अधिकारियों ने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने SIR को पारदर्शिता व निष्पक्षता से संपन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग देने की अपील की। सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान के तहत पिथौरागढ़ न्यायालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा फल सुधार परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई और मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी जिलों में आज और कल लू जैसी स्थिति की संभावना जताई। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:02 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम यादें रेडियो की। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य अग्निशमन अधिकारी सेवानिवृत्त श्री सी के चक्रवर्ती से रमेश चंद्रा की बातचीत।
2: कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है श्री सी के चक्रवर्ती को। आप उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्य अग्निशमन अधिकारी रहे हैं और हमारे आकाशवाणी देहरादून केंद्र के नियमित और लंबे समय से श्रोता।

0: हैं सीके चक्रवर्ती जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: रमेश जी, मुझे आकाशवाणी पे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने के लिए आपका हृदय से आभार।
0: चक्रवर्ती साहब, आपका जुड़ाव आकाशवाणी से कैसे हुआ?
1: रमेश जी, बड़ी लंबी कहानी है। बचपन की याद जो मुझे है, जॉइंट परिवार था हमारा। फादर भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे, यूपी में, कानपुर में हम रहते थे। और सेंट्रल हॉल में एक बड़ा सा वेल वाला रेडियो रखा रहता था। उसमें सुबह सुबह ही मेरे चाचा जी थे, वो उनकी ही ड्यूटी थी, वो रेडियो टाइम से ऑन करेंगे। तो जो सिग्नेचर ट्यून था वो सबसे पहले बजता था, उसके बाद फिर मंगल धुन बजता था, शहनाई वाला। तो वो सुन के ही मैं थोड़ी देर अट्रैक्ट होके वहीं खड़ा हो जाता था। और जो बचपन का ध्यान है मुझे, मेरी 4-5 साल की उम्र रही होगी,
0: जी
1: उस समय जो घड़ी वगैरह होती थी, चाबी भरने वाली घड़ियां ही होती थी उस समय, तो सब लोग अपनी अपनी रिस्ट वॉच, और चाचा जी वॉल क्लॉक भी उनकी ड्यूटी थी, तो वो चाबियां भर लेते थे जब सिग्नेचर ट्यून आता था। और जैसे ही 6 बजे वाली न्यूज आती थी, सबकी घड़ियां 6 बजे से मिल जाती थी, तो घड़ियां भी उसी से मिलाई जाती थी आकाशवाणी से। तो वो बचपन का है, शुरुआत वहां से। और फिर उसके बाद बड़े होते गए तो मैं 1976 में अग्निशमन अधिकारी नैनीताल के पद पर नियुक्त हुआ। और मेरी पहली ही पोस्टिंग थी बाहर, इंडिपेंडेंट पोस्टिंग पे। तो वहां पहुंचते ही मैंने सबसे पहला बुश का ट्रांजिस्टर खरीदा। और उस समय रेडियो खरीदने के साथ साथ ही आपको लाइसेंस भी लेना पड़ता था, और क्योंकि वायरलेस सेट होते हैं तो वो वायरलेस अधिनियम के अंतर्गत उसका उस वक्त लाइसेंस भी बनता था।
0: जी
1: ये शायद आपके बहुत से श्रोताओं को जानकारी नहीं होगी इसकी। और उसका हर साल रिन्यूअल भी होता था,
0: पोस्ट ऑफिस जाके,
1: पोस्ट ऑफिस से रिन्यूअल होता था उसका। और अब देखिए किस तरह जुड़ती जाती हैं जिंदगी में चीजें। 76 में मेरी पोस्टिंग हुई नैनीताल में, और पहाड़ को कैटर करने के लिए आकाशवाणी की ओर से नजीबाबाद केंद्र का उस वक्त स्थापना हुई, और उसके प्रायोजित कार्यक्रम भी मैं सुनता था, क्योंकि मैं न्यूज का बहुत शौकीन था। तो आकाशवाणी से प्रादेशिक समाचार सुनने के लिए लखनऊ था, और मीडियम वेव इतने दूर तक स्पष्ट नहीं पकड़ता था, तो आकाशवाणी के प्रायोजित कार्यक्रम भी मैंने सुने। और उसके बाद फिर उसका उद्घाटन हुआ, और फिर मैं आकाशवाणी रेगुलरली सुनता रहा वहीं से ही, अपने उससे जो भी कार्यक्रम उस वक्त थे मनोरंजन के, पत्र व्यवहार के, वो सब कार्यक्रम मैं सुनता था।
0: आप अग्निशमन सेवा में अधिकारी थे, तो उस दौरान रेडियो सुनने के लिए वक्त कैसे निकाल लेते थे?
1: देखिए, अग्निशमन का कार्य इमरजेंसी सर्विस का है, और हमें पूरे समय अपने फायर स्टेशन पे ही रहना पड़ता है। 24 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, और उसी में जो मनोरंजन वगैरह के साधन हैं वो भी उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि जीवन बोझिल ना हो एक जगह बैठे बैठे। तो उसमें एक चीज रेडियो भी था, वो स्टाफ के लिए भी अलग रेडियो था, वो लोग उसको सुनते थे। मैं अपने घर पे रह के अपना, तो हर समय तो आग नहीं लगती, हर समय जीवन रक्षा भी नहीं होती। जितना दफ्तर का काम था वो सब करने के बाद जो समय घर पे रहते थे, तो उस वक्त रेडियो ही सुनते थे। और तो वहां पहाड़ की जिंदगी में रह के बहुत रेडियो सुनने का टाइम मिलता।
0: अगर उस समय के किसी कार्यक्रम को आप नाम देना चाहें तो वो नाम क्या होगा?
1: पत्र व्यवहार कार्यक्रम आता था, और उसमें वो चिट्ठियां पढ़ी

0: था, लोग बांगों के आप घर नहीं जा सकते थे, कोई सोशल कांटेक्ट नहीं था, तो उस वक्त जो आकाशवाणी 100.5 FM देहरादून ने जो कार्य किए हैं वो मेरी मस्तिष्क में हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि ऐसे कठिन समय में भी आकाशवाणी देहरादून ने अपने लिमिटेड कार्यक्रम जितने भी हो सकते थे, क्यों स्टाफ की भी कमी थी, स्टाफ को भी नहीं बुलाया जा सकता था, और विशेषकर मैं विनय ध्यानी जी का नाम लूंगा, वो आउटडोर रिकॉर्डिंग भी करते थे, और मुझे याद है वो हरिद्वार में और इधर देहरादून में ये मोहंड की तरफ जो वो वन चरवाहे होते हैं, वन गुजर लोग, उन तक पहुंच के जहां की पहुंचना भी मुश्किल होता था, और वहां जाके उन्होंने कार्यक्रम किए और उसकी सूचना जैसी भी वहां स्थिति थी, तो आकाशवाणी के द्वारा बहुत से अधिकारियों को उनकी खबर मिली कि ये इस तरह परेशानी में है, और उनको ज्यादा इसका अवेयरनेस का भी कोई साधन नहीं था, तो मुझे वो कार्यक्रम याद है, और उसका मैं आकाशवाणी के लिए बहुत आभारी भी हूँ कि ऐसी अवस्था में भी हम लोगों को सूचनाएं मिला करती थी।
1: चक्रवर्ती जी, क्या कभी ऐसा हुआ कि रेडियो ने कभी आपका जब मूड अच्छा नहीं होता उस मूड को बदल दिया हो, सकारात्मक कर दिया हो?
0: रमेश जी, मैं आपको बता दूं, मैं सेवा में रहते ही 100% दृष्टिबाधित हो गया था, तब मेरी 9 साल की सर्विस बाकी थी, और वो दिन बहुत कठिन थे। मैं उस वक्त मसूरी में था, और एक अधिनियम है, विकलांगता अधिनियम, उसके अंतर्गत मुझे सेवा में बनाए रखना आवश्यक था, तो उसके लिए मैं सेवा में बना रहा, और सेवा में बने रहते हुए भी उत्तराखंड के प्रथम मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पे पदोन्नत होके उसी पद से 2009 में रिटायर हुआ। तो उस वक्त बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहता था, इसकी वजह से काफी मेडिकल बोर्ड वगैरह भी चल रहे थे, फैमिली भी उसी वजह से कुछ परेशान रहती थी, तो उस वक्त का एक गाना रेडियो पे मैंने एक दिन सुना, और वो गाना था, मन्ना डे जी का है, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको खुद ही सहारा मिल जाएगा।

0: बहुत ही शानदार गीत। चक्रवर्ती जी, आपने कहा कि फोन इन कार्यक्रम नजीब आवाज से चलता था और आकाशवाणी देहरादून से भी चलते हैं, आपने कभी कोई गाना अपने किसी खास व्यक्ति को डेडिकेट किया हो?
1: अब देखिए, इत्तेफाक की बात है कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं नजीबाबाद के भी जब शुरू होने जा रहा था तब प्रायोजित कार्यक्रम करके चलते थे, 1-2 घंटे के कार्यक्रम। वही सिलसिला पूरा मेरा देहरादून के साथ भी हुआ, जब देहरादून में ये 100.5 की स्थापना हो रही थी, तो उस वक्त भी शायद 11 से 2 बजे तक का प्रायोजित कार्यक्रम चलता था। विनय ध्यानी जी करते थे उसको, कल्पना जी भी करती थी, तो वो है। मगर एक गाना मैं उसको पॉजिटिव में लेता हूँ, और उसमें एक सेंटेंस है जो हमारे फायर से भी रिलेटेड है, वो बहुत अच्छी भूपेंद्र जी ने गाई है, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता सबको, कुछ उसी

0: जिनको डेडिकेट किया है, समर्पित किया है, अगर वो ये गीत इस समय सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे उनसे?
1: मैंने ये गीत मेरे जो गैस्ट्रिट ऑफिसर्स का एक पीपीएस ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, वहाँ की एक मीटिंग थी तो हमको गाने के लिए कहा गया, तो मैंने यही गीत गाया और उसमें एक सेंटेंस ये भी है, और लोग बाग कभी कभी पूछा करते थे कि कौन सी आग नहीं बुझाई जा सकती, गाने में एक अंतरा है कि ये वो आग है जिसमें धुआं नहीं, बुझा सका है कौन वक्त के शोले।
0: चक्रवर्ती जी, हमारे कार्यक्रम की एक रवायत है कि जिन श्रोता को हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं उन्हें उनकी पसंद का गीत भी सुनवाते हैं, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मेरी उम्र तो 80 की हो रही है, लेकिन मैं अपने आप को समय के साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ, तो शायद अगर मेरी याददाश्त सही है तो बर्फी फिल्म का गाना है इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी।

0: कोई खास वजह है इस गीत को पसंद करने के पीछे?
1: उसका रिदम भी बहुत अच्छा है और शायद श्रेया घोषाल के साथ डुएट गाया है, उसके बोल भी बहुत अच्छे हैं कि जिंदगी में आदमी अगर इस चीज को अपना ले कि इतनी सी हंसी और इतनी सी खुशी, तो बस वही जिंदगी का सार है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है।
0: चक्रवर्ती जी, आपने वो दौर भी देखा जब रेडियो के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और आज के समय मोबाइल पे हम रेडियो सुन सकते हैं, क्या आपको लगता है कि इस समय भी रेडियो की बहुत आवश्यकता है?
1: रमेश जी, जैसा आपको ज्ञात है शायद, आजकल जनगणना का कार्यक्रम भी चल रहा है देश भर में और उत्तराखंड में भी चल रहा है, तो रेडियो से जुड़ी हुई एक मैं याद जरूर शामिल करना चाहूंगा। तो जो वो प्रगणक आए थे मेरे घर पे अभी, तो उनके जितने प्रश्न थे उसमें उनका एक प्रश्न ये भी था, और शायद आप लोगों से भी वो लोग पूछेंगे ही, कि आकाशवाणी सुनते हैं? तो मैंने कहा सुनता हूँ, और फिर कैसे सुनते हैं? तो मैंने कहा रेडियो पे सुनता हूँ, ट्रांजिस्टर रेडियो है मेरे पास।
0: जी,
1: तो ये मेरे लिए तो गौरव की बात है, मेरे पास 2-3 ट्रांजिस्टर हैं, एक वो कारवा भी है। तो वाइफ ने ही सवाल कर दिया कि एक ट्रांजिस्टर से आप सुनते हैं, बाकी ट्रांजिस्टर खरीदने की क्या जरूरत है? तो मैंने उनको यही कहा कि गांगुली जो हमारे क्रिकेट कैप्टन हुआ करते थे इंडियन टीम के, वो एक बल्ले से खेलते थे मगर रखते 4-5 बल्ले से।
0: जी,
1: मैं रेडियो के संबंध में यही बता रहा था।
0: जी, मेरे पास भी 4-5 रेडियो हैं।
1: चलिए इसी बात पे हाथ मिलाते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा रिकॉर्ड बीट कर दिया।
0: आपके अनुसार रेडियो की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
1: सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो कहते हैं जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। तो जहां समाचार के साधन अब भी कई गांव हैं, अब भी कई जनपद भी हैं जिनके यहाँ लोकल न्यूज़पेपर नहीं छपते हैं, तो उनके यहाँ कभी शाम को अखबार पहुंच पाता है और कभी नहीं भी पहुंच पाता है, और कई ऐसे स्थान है जहां बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेरा आकाशवाणी जो है उसका प्रचार और प्रसार इतना बढ़ गया है, और जब से FM शुरू किया है आप लोगों ने, रिसेप्शन भी इतना बढ़िया है और उसके साथ साथ उसकी पहुंच इतनी दूर है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी आपके कार्यक्रम पहुंचते हैं। मैं अपने आप को भी आकाशवाणी का एक परिवार का सदस्य ही समझता हूँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है इस बात से कि जो आपके अवेयरनेस, मेडिकल हेल्थ अवेयरनेस के कार्यक्रम होते हैं, कृषि कार्यक्रम होते हैं, महिला जगत कार्यक्रम होता है, इन सब कार्यक्रमों का वहां तक पहुंचना ये कितनी बड़ी बात है। और जो मेडिकल हेल्थ का अवेयरनेस प्रोग्राम है, अगर अवेयरनेस ही हम पहुंचा सके तो बहुत से लोग बाग बीमार होने से पहले ही अपनी अवेयरनेस के बल पे अपने आप को बचा सकते हैं बीमारियों से। इसलिए मैं कहता हूं कि रेडियो तो बहुत बढ़िया प्रसार प्रचार का साधन है जो बहुत दूर तक इसकी पहुंच है।
0: अभी आपने स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम उनकी बात की, कृषि संबंधी कार्यक्रमों की बात की, कुछ अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी आपके विचार जानना चाहेंगे जो आपको पसंद आते हैं?
1: एक कार्यक्रम आता है नमस्कार देहरादून,
0: जी
1: अब भी आता है वो जिस रूप में अब आ रहा है उसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि जितना पब्लिक इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स पे जोर देंगे, ज्यादातर लोग जो रेडियो लिसनर्स को मैंने देखा है वो अपना नाम सुनने के लिए बेताब रहते हैं कि आकाशवाणी पे मेरा नाम किसी तरह आ जाए। तो इसलिए रेडियो इंटरैक्टिव प्रोग्राम जितने भी हो सके, वो सब आपके लिए, हर चीज संभव भी नहीं है, आपकी अन्य व्यस्तताएं भी होती हैं।
0: अभी आपने बात की कि श्रोताओं को अपने नाम सुनने की ललक होती है, नाम जो हमारे उद्घोषक होते हैं वो सुनाते हैं, अगर आपको RJ बनने का मौका मिल जाए तो आपकी पहली लाइन रेडियो पे क्या होगी?
1: श्रोताओं, आज मुझे एक विशेष कार्य सौंपा गया है कि मैं आकाशवाणी देहरादून 100.5 FM से आपके कार्यक्रम का संचालन करूं। मैं CK चक्रवर्ती हूं, मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूं, मगर हाँ प्रयास करूंगा कि पूरी तरह से आपका मनोरंजन कर सकूं। और लीजिए प्रस्तुत है ये पहला गीत, मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, सुनिए।
0: अगर आज आप रेडियो के माध्यम से किसी को एक संदेश भेजने का मौका मिले तो किसे भेजेंगे?
1: शायद मेरी पत्नी को, शायद इस कार्यक्रम को भी सुन रही होंगी, तो मैसेज मैं उन्हीं को दूंगा।
0: वो मैसेज क्या होगा?
1: बहुत ही कठिन प्रश्न कर दिया आपने। एक गाना है PK फिल्म का, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, यही मैसेज करूंगा उनको कि हम दोनों साथ चलते रहें जीवन पर्यंत तक, जब तक

0: अगर आकाशवाणी को परिभाषित करना हो आपको, तो क्या परिभाषा देंगे आप आकाशवाणी को?
1: मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। वो जो आकाशवाणी का लोगो है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इससे बड़ी कोई पदवी उपाधि और उपयुक्त उपाधि मेरे ख्याल से मैं देने में सक्षम नहीं हूँ। मगर इतना ही कह सकता हूँ कि आकाशवाणी के 100 साल पूरे हों और मैं भी उस समय भी आकाशवाणी का कार्यक्रम कर सकूँ तो मेरा सौभाग्य होगा।
0: क्या कभी आकाशवाणी आपकी तनहाई का साथी बना?
1: बच्चे हैं मेरे, वाइफ भी हैं, पोतियां भी हैं, और उनके अपनी अपनी दुनिया है और मेरी अपनी दुनिया है। तो मैं अपने बेडरूम में लेटा रहता हूँ, सुबह मंगल धुन से शुरू करके और रात के 9 बजे वाला समाचार सुन के मैं तभी सोने जाता हूँ। जितना भी समय मिलता है इस बीच में, मेरा रेडियो मेरे बेड साइड टेबल पे रखा रहता है और वो चलता ही रहता है।
0: जी,
1: तो मैं आनंदित रहता हूँ, स्वयं में अकेले में भी मैं अकेलापन नहीं महसूस करता।
0: आकाशवाणी जो है हमारे श्रोताओं में आज के समय किस तरह से बदलाव ला रहा है?
1: आकाशवाणी प्रचार और प्रसार का, सूचना का, एजुकेशन का, मनोरंजन का, हर तरह का वो साधन है। और जो डिजिटल हो गया है, डिजिटल होने की वजह से कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो अपने मोबाइल पे भी कहीं भी हो तो वो अपने कार्यक्रम को सुन सकता है, हर प्रकार के कार्यक्रम को। और विश्व भर में आकाशवाणी 100.5 देहरादून को सुना जा सकता है उसके डिजिटलीकरण हो जाने की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार है। और विशेषकर FM बैंड पे आ जाने की वजह से जो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पे वो रिसेप्शन की प्रॉब्लम थी, वो भी नहीं होता है। घर के पास ही रेडियो स्टेशन है और बिल्कुल साफ साफ आवाज सुनाई पड़ती है।
0: अगर गीतों की बात करें तो आपको किस तरह के गीत पसंद आते हैं? पुराने गीत, नए गीत, या जो पैरोडी आज के समय में चल रही हैं वो?
1: मैंने आपको बताया मेरी पसंद का गाना नई फिल्म का ही है, मगर उसमें मिठास है और सब कुछ है, ओल्ड इज गोल्ड। और आकाशवाणी के कई कार्यक्रम भी आते हैं, पुराने गीत, सुनहरे गीत, इस तरह करके। तो पुराने गीतों की जो लिरिक्स होते थे वो बहुत ही मीनिंगफुल होते थे। वो आजकल के जो हैं वो ठीक है, रिदमिक है, और शायद आजकल के युवा को वही पसंद आ रहा है तो वो रिदमिक गाने खूब चल रहे हैं। मगर समय का चक्र कहते हैं कि घूमता रहता है और वो समय फिर घूम के वापस आता है। अब के गाने, अगर मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसमें भी गजल वगैरह का पुट दे के या अच्छे लिरिक्स दे के अब नए गाने भी कुछ ऐसे आने लगे हैं। तो वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि समय के साथ साथ स्वयं को भी बदलना पड़ता है। और विशेषकर आकाशवाणी वो हर समय ही अपने आप को समय के साथ ढालता रहा है।
0: आज विभिन्न जगह के श्रोता आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे?
1: मैं आकाशवाणी के कम से कम 2 चैनल तो सुनता ही हूँ, आकाशवाणी देहरादून और विविध भारती सेवा जो हमारी मसूरी से ही रिले होता है। इतना कॉम्पैक्ट कार्यक्रम और किसी भी प्राइवेट चैनल, उनके अपने अपने व्यावसायिक उससे वो अपना कार्यक्रम बनाते हैं, तो उसमें पब्लिक का सिर्फ गानों के अलावा और किसी चीज का उसमें

0: नहीं रहता है, लेकिन आकाशवाणी ही है जो हर प्रकार के सब्जेक्ट्स को अभी तक लेते हुए अपने साथ चल रही है और हमेशा से ही, पहले से भी था और अब नए नए कार्यक्रमों के साथ, नए डिजिटलाइजेशन के साथ बहुत ही अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। तो लोगों को आकाशवाणी सुन के अपना जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें मनोरंजन के साथ साथ भी प्राप्त हो सकती हैं।
1: अगर आकाशवाणी न हो तो क्या मिस करेंगे?
0: शायद मेरा जीवन दूभर हो जाएगा। मैंने बताया कि मैं सुबह मंगल धुन से लेकर रात तक जब भी समय मिलता है, और मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ सुबह 8:30-9 के बीच में, तो कभी कभी मेरे पोतियां भी कह देते हैं, दादा ना आप रेडियो लेके क्यों डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, तो मेरा रेडियो मेरे डाइनिंग टेबल पे भी मेरे साथ जाता है, और फिर वहां से, क्योंकि मैं प्रोग्राम नहीं मिस करना चाहता हूँ, इसलिए वो रेडियो लगभग मेरे साथ साथ ही रहता है रात के 9 बजे तक। आकाशवाणी की कुछ बड़ी प्यारी यादें हैं मेरे साथ
1: जी।
0: अमजद खान साहब जो सरोद माइस्ट्रो है, उनका नाम विश्व में सभी संगीत प्रेमी लोग शायद जानते होंगे, तो उनका एक बार मैं इंटरव्यू सुन रहा था और वो ये बता रहे थे कि उनके फादर उस वक्त आकाशवाणी दिल्ली से प्रोग्राम्स वगैरह दिया करते, तो वही आसपास में कहीं वो रहते थे, तो उन्होंने बताया कि वो उस वक्त बचपन में साइकिल में चढ़ के आकाशवाणी के ही आसपास, और वो जो भवन थे वो उस वक्त इतनी भीड़ भी नहीं होती थी, तो वो अपनी साइकिल से वहां घूमा करते थे, मगर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो आकाशवाणी में कार्यक्रम देंगे, तो ये संस्मरण उन्होंने सुना है। और एक और ऐसे ही संस्मरण मुझे अभी हाल में ही सुना मैंने, आशा भोसले जी का अभी निधन हो गया कुछ समय पूर्व, तो उन्हीं की श्रद्धांजलि में कार्यक्रम आ रहा था, तो उसमें बताया उन्होंने कि गाना सिर्फ गाना नहीं होता है, गाने में जो गायक होते हैं उनको कारीगरी भी करनी पड़ती है, तो उन्होंने उदाहरण दिया, एक गाना है वो अच्छा मैं हारी चलो मान जाओ ना, उसमें उन्होंने कहा कि उसमें थोड़ी चुहलबाजी करनी थी, तो उन्होंने रफी जी के साथ ये गाना गाया, अच्छा मैं हारी चलो मान जाओ ना, तो उसी मान जाओ को ना वो उसको कहती है मान जाओ ने, तो रफी साहब कह रहे ये क्या कर रही हो तुम, ये मुझसे नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि होगा या नहीं होगा मैं तो करूंगी, और मैं उसी तरह गाती रही, रफी साहब ने चिढ़ के मुझे चिढ़ाने के उसमें उन्होंने ये सब कह दिया अच्छा मैंने जाओ ना, तो ये चीज मुझे बहुत पसंद आई और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ
1: जी।
0: आकाशवाणी पे मुझे आमंत्रित करने के लिए रमेश जी एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: श्री के चक्रवर्ती जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और रेडियो से जुड़ी हुई तमाम यादें हमारे साथ साझा की, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम यादें रेडियो की। इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े थे उत्तराखंड के प्रथम मुख्य अग्निशमन अधिकारी सेवानिवृत्त श्री सी के चक्रवर्ती। आपसे बात कर रहे थे रमेश चंद्रा। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उत्तराखंड में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अब डीटीएच प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपदा संबंधी अलर्ट प्रसारित किए जाएंगे। राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ करने के तहत डीटीएच के जरिए टेस्ट अलर्ट्स का सफल प्रसारण किया गया। प्रथम चरण में ये परीक्षण देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में किया गया। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, इसलिए समय समय पर चेतावनी का आम जन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि डीटीएच आधारित अलर्ट प्रणाली आपदा पूर्व चेतावनी तंत्र को अधिक व्यापक, त्वरित और प्रभावी बनाएगा। श्री सुमन ने बताया कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीकों के उपयोग से अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगातार मजबूत कर रही है, ताकि किसी भी आपदा अथवा गंभीर मौसमीय परिस्थिति में समय रहते सटीक सूचना उपलब्ध कराकर जनहानि और नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मीडिया सेंटर भवन हल्द्वानी का विधिवत शिलान्यास किया। 6,75,88

80,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाला ये मीडिया सेंटर कुमाऊं मंडल के पत्रकारों के लिए बहुउद्देश्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मीडिया सेंटर केवल एक भवन नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को समर्पित एक जीवंत मंच होगा। यह केंद्र पत्रकारों की कर्मस्थली, विचार विमर्श का संगम और जन जन की आवाज को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करने का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस भवन में आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि उत्तराखंड में उन्नत बागवानी की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए योजनाओं को दीर्घकालिक दृष्टि से तैयार किया जाए। सचिवालय में जायका वित्त पोषित उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास परियोजना से संबंधित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश के लिए बागवानी योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में कुल बागवानी क्षेत्र बढ़ाने के लिए किसानों को हैंड होल्डिंग, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बैठक में किसानों को ग्राफ्टिंग तकनीक का प्रशिक्षण देने को कहा ताकि उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। मुख्य सचिव ने कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था को मजबूत करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान के तहत पिथौरागढ़ न्यायालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला जज धनंजय चतुर्वेदी ने न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों से ईंधन की बचत के लिए प्रेरित करते हुए वैकल्पिक परिवहन अपनाने का आह्वान किया। राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जलवायु परिवर्तन को बड़ी वैश्विक चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि तापमान में लगातार वृद्धि, जल स्तर में गिरावट और जमीन में नमी कम होना गंभीर चिंता का विषय है, जिसके कारण जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। वन मंत्री ने बताया कि वनाग्नि नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की है ताकि उनके अनुभव का उपयोग किया जा सके। उन्होंने बताया कि फायर वॉचरों को 10 लाख रुपए तक की बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि जहां वनाग्नि की घटनाएं अधिक होती हैं उन क्षेत्रों में ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:35 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के गाए गुजराती लोकगीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत विविध कलाकारों के गाए गुजराती लोकगीत।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
2: FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, 11 बजे ही प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओं, वातावरण में गर्मी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में गर्मी में अपना बचाव करें, पानी खूब पिए, साथ ही पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें। इस गर्मी के मौसम में उनके लिए भी पानी की व्यवस्था करें। श्रोताओं, इस प्रकार से गर्मी के इस मौसम में हम बहुत हद तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं आप सभी के मैसेज के साथ। कार्यक्रम में पहला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। साथ ये फरमाइश हमें लिख भेजी है आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान, पूजा परिहार। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां। साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, ये मैसेज हमें लिख भेजा है मोहल्ला हलवायन कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और साथ में हीना कौसर। करोला मुरादाबाद से आप हैं अयुब खान, नीरम गुड़िया, शुएब खान। वारसी क्लब सिंधोली बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। आप सभी की फरमाइश पर लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म का नाम नीलकमल।

कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी की पसंद पर कच्छ गुजरात से गंगा बनकर गोविंद प्रीति चूली गीता महिमा विशाल विजय विराट विकास रमेश मह जयंती और साथ में इनका पूरा बनकर परिवार और इसी गीत को सुनना चाहा है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य लाडो कोयल मल्होत्रा इनकी पापा जी।

जिला मुरादाबाद गांव महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद मोहम्मद, दानिश सिद्दीकी। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूर्ण विशाल, प्रिय दिशानी और निमित आहूजा। और ये फरमाइश हमें लिख भेजी है, मोरटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमलांतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना मन मानस और कनिका पटेल। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में एक गीत, फिल्म का नाम है चोरी चोरी।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5।

0: मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के लिए अगली फरमाइशों में लिखते हैं आप हैं ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव अनुसुईया पवन राजे जाधव, छत्रपति संभाजीनगर से मंगेश इंगले संध्या स्वराज विराज। साथ ही फरमाइशों में लिखते हैं पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइशों में लिखते हैं आप हैं भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा, दीपक अनुश्री, श्याम कुंवर। और इसी गीत को सुनना चाहा है शास्त्री नगर शहर से किशन सबकाल, आशा सोनिया, साईराज और विशाल सबकाल। साथ ही ये फरमाइश हमें लिखते हैं आप हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा। और ये फरमाइश हमें लिखते हैं मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और साथ में है माही मलिक। और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं दाऊ सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्न मुद्दसिर साबरी, जकीर और बजरीफ अंसारी। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं हैदराबाद तीसरा मंडल से सदानंद गौड़ और सत्यमा। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप हैं टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वामी कावानी। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं गांव जाखोद राजस्थान से शंभूदयाल खटक, विमलती, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और कुमारी पूजा। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है लव स्टोरी।
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष साथ ही फरमाइश में लिखते हैं नई बस्ती गंज डिडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी नाजम बेगम मोहम्मद आसिफ हाशमी मोहम्मद तैमूर मोहम्मद कलीम अंसारी और इसी गीत को सुनना चाहा है गुजरात गांधीधाम से पवीन सोनी पूजा पायल और साथ में जगदीश जोहरी ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता परमेश्वर मीनाक्षी काना मनोहर भाई बागरी प्रभुलाल बागरी बागरी मोहल्ला अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और साथ में इनके परिवारजन और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं सहारनपुर से आशा नारंग सोनाली और सुरेश नारंग ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं किशोर नगर अमरावती के हीरा मनशिंडे शीला देवी और सिद्धार्थ गोडा ने ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं गंज डुंडवारा से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमराना नाज नवाज शेख दानिश शेख अमन अफरीदी और साथ में इनके परिवारजन ये फरमाइश हमें लिख भेजी है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं बुलढाणा बड़सिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर शोभा ताई मानकर दीपाली और श्लोक कुमार बुलढाणा इस्लामपुर से सहदेव दामोदर शशिकला और सुमित कुमार ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं बीजेना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव कुणाल हर्ष मनीष अंशिका यूनुस खान और साथ में है सोफिया खान फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है कस्बा गुनोर यूपी से फारूक अली खान फेजी फरहाज फरहीन फारिया और ताहिरा साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं लदावली मुरादाबाद से अजीत कसाना माया देवी रीति कुरादित्य कसाना ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है गाडगे नगर यवतमाल से लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पनाताई प्रतीक्षा शैलेश स्वप्नी लक्षिता लोखंडे और साथ में इनका पूरा लोखंडे परिवार आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल सर फिल्म का नाम है माया
2: जी

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ये देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी के अनुरोध पर विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा। और मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं मरहरा दरवाज़ा एटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नवेद, रसीद, सुहेल और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, रीतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं श्रोता लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, लुकमणी साहिल और भारती बघेल। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल तनवी और अंकित कांगड़ा। ये फरमाइश हमें लिखते हैं महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती विनीत नाचानी, मिथिल प्रगति नाचानी, बाबू भाई और साथ में भारती देवी। और इसी गीत को सुनना चाहा है जवाहर नगर दुर्ग से RC कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और बुपुल कांबड़े। ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल और सुरुज। साथ ये फरमाइश हमें लिख भेजी है आप है गुबला झारखंड से SM जावेश, गुप्त, अंजुम और नजमुल हुदा। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता लिखते हैं आप है गांव चौहलदा बागपुर से संजय ठेंगिया, नमन पाढ़ेंगिया। साथ ही ये फरमाइश लिखने वाले श्रोता आप हैं धामण गांव जिला बुलढाणा से समर्थ दादा जेठी पाटिल, भागवत लक्ष्मी कुमारी सानिका जेठी पाटिल। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ों में गीत फिल्म का नाम है नसीब।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: समय 11:30 और 24 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम बट सफर बाईश आकाशवाणी के 13 दून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की पसंद पर। जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से पूनम कुकरेती, सुनील कुकरेती, विवेक, वंदिता वंश, साथ ही फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, साथ ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं निज़ामाबाद तेलंगाना से एम ए वही त्रिमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनीद, मोहम्मद जुबीर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नुमान, साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। साथ ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखबीर, काजल बड़वाल, लखबीर बड़वाल, रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदू, प्रवीण, शीतल, नवीन नगीला, निशान अनमोल और इनके प्यारे बेटे छटकू मटकू, साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। गांव लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, साथ में इनके बहुत सारे मित्र। गांव करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरीन अंसारी, समानसारी, शमीम और साथ में माहिनूर अंसारी, और इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं करताल हैदराबाद तेलंगाना से कानूगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रवाली का, विष्णुवर्धन और विघ्नेश, ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। आप हैं सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, निज़ामुद्दीन और कौसरुद्दीन। गांव जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरी, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, और इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं जय बिहार नजफगढ़ से शाहरुख फारूक, शबनम, शहना।

हजूर साहब में इनकी परिवारजन और ये फरमाइश हमें लिख भेजी है। आप हैं गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शमी रजनी आकाशदीप और इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ में गीत फिल्म का नाम है वारिस।

कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की फरमाइश पर। उनेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया, धाकड़ भोला वाकतरिया, परवीन रियांश, प्रतीक वाकतरिया, साथ ही फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल रजित कौर, जयप्रकाश, राहुल प्रियंका, मन्नत गुर, कीरत गुरु, शबल सिंह रावल, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजी है। आप एक ग्राम पंचायत कालेगांव मुजाफराबाद से सुधाकर राजे जादव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित बयाल कुमार, प्रथमेश कुमारी प्रणाली कुमार, सर्वदे देशमुख और साथ में इनके परिवारजन, ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। सनावर से शेख

तमोसिन और सातवीन के बहुत सारे मित्र, और ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप एक करणवीर हाउस मुच्चो कैचिया भटिंडे पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मंजीत कौर करणवीर करण दपिंद्र वरिंद्र कुलदीप सिंह मुएकम दमन और अभिजोत। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, दरियापुर भाबले महाराष्ट्र से गजानन येले नवदीप विश्वदीप अशोक येले शेरी वड्डी रकोला से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंत भगत अरुणा चेतन और सुलोचना भगत। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप ही मित्र नगर बीड़ शहर से विकास बंसोड़ी रेखा आदिति और वैभव शिंदी। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आप हैं पुरानी बिलाई छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी बेगम हमीमुद्दीन जीशान शाह नवाज़ और साथ में इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है धनुरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद बेबी आलिया और साथ में आयान बाबू। साथ ही फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, आप हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रामकारी मीना कारी पुंज राजा आरती आकर्षण और जय श्री। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल सर फिल्म का नाम है सरगम।

0: परिषद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं गोकुल चौक गंग जिला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे राकेश रंजन राजीव रंजन संजय कुमार ओम कुमार गुंजेश कुमार रिया रानी कुमकुम कुमारी साक्षी और साथ पीन के परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश में लिखते हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खारापुर से भाई रफल साहिब सईद भाई राशिद भाई असद भाई फिरोजा मुस्कान अफसर अली और साथ में नगमा नाज मंसूरी। और ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। आपने फरमाइश लिख भेजी है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन चेतन रचिता और आशीष राजा। ये फरमाइश होता लिखते हैं आप हैं पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडी उषा अनुश्री और धनश्री। बंडी डबवाली से आप हैं राजेंद्र नारंग अंजू मोहित लक्की और साथ में तानिया नारंग। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं कमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। ये फरमाइश हमें लिखते हैं आप हैं आदर्श नगर मुलोट पंजाब से राज शर्मा मीना योगेश मेंडी सूरव साइना और साथ में दीवान शर्मा। साथ ये फरमाइश हमें लिख भेजी है आपने मैसेज लिख भेजा है गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से बबलेश पंवार डेनी मनीष पंवार रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल। साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं आप हैं हरगोविंद नगर से आप हैं सुरेंद्र संधू अनीता रोहित रितेश और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है आप हैं जिन्होंने फरमाइश लिख भेजी है आनंद बिहार दिल्ली से किशन बंजानी नीलम स्वाति और केशु। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं रेलवे रोड गंज डिडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी भुवन प्रकाश गौतम डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम शबनम अनवार नजमा बेगम और साथ में इनके परिवारजन। पौड़ी गढ़वाल से हैं रमा रावत। साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं गांव पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से आप हैं मास्टर अलीम पटेल मुजाहिद पटेल नदीम और इनके परिवारजन। साथ ही ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं रामपुर से अयूब अली और इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल गीतिका और भानु प्रकाश। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत फिल्म का नाम है जीत।

आयशोता भरती, आप सभी की फरमाइश के अगले गीत की ओर मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया नसुरेहन। साथ ही फरमाइश हमें लिखते हैं मानक मऊ से राजी रानी गौर रोजीपुर गांव कुमार हेडल सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना हसन अक्सर नाजियाफिया इब्राहिम सद्दाम। साथ ही फरमाइश श्रोता लिखते हैं जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास आशा देवी राघव कुमार भानुप्रिया देवाश्री मेघा राशि और साथ में वर्षा सुमन। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज हमें लिख भेजा है नजीब आबाद से हैं मनोज वर्मा। साथ ही हमारे साथ ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं गाँव पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंचोली आदर्श सार्थक अलौकिक। ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं आप हैं रामगंज खंडवा से विजय मोहबिया कविता विशाल विवेक सोनू बोनू रानू सपना शिवी सलोनी और साथ में पेंटर बाबू। और इसी गीत को सुनना चाहा है फातिमा कॉलोनी महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिद गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर सभी और मेखा जैनब मुजावर चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजे खुशी दिल संगीता रानी पप्पू महक सुनीता और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ में गीत फिल्म का नाम दोस्ताना।

आई श्रोता बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश की इस अगले गीत की ओर। मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं शेरवानी स्कूल गंजे डुंडवारा से आपताब अंसारी रियाज मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर डुबना अंसारी और आली अंसारी और इसी गीत को सुनना चाहा है। आपने मैसेज हमें लिख भेजा है पुराना तालाब डुमराव से बल्लीउल्ला अंसारी असमा नाज शबनम बानो जेलो बक्सर से राजेश टी अंसारी और फातमा नाज चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा और साथ ही फरमाइश लिखते हैं आप हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान जय नारायण तरुण और प्रतीक चौहान। साथ ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है लाल कुर्ती रोड की कैंट से राजेश वर्मा मंजू निशांत कौशिकी दीपाली वर्मा युवा नुरार की राजा ने। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं जलालाबाद शामली से राशिद मंसूरी आयान और जीशान मंसूरी और इसी गीत को सुनना चाहा है। कलानोर से नरेंद्र शर्मा किरण नितिन और मयंक शर्मा ये फरमाइश लिखते हैं आप हैं डुमराव से राजंसारी और इनके परिवारजन और इसी गीत को सुनना चाहा है। माल्यान सरदना मेरठ से अनिल जैन संयम जैन मुस्कान जैन मास्टर जीव्याम जैन और इनके परिवारजन ये फरमाइश हमें लिख भेजी है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोध निखिल और तनवी कांगड़ा ने। कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी नईम डॉक्टर आमिर अंसारी दानिश राजा और मुन्ना नसीम आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर लता मंगेशकर को फिल्म का नाम है गीत।

0: इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश मेलिक भेजी थी टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और इंद्रजीत कौर ने। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं आप एनाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी गुल्ला सलमा सदरहम और मोहम्मद आलम हाशमी ने। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले सविता निकेत रोहिणी ऋषिकेश जीविका सानिका दले पुनावले पुणे से अजय सोनबने और इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमें लिख भेजी थी आपने जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नसरी नौरी नासना मोहम्मद कैफ अंसारी ने। साथ ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी थी सेक्टर 5 कोड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित और बेबी गर्वी। साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं सेखो कॉलोनी सामना मंडी से नवदीप गोयल मनप्रीत और साथ में इनके परिवारजन। साथ ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं तेलंगाना स्टेट करीमनगर से लक्ष्मी नारायण विजय अभिनय और साई किरण। और इसी गीत को फरमाइश हमें लिख भेजी थी सुनने के लिए तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास करुणा आयुष विवेक बेबी आयुष श्रीवास। और ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं छत्रपति संभाजीनगर से आप हैं प्रकाश बोरगांवकर सुषमा प्रांजलि और इनके परिवारजन। साथ ही फरमाइश लिखने वाले श्रोता भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी हरमिंदर चावला लोकेश शिव कुमार शर्मा बेबी वेदेही जोशी और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी थी आप हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। श्रोताओं इसी के साथ आज का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यहीं पर सम्पन्न हुआ। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 12 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क समुद्र के नीचे बिछी केबलें प्रशिक्षण क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला

0: दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Quad Foreign Ministers meeting concluded in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the meeting, which was attended by U.S. Secretary of State Marco Rubio, Foreign Minister of Australia Penny Wong, and Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He underlined that as democratic nations, they also devoted their attention to countering the common threat of terrorism.
2: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
1: Dr. Jaishankar said bilateral exchanges were devoted to the current state of the world and these 4 nations focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. He said the maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables and disaster relief activities, among others. U.S. Secretary of State Marco Rubio said Quad countries made further progress on operationalizing their relationship on the areas that they can cooperate.
3: On the areas of cooperation, and it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of 4 strategic allies in which

0: filing and collection of self-declaration forms before passengers disembark. Defense Minister Rajnath Singh has said the successful rescue of 300 tourists stranded in cable cars in Gulmarg by a joint rescue team reflects the swiftness, professionalism, courage and coordination of India's disaster response agencies. In a social media post, Mr. Singh lauded the efforts of the joint team comprising the Indian Army, Jammu and Kashmir Police, NDRF, SDRF and Civil Administration for carrying out the challenging operation with efficiency and resolve. Today is the day of Arafat, considered the holiest and most significant day of the annual Hajj pilgrimage. It is being observed in Saudi Arabia. More than 1.5 million Muslims from across the world have moved from Mina to the plains of Mount Arafat to offer prayers and seek forgiveness and mercy from God. Pilgrims had begun arriving in Mina yesterday ahead of the key Hajj rituals. The gathering on the ninth day of Dhul Hijjah is regarded as the spiritual peak of the pilgrimage and is among the largest religious congregations in the world. Indian authorities in Saudi Arabia have said elaborate arrangements have been made for more than 1,75,000 Indian pilgrims performing Hajj this year. In Uttar Pradesh, there is no respite from heat wave as the temperature is oscillating between 43 to 47 degrees at many places. Bundelkhand region is the worst hit, where temperature in almost all districts have crossed the barrier of 45 degrees Celsius. Banda was recorded as one of the hottest places in the country with 47.6 degrees. And with that, we end this news bulletin.
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 12:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप मानव डोभाल से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने प्रदेश में सड़क और पुलों के निर्माण कार्यों के लिए 150 करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर की। उत्तराखंड में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए डीटीएच प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपदा संबंधी अलर्ट प्रसारित किया जाएगा। अब तक देश विदेश के 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम की यात्रा की। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा फल सुधार परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए 20 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल में नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी मिली। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में सैन्य अधिकारियों ने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने नरेंद्र नगर, गढ़ी नेगी और पार्टी में 9 जून को होने वाले निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा, प्रदेश में उन्नत बागवानी की संभावना को देखते हुए संपूर्ण बागवानी योजना बनाई जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 31 मई को होने वाले विभिन्न विभागों के वाहन चालक भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीन की जाँच होगी। सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान के तहत पिथौरागढ़ न्यायालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। और मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी जिलों में आज और कल लू जैसी स्थिति की संभावना जताई। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:12 हुए हैं, लीजिए सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए ललित कुमार के गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर सैकत मंडल और हारमोनियम पर मनीष कुमार शाह। तो आइए सुनते हैं ललित कुमार के गाए भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ललित कुमार के गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर सैकत मंडल और हारमोनियम पर मनीष कुमार शाह। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:30 हुए हैं, बहने सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम महिला जगत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और आज मैं आपके साथ हूं कीर्ति जखमुला। बहनों, कहा गया है ना कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये दिल जोड़ भी सकते हैं और दूरियां भी मिटा सकते हैं। इंसान के मन में हर दिन ना जाने कितने विचार, भावनाएं और सपने जन्म लेते हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते। कभी झिझक से, कभी डर से, तो कभी ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच यही है कि खुद को अभिव्यक्त करना जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। श्रोताओं, जब इंसान अपनी भावनाओं को मन में दबा कर रखता है तो धीरे धीरे वो अकेलापन महसूस करने लगता है। मन की बातें अगर सही समय पर किसी अपने से कह दी जाएं तो मन हल्का हो जाता है और रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि खामोशियां अक्सर वही बातें कह जाती हैं जिन्हें शब्द कहने से डरते हैं। लेकिन हर समय चुप रहना भी ठीक नहीं। अपने विचारों को सम्मानपूर्वक सामने रखना आत्मविश्वास की निशानी है। खुद को अभिव्यक्त करना केवल बोलना नहीं होता, बल्कि ये अपने व्यक्तित्व को पहचान देना होता है। कोई अपनी बात लेखन के माध्यम से कहता है, तो कोई संगीत से, कोई चित्रकला से और कोई अपने व्यवहार से। एक और खूबसूरत पंक्ति मुझे याद आ रही है कि भावनाएं छिपाने से नहीं, साझा करने से हल्की होती हैं। जी हाँ, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अक्सर अपनी परेशानियां भीतर ही भीतर सहते रहते हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम अपने मन की बात कहने की आदत डालें और दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनें। क्योंकि कई बार ना किसी इंसान को सलाह से ज्यादा एक ऐसी साथी की जरूरत होती है जो उसे समझ सके, सुन सके। जब बच्चे अपनी बात खुलकर कहते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब युवा अपने सपनों को वो शब्द देते हैं तो उनकी दिशा स्पष्ट होती है। और जब परिवार के लोग एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं तो रिश्तों में अपनापन बना रहता है। याद रखिए बहनों, अभिव्यक्ति वो रोशनी है जो मन के अंधेरों को दूर करती है। इसीलिए अपनी बात कहिए, अपने विचार साझा कीजिए, अपने मन को खुलकर जीने दीजिए। क्योंकि खुद को अभिव्यक्त करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सशक्त व्यक्तित्व की पहचान है। तो चलिए, बातों का रुख अब मोड़ते हैं और ले चलते हैं आपको एक खूबसूरत गीत की ओर।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Future proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
3: बहनों, आज हम एक ऐसे साथी की बात करने जा रहे हैं जो कई दशकों से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है और जिसने न सिर्फ हमें जानकारियां दी हैं बल्कि हमारे अकेलेपन को और तनाव के पलों में भी साथ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेडियो की। रेडियो के 90 वर्षों की ये यात्रा सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि भावनाओं, आवाज़ों और भरोसे की भी एक लंबी यात्रा है। तो आइए हम अपने श्रोताओं से ही जानें कि रेडियो ने उनका कितना साथ निभाया है।
4: हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
5: मेरा नाम सुषमा बिष्ट है। मैं पिछले 30 वर्षों से शिक्षिका के रूप में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही हूँ।
4: एक शिक्षिका के रूप में आप महिलाओं के मानसिक तनाव को किस तरह से देखती हैं?
5: एक शिक्षिका के रूप में मैं महिलाओं के मानसिक तनाव को उस समय गंभीरता से देखती हूँ जब घर की, परिवार की, अपने बच्चों की पढ़ाई की और भी अपने साथ इतनी जिम्मेदारियों को वो एक साथ निभाती हैं कि कई बार तो वो अपनी परेशानियों को कह भी नहीं पाती।
4: और इसमें रेडियो कितनी मदद कर सकता है?
5: रेडियो इसमें बहुत मदद कर सकता है, खासकर उन महिलाओं को जो इंटरनेट या किसी सोशल मीडिया के मंचों से बहुत दूर हैं। रेडियो के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में उन्हें जानकारी दी जा सकती है, उन्हें विशेषज्ञों के बारे में बताया जा सकता है, उन्हें यह एहसास कराया जा सकता है कि वे अकेली नहीं है।
4: क्या आपको लगता है कि आकाशवाणी जैसे माध्यम महिलाओं को भावनात्मक सहारा देने में आज भी प्रभावी हैं?
5: हाँ, आज भी देश के ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ इंटरनेट या सोशल मीडिया की कोई पहुंच नहीं है, वहाँ आज भी महिलाएं काम करते करते रेडियो सुनती हैं और अगर उनकी समस्याओं पर आसान भाषा में बात हो तो उन्हें काफी सहारा मिलता है।
4: सुषमा जी, ये बताइए कि जब आप रेडियो सुनती हैं तो आपको सबसे ज्यादा अपनापन किस चीज में महसूस होता है? गीतों में, आवाज में या बातचीत में?
5: मुझे सबसे ज्यादा अपनापन रेडियो के बातचीत प्रोग्राम में महसूस होता है। हाँ, आवाज और गीत भी अपना अलग अलग असर छोड़ते हैं, लेकिन बातचीत में जो भावनात्मक रूप से हम उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं उसकी तो बात ही कुछ अलग है, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी भावनाओं को समझ रहा है और वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बातचीत में सबसे ज्यादा मुझे अपनापन महसूस होता है।
4: हम सभी की आकाशवाणी के साथ न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं, जैसे कि पुराने गीत, समाचार, फरमाइशी कार्यक्रम और मधुर आवाजें। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप क्या कहना चाहेंगी?
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो माध्यम नहीं है बल्कि हमारी यादों और भावनाओं का एक हिस्सा रहा है। 90 साल पूरे होना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है। इतने लंबे समय तक लोगों के दिलों से जुड़े रहना आसान नहीं होता। मैं तो यह कहूंगी कि आकाशवाणी ने पीढ़ियों को जोड़ने का काम किया है और उम्मीद करती हूँ कि यह आगे भी इसी तरह लोगों तक पॉजिटिविटी, संस्कृति और अच्छी बातें पहुँचाता रहेगा। नमस्कार।
4: आपका नाम क्या है?
6: हेलो मैम, मेरा नाम अपूर्वा तोमर है।
4: आप क्या करती हैं?
6: जी, मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी 12th के बोर्ड्स दिए हैं और अब मेरा नेक्स्ट मंथ से कॉलेज स्टार्ट है।
4: ओह, तो आपका रिजल्ट कैसा रहा?
6: अच्छा था मैम, 85%।
4: बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल रहेगा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट।
6: थैंक यू, थैंक यू।
4: अच्छा तो ये बताइए कि आपके बोर्ड का सफर कैसा रहा?
6: मैम काफी यादगार रहा, कभी स्ट्रेस होता था, कभी रिजल्ट को लेके एक्साइटमेंट, लेकिन जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तब तो एक अलग ही रिलीफ मिलता है।
4: क्या आप रोज रेडियो सुनती हैं?
6: हाँ जी, मैं स्पेशली जब शाम के वक्त वॉक करने जाती हूँ ना, या पढ़ाई के बीच में जो बीच में हम ब्रेक्स लेते हैं, तो काफी सही लगता है मुझे। रेडियो तो मतलब हिस्सा ही बन चुका है।
4: बोर्ड के टाइम पे या एग्जाम्स के टाइम पे रेडियो ने आपकी किस तरह से हेल्प की?
6: जब ज्यादा टेंशन होती है ना, तो एक तो रेडियो काफी पुराने सॉफ्ट सॉन्ग्स चलते हैं और पॉजिटिव टॉक्स भी होती है, तो मन काफी शांत हो जाता है, फिर से पढ़ने का मन करता है।
4: क्या आपके बाकी फ्रेंड्स भी रेडियो सुनते हैं?
6: मतलब हाँ, कुछ फ्रेंड्स सुनते हैं, लेकिन सब नहीं सुनते। आजकल तो लोग जैसे फोन पर ही बिजी रहते हैं, पर मैं उनको भी काफी मोटिवेट करती हूँ कि लाइक आप स्क्रोलिंग से अच्छा रेडियो सुनो, क्योंकि इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ही मिलता है, जैसे न्यूज की बातें या फिर कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की, तो काफी जानकारी भी मिलती है।
4: बहुत ही अच्छी बात कही अपूर्वा आपने। आज के समय में जब लोग सोशल मीडिया में ज्यादा व्यस्त हैं, ऐसे में आपका रेडियो के प्रति ये नजरिया सच में सराहनीय है। रियली आपसे बात करके एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई हैं।
6: थैंक यू।
4: चलिए अब बात करते हैं प्राची से, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। ये बताइए प्राची कि रेडियो आपकी लाइफ में किस तरह से मदद करता है?
7: मेरे लिए रेडियो एक स्ट्रेस बूस्टर की तरह है। कॉलेज में स्टडीज और असाइनमेंट के प्रेशर के बीच जब अच्छे सॉन्ग्स या पॉजिटिव बातें सुनने को मिलती हैं, तो माइंड फ्रेश फील करता है।
4: अच्छा ये बताइए प्राची जी कि कभी रेडियो सुनते सुनते आपका मूड सडनली बेटर हुआ है?
7: हाँ, कभी पूरा दिन हैक्टिक होता है, लेकिन फेवरेट गाने या फनी कॉन्वर्सेशन सुनते ही मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है।
4: आपको लगता है कि सोशल मीडिया के दौर में अभी भी रेडियो की अपनी एक खास बात है?
7: सोशल मीडिया कभी कभी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग और नेगेटिव लगता है, लेकिन रेडियो सिंपल और पीसफुल फील कराता है, इसीलिए उससे स्ट्रेस कम होता है।
4: आपका नाम क्या है और आप क्या करती हैं?
8: नमस्कार, मैं कनिका कथुरिया, मैं कैंडल मेकिंग का बिजनेस करती हूँ।
4: अगर आपको रेडियो को एक शब्द में बताना हो तो आप क्या कहेंगी और क्यों?
8: रेडियो को एक शब्द में बयां करना तो मुश्किल है, बट अगर एक नाम देना हो तो मुझे लगता है पार्टनर, साथी, क्योंकि रेडियो हर समय लोगों का साथ देता है, चाहे वो काम पे हो, चाहे अकेलेपन में हो, चाहे एंटरटेनमेंट में हो, मनोरंजन में हो, किसी भी तरीके से हो, तो मुझे लगता है साथी एक अच्छा वर्ड होगा रेडियो के लिए।
4: क्या आपको लगता है कि रेडियो सुन करके आपका मूड एकदम से बदल जाता है या मन शांत हो जाता है?
8: जी हाँ बिल्कुल, कभी भी मेरा मूड ऑफ होता है, मैं मायूस होती हूँ, तो रेडियो के आने वाले जो गाने हैं उनसे मेरा मन बहुत खुश होता है। जब मैं रेडियो पर गाने सुनती हूँ, खासकर पुराने गाने, उनका मजा ही अलग होता है।
4: आपके जीवन की कौन सी यादें रेडियो या आकाशवाणी से सबसे गहराई से जुड़ी हुई हैं?
8: वैसे तो रेडियो की बहुत सारी यादें हैं मेरी लाइफ में, बट सबसे खूबसूरत यादें बचपन की जुड़ी हैं। पहले जैसे घर में सुबह सुबह रेडियो पर गाने आना, समाचार चलते थे जिन्हें पूरा परिवार साथ में बैठकर सुनता था। रेडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि परिवार और भावनाओं को जोड़ने वाला एक खास साथी था। आज भी जब रेडियो सुनती हूँ तो वही पुराने यादें ताजा हो जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है रेडियो को सुनना।
4: आपका क्या नाम है?
9: जी मेरा नाम किरण है, मैं एक स्कूल टीचर हूँ।
4: क्या रेडियो आपके मी टाइम का हिस्सा है?
9: जी हाँ बिल्कुल, दिन भर की बिजी लाइफ के बीच रेडियो सुनना मेरे लिए कुछ अपने लिए वक्त निकालने जैसा लगता है। अब पूरे दिन काम और जिम्मेदारियों के बाद जब रेडियो सुनती हूँ तो मन को काफ़ी सुकून मिलता है। गाने और प्यारी बातें सुनकर थकान थोड़ी कम लगती है।
4: अच्छा ये बताइए कि एक वर्किंग वूमन के लिए रेडियो कितना अच्छा साथी हो सकता है?
9: मेरे हिसाब से रेडियो एक बहुत अच्छा साथी है। काम करते वक्त भी गाने और अच्छी बातें सुनने से अकेलापन दूर होता है और मन भी खुश रहता है।
4: क्या कभी रेडियो ने आपके स्ट्रेस को या कहें आपके टेंशन को कम करने में हेल्प की है?
9: हाँ कई बार, कभी स्कूल का प्रेशर बहुत ज़्यादा, काम होने पर मन परेशान हो जाता है, लेकिन रेडियो सुनने से धीरे धीरे मन शांत हो जाता है।
4: क्या आपको लगता है कि रेडियो सिर्फ पुरानी पीढ़ी तक ही सीमित रह गया है?
9: बिल्कुल नहीं, आज भी हमारी जनरेशन रेडियो से जुड़ी हुई है क्योंकि इसमें एक सुकून है जो हर किसी को पसंद आता है।
3: हमें अपना नाम बताइए।
10: हेलो, मेरा नाम सरबजीत कौर है और मैं देहरादून में रहती हूँ।
3: ये बताइए कि महिलाओं के जीवन में रेडियो का भावनात्मक महत्व आप किस तरह से देखती हैं?
10: कई बार जब मन परेशान होता है तब रेडियो पर पसंदीदा गीत या सकारात्मक कार्यक्रम सुनकर मन शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हमसे बात कर रहा हो और तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। रेडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा माध्यम है। यह महिलाओं को अपनापन, सुकून और साथ होने का एहसास कराता है, खासकर तब जब वे अकेलापन महसूस करती हैं।
11: नमस्कार, मेरा नाम मानवी चौधरी है, मैं देहरादून में रहती हूँ। रेडियो की आवाज में एक अपनापन होता है जो महिलाओं को अकेलापन महसूस नहीं होने देता। कई बार प्रेरणादायक बातें और गीत मन को शांत करते हैं और भावनात्मक सहारा देते हैं। घरेलू काम करते समय रेडियो सुनने से महिलाओं को थकान कम महसूस होती है, इससे उनका मन व्यस्त और प्रसन्न रहता है तथा दिन भर के तनाव से थोड़ी राहत मिलती है और मन शांत रहता है।
3: धन्यवाद बहनों। रेडियो के 90 वर्षों की ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए लेकिन सरलता और अपनापन कभी पुराना नहीं होता। रेडियो आज भी हमारे दिलों में बेहद करीब है क्योंकि ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये एक एहसास है। तो आइए रेडियो को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। धन्यवाद बहनों। अभी हम आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम सुन रहे थे और विषय था तनाव मुक्ति में रेडियो की भूमिका। 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप बने हुए हैं कार्यक्रम महिला जगत के साथ। बहनों, कहा गया है कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो और विचार सकारात्मक हो तो जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान अपनी व्यस्तताओं में इतना उलझ गया है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही भूलता जा रहा है। देर रात तक जागना, अनियमित खान पान, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी, ये सब धीरे धीरे कई बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। ऐसे समय में यदि कोई सरल, प्राकृतिक और प्रभावी उपाय हमें स्वस्थ जीवन जीने की राह दिखाता है तो वो है योग। करें योग, रहें निरोग। जी हाँ बहनों, योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। ये शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम है। भारत की ये प्राचीन परंपरा आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ अपनाई जा रही है। योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति आसानी से अपना सकता है। बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग, हर किसी के लिए योग लाभकारी है। नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ और लचीला बनता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। बहनों, आज के समय में तनाव लगातार लगभग हर व्यक्ति की समस्या बन चुका है। विद्यार्थी परीक्षा के दबाव में हैं, नौकरी पेशा लोग काम के तनाव में और गृहिणियां घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती हैं। ऐसे में योग और ध्यान मन को शांति देने का कार्य करते हैं। प्राणायाम और ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। इसीलिए बहनों, योग अपनाइए, स्वास्थ्य पाइए, तन मन को खुशहाल बनाइए। करें योग, रहें निरोग, यही स्वस्थ जीवन का संयोग। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं आपको एक खूबसूरत गीत की ओर।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: Future-proof your career with UPES Dehradun, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
2: Behno, ab chalte-chalte rasoi ghar se. फीकी दाल भी लगेगी चटपटी लंच में जब आप बनाएंगे बेसन के गट्टे का ठंडा ठंडा रायता चाटते रह जाएंगे परिवार के सभी लोग उंगलियां। बहनों अगर आप रोज की दाल और सब्जी से बोर हो चुके हैं और लंच में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो खीरा और बूंदी नहीं बल्कि बेसन गट्टे का रायता ट्राई कीजिए। जी हाँ, यहाँ हम आपको लेकर आए हैं एक आसान सी रेसिपी। गर्मियों के मौसम में अक्सर रोज रोज वही सब्जियाँ खा करके मन उब जाता है। ऐसे में कुछ ऐसा खाने का दिल करता है जो पेट को ठंडक भी दे और स्वाद भी लाजवाब हो। अगर आप आज भी वही पुरानी सब्जियां नहीं बनाना चाहती हैं तो ट्राई कीजिए बेसन गट्टे का रायता। अमूमन हम सभी बेसन गट्टे की सब्जी तो कई बार खाते हैं लेकिन इसका रायता आपके खाने का स्वाद चार गुना बढ़ा सकता है। दही की ठंडक और बेसन के गट्टों का तीखापन, चटपटा स्वाद जब आपस में मिलते हैं तो उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का बेहद आसान और क्रिस्पी तरीका। गट्टा बनाने के लिए बेसन एक कप, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, अजवाइन आधा छोटा चम्मच, तेल मोयन के लिए एक बड़ा चम्मच लगभग, नमक स्वाद अनुसार और गट्टा गूंदने के लिए पानी। अब ताज़ा दही लीजिए दो कप जो कि अच्छे से फेंटा हुआ हो, भुना हुआ चीरा पाउडर एक छोटा चम्मच, काला नमक आधा छोटा चम्मच, सादा नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटा हुआ हरा धनिया दो बड़े चम्मच, पुदीना पाउडर या बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां आधा छोटा चम्मच, तेल या घी तड़के के लिए एक छोटा चम्मच, जीरा आधा छोटा चम्मच, राई एक चौथाई छोटा चम्मच, बारीक कटी हुई मिर्च एक, हींग एक चुटकी। अब एक बर्तन में बेसन छान लें, इसमें दही, लाल मिर्च, अजवाइन, नमक और एक चम्मच तेल डालकर अच्छे से मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको एक सख्त आटा गूंथ लें। गूंथे हुए बेसन में लंबे लंबे रोल बना लें। एक कढ़ाई में दो कप पानी उबालें। एक कढ़ाई में पानी उबालने के बाद बेसन के रोल्स को पानी में डाल दें और 10 से 12 मिनट तक मध्यम आँच पर उबलने दें। जब गट्टों पर छोटे छोटे दाने दिखने लगें तो समझ जाएं कि ये पक चुके हैं। इन्हें निकालकर ठंडा होने दें और छोटे टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो इन्हें महीन सेव के आकार का भी बना सकती हैं। अब एक बड़े बर्तन में दही को अच्छे से फेंट लें ताकि उसमें कोई गुठली ना रहे। इसमें काला नमक, सादा नमक, भुना जीरा और पुदीना पाउडर डाल करके मिलाएं। कटे हुए बेसन के गट्टों को दही में डाल दें। अगर आप चाहें तो गट्टों को दही में डालने से पहले एक चम्मच तेल में फ्राई कर सकते हैं। बस इसे धनिया से सजा दीजिए और खाइए पराठे या रोटी के साथ। तो कार्यक्रम में बस अब इतना ही। इसी के साथ मैं कीर्ति जखमोला अब आपसे विदा चाहूंगी। नमस्कार।
3: यह था कार्यक्रम महिला जगत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 1 बजे को अब समाचार होंगी।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
5: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
6: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सू मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को

0: दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। प्रदेश में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को आधुनिक तकनीक से किया जा रहा मजबूत। आप टीवी स्क्रीन पर भी दिखेंगे आपदा संबंधी अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा राज्य में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। बागेश्वर जिले में जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई। और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में 1 माह का आओ हम सब योग करें अभियान चलाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रविंद्र सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अब डीटीएच प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपदा संबंधी अलर्ट प्रसारित किए जाएंगे। राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ करने के तहत डीटीएच के जरिए टेस्ट अलर्ट का सफल प्रसारण किया गया। पहले चरण में यह परीक्षण देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में किया गया। एक रिपोर्ट। परीक्षण के दौरान विभिन्न प्रमुख प्लेटफॉर्म पर टीवी स्क्रीन पर टेस्ट अलर्ट संदेश प्रदर्शित हुआ। यह संदेश लगभग 15 से 40 सेकंड तक स्क्रीन पर दिखाई दिया। इस प्रणाली के माध्यम से आपदा और मौसम संबंधी चेतावनियों का कुछ ही सेकंड में व्यापक स्तर पर प्रसारण संभव हो सकेगा। नई व्यवस्था के तहत टेलीविजन स्क्रीन पर सीधे संदेश दिखाई देने से लोगों का तत्काल ध्यान आकर्षित होगा। इससे अचानक बाढ़, भूस्खलन, भारी वर्षा, आकाशीय बिजली और लू जैसी घटनाओं से पहले लोगों को समय रहते सतर्क किया जा सकेगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, इसलिए समय पर चेतावनी का आम जन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि डीटीएच आधारित अलर्ट प्रणाली आपदा पूर्व चेतावनी तंत्र को अधिक व्यापक, त्वरित और प्रभावी बनाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीकों के उपयोग से अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगातार मजबूत कर रही है ताकि किसी भी आपदा या गंभीर मौसम की स्थिति में समय रहते सटीक सूचना उपलब्ध कराकर जनहानि और नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने 5 से 21 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत विश्वास, विकास और जनकल्याण का संदेश गांव-गांव पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इस अभियान के तहत पार्टी नेता जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां को गिनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इसको लेकर एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
3: मोदी जी 12 वर्ष जो है 5 जून से जो हमने पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं,
4: जिसमें वृक्षारोपण कार्य हुए, सेवा के कार्य होंगे।

0: निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों और कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने कोषागार में सभी रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित संरक्षण करने और डिजिटल माध्यम से पेंशनरों का सत्यापन कराने पर जोर दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही चारधाम यात्रा प्रबंधन को सशक्त बनाना, आपदा प्रबंधन के कार्यों को समयबद्ध पूरा करना और जनपद की विकास योजनाओं को त्वरित गति से पूरा करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: बागेश्वर जिले में जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं से वन संपदा के साथ साथ वन्य जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में वन विभाग की टीम आग पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। छतीना क्षेत्र के जंगल में कल रात अचानक आग लगने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वन रेंजर श्याम सिंह करायत ने बताया कि प्राथमिक तौर पर आग लगने के पीछे अराजक तत्वों की भूमिका होने की आशंका जताई जा रही है। विभाग ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई गई है। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि यदि जंगलों के आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत वन विभाग या प्रशासन को दें ताकि समय रहते ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
2: विगत 4-5 दिनों से तापमान में अचानक अत्यधिक वृद्धि के कारण थोड़ा सा जंगलों की जो आग है वो वास्तव में उसकी जो तीव्रता है वो बढ़ी हुई है, लेकिन बागेश्वर वन प्रभाग के सभी क्रू स्टेशन, हमारे बागेश्वर एम के क्रू स्टेशन बिल्कुल अलर्ट मोड में है। जहां पर हम है ये छतीना कंपाउंड नंबर 3 है और इसमें भी कल रात अचानक आग भड़क गई थी, तो रात में ही हम लोगों ने इसको नियंत्रण तो कर लिया था, लेकिन कहीं पर फिर रात में जो है आपका लाइन फटने से आज सुबह फिर लगभग जो है थोड़ा बहुत एरिया में हमारा ये आग फैली हुई थी, तो अभी हमारी टीम ने इसको नियंत्रित कर लिया है। और ग्रामीणों से भी हमारी अपील है कि इस भीषण गर्मी में इस प्रकार की आग लगाने की पुनरावृत्ति को न अपनाएं और वन विभाग लगातार प्रयास भी कर रहा है अपराधियों को पकड़ने की।
0: सोबन सिंह जिना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के योग विज्ञान विभाग द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 मई से 21 जून एक माह का आओ हम सब योग करें अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आर्य कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं के लिए एक माह तक विशेष निःशुल्क योग शिविर आयोजित किया गया है। छात्राओं को प्रतिदिन सामान्य योगाभ्यास के साथ साथ विभिन्न रोगों के उपचार के लिए योगासन, प्राणायाम, ध्यान, आसन, भुजंगासन आदि योगिक क्रियाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। योग विज्ञान विभाग के प्रधान योगाचार्य डॉ. गिरीश अधिकारी ने बताया कि योग शिविरों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, गंगा स्वच्छता और भारतीय संस्कृति से जुड़ने का संदेश दिया भी जा रहा है।
3: नमामि गंगे व सोबन सिंह जी ने विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आओ हम सब योग करें अभियान लगातार 2015 से चलता आ रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष योग विज्ञान विभाग का संकल्प रहता है कि 3 लाख से 5 लाख लोगों तक, जन जन तक यह योग का अभ्यास पहुंचे, जिसमें हमारे योग साधक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग की विधाओं को सिखाकर केवल शारीरिक रोगों को ही दूर नहीं अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रोगों को भी दूर कर रहे हैं। जहां केवल अल्मोड़ा ही नहीं, अल्मोड़ा के साथ साथ मुरादाबाद, दिल्ली, लखनऊ के साथ साथ देश के अनेक अन्य राज्यों में भी योग का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जहां के लोग खूब सारा प्रोत्साहित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी व प्रसन्नता जता रहे कि हाँ हमें योग से अनेक प्रकार के लाभ उत्पन्न हो रहे।
0: वहीं छात्रा सिद्धि टमटा और सपना आर्य ने कहा कि योग शिविर से विभिन्न योगिक क्रियाओं को जानने के बाद वे अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे।
4: हमारे स्कूल में विज्ञान विभाग द्वारा योगा सिखाया जा रहा है, जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और योगा से हम रोज नए नए योग सीख रहे हैं और हम दूसरों को भी सिखाएंगे योग।
5: हमारे वहाँ विज्ञान विभाग द्वारा योग संचालित किया जाता है, जिससे कई सारे रोग नष्ट होते हैं, जैसे सर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, इससे हम कई जगह योग का प्रचार करेंगे।
0: देहरादून के डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत नागल बुलंदावाला के किशनपुर ग्रांट में नए आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया है। ग्राम प्रधान अंजू लोधी ने कहा कि नए केंद्र के शुरू होने से बच्चों और महिलाओं से जुड़ी गतिविधियों का संचालन बेहतर तरीके से हो सकेगा और ग्रामीणों को सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि भवन न होने से बच्चों को परेशानी होती थी, लेकिन अब

उनके लिए स्थायी भवन उपलब्ध हो गया है। वहीं ब्लॉक प्रमुख डोईवाला गौरव सिंह ने कहा कि यहां आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में चल रहा था, अब भवन बनने से यहां बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को आधुनिक तकनीक से किया जा रहा मजबूत, अब टीवी स्क्रीन पर भी दिखेंगे आपदा संबंधी अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा राज्य में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। बागेश्वर जिले में जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में एक माह का आओ हम सब योग करें अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, फिल्म का नाम था आरज़ू, गीत था हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जय किशन का था।
1: Your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
0: ये संगीत है ओपी नेहर का, गीत है मजरूह सुल्तानपुरी का, आवाज आशा भोसले की, फिल्म का नाम मेरे सनम।

0: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: आई मिलन के बेला, आइए आपको सुनवाते इस फिल्म से गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

आज मिलन की बेला। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल सरमी। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यही पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हो रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल,
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही, जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
2: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
2: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
2: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
2: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी,
2: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
2: जी।
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
2: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
2: जी।
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
2: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी।
2: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
2: जी।
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
2: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
2: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
3: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
4: अ जू?
3: यस, अ जू।
4: Oh yes.
3: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
4: Tiger. Lion.
3: Yes.
4: Monkey. Birds of different kind.
3: Very nice.
4: Camel. Giraffe. And so on.
3: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem. And you all repeat after me. Ready?
4: Ready!
3: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
6: बिल्कुल ठीक है।
5: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
7: वीर जोरावर की
8: जय।
7: वीर जोरावर की
8: जय।
7: जय जयरापुर जय भारत।
8: जय जयरापुर जय भारत।
4: राजा जोरावर सिंह।
9: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जयरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
10: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
9: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था।

0: खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
1: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
2: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
2: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
2: आपके सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
2: जी महाराज।
0: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
0: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
0: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
0: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
0: जी।
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
0: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
3: जी।
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
6: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
0: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
1: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
6: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
6: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
6: लेकिन जरा होशियारी से।
7: जो हुकुम सरकार।

0: and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sancho border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
2: Will become even more important to the world.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते

0: हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
2: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोरमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। सैनिक साथियों, भारतीय सेना द्वारा देश की सुरक्षा के लिए अनेक अभियान चलाए जाते हैं। उन्हीं अभियान में से एक है ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ऑपरेशन सफ़ेद सागर को ऑपरेशन श्वेत सागर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय वायुसेना द्वारा यह कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को समर्थन करते हुए चलाया गया था, जो 1999 के दौरान चलाया गया था। यह संयुक्त शस्त्र अभियान का कोड नाम था, जिसका उद्देश्य था नियंत्रण रेखा के साथ साथ कारगिल सेक्टर में खाली किए गए ठिकानों से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना। चर्चा जारी है, कार्यक्रम में पहले सुनवाते हैं आपको यह गीत।

सैनिक साथियों, भारतीय सेना का वायुसेना का पहला बम्बई बारी अभियान शुरुआत मई में हुई। इसके लिए हवाई टूही अभियान चलाया गया। भारतीय सेना ने 26 मई को श्रीनगर, अवंतीपोरा और आदमपुर के हवाई अड्डों से अपने पहले हवाई सहायता मिशन को अंजाम दिया। मिग 21, मिग 23, मिग 27 जगुआर और हेलीकॉप्टर गनशिप ने हिद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए। इन विमानों द्वारा हवाई हमले किए गए और उसमें मिग 21 ने विमानों को भारतीय सेना की आरक्षित भंडार से बम ले जाने के लिए तैयार किया गया। इसमें मिग 21 बेड़ा ऐसा था जिस पर आधुनिक नेविगेशन उपकरणों के बिना संचालित हुए आगे चलाना और उसके लिए उपयोग किया गया और जिसमें साथ में अपने मिशन को कामयाब किया गया। हालांकि उच्च ऊंचाई पर संचालन भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी की तरह रहा, जिसमें पुरानी मिग 21 के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य साबित किया गया और इसमें लड़ाकू विमान के रूप में प्रभावशीलता सीमित हो गई, पर यह संघर्ष सबसे अधिक तैनाती वाला विमान रहा। कार्यक्रम में और भी चर्चा करेंगे, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुन रहे हैं आप FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों, इस संघर्ष के दौरान 12 MiG-23 विमान तैनात किए गए जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय सेना के MiG-23 विमानों ने 155 से भी अधिक ठिकानों को अंजाम दिया और टाइगर हिल की लड़ाई में भारी तोपों, मिनी रॉकेट और बमों का उपयोग करके दुश्मन के ठिकानों को निष्क्रिय किया और इसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी MiG-23 ने। यह एकमात्र एक ऐसा विमान था जो कि ऊंचाई पर अपने अधिकतम हथियार भरकर तैनाती करने में सक्षम था। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में यह अगला गीत।

सैनिक साथियों, इस प्रकार से विजय अभियान चलता रहा और तिरंगा फहराता रहा। और सफ़ेद सागर ऑपरेशन के दौरान 1999 की कारगिल युद्ध में भारत को एक बड़ी जीत मिली। भारतीय वायुसेना के सटीक हमलों और सेना के साथ समन्वय ने भारतीय सेना के अपने सभी ठिकानों पर कब्जा किया। भारतीय वायुसेना अपने प्राथमिक उद्देश्यों में सफल रही। और सैनिक साथियों, हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर की सफल समाप्ति का प्रतीक है।

सैनिक साथियों, भारतीय वायुसेना हवाई हमलों से दुश्मन सेना को परास्त करती है, साथ ही आकाश से ऊंचाई लिए पायलट के मनोबल को दृढ़ बनाती है ताकि हमारी भारतीय सीमा सुरक्षित रह सके। नमन करते हैं भारतीय वायुसेना को। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न हुआ। हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: यह था फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3 बजे ही लीजिए सुनिए एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। प्रदेश में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के तहत डीटीएच के जरिए टेस्ट अलर्ट का सफल प्रसारण किया गया। पहले चरण में ये परीक्षण देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन के विमोचन समारोह में शामिल हुए। इस पुस्तक में केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न भूमिकाओं में प्राप्त अनुभवों का सजीव वर्णन किया है। श्री धामी ने पुस्तक के प्रकाशन पर केंद्रीय मंत्री को शुभकामनाएं दी तथा इसे समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने इस अभियान के तहत विश्वास, विकास और जन कल्याण का संदेश गांव-गांव पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी की सचिव नाजिश कलीम के निर्देशन में कलजीखाल विकासखंड के ग्राम कठूर में ग्रामीण विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन और विधिक जागरूकता व साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष फड़काई ने गंगोत्री गर्ब्याल गर्ल्स इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण कर विद्यालय की शैक्षणिक और आधारभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बागेश्वर जिले में जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के योग विज्ञान विभाग द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 1 माह तक आओ हम सब योग करें अभियान चलाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी क्षेत्रों तथा सटे हुए पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं लू की स्थिति होने का येलो अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 3:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं गाने नई तरानी।

ये स्वर थे जुबिन नौटियाल, ध्वनि भानुशाली की। फिल्म का नाम था मर जावा, गीत था कुमार का और संगीत मीत ब्रदर्स का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत, अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीप्रदा की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है टू स्टेट्स, शब्द हैं अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत शंकर एहसान लोय का है।

0: ये स्वार्थी मास्टर सलीम, नीरज श्रीधर और साथियों की फिल्म का नाम था लवाजगल। बोलते अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत शंकर एहसान लॉय का था।
1: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
2: Suno na.
3: Haan?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

आशिक बनाया आपने, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत। आवाज़ें थी हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की। गीत को संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अगला गीत। सचेत टंडन की आवाज़ में, फिल्म का नाम है मलंग। गीत की शब्द रचना है कुणाल वर्मा की।

AIR at 90. समय 3:32 और 24 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं गारी लई तरानी आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं यासर देसाई और साथियों की आवाज़ में गीत फिल्म का नाम आर्टिकल 15।

प्रीतम का संगीत बद गया। ये गीत था अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म का नाम था जब हैरी मेट से जल। श्रोता सुन रहे गाने नए तरह ने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है इश्क तेरा, शब्द है मनोज यादव के।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

ये थे अलका याग्निक और उदित नारायण, फिल्म का नाम था हंगामा। गीत था समीर का और संगीत नदीम शर्वन का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं गानी नए तराने का ये अंतिम गीत, मोहित चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम जब वी मेट, गीत है इरशाद कामिल का और संगीत रचना प्रीतम की है।

0: अभी आप सुन रहे थे कहानी नई दरानी। हम आपको याद दिला दें, फिल्म संगीत अब आप सुन पाएंगे शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत। आज के कलाकार होंगे फिल्म अभिनेता सुनील दत्त। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4 बजे ही आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप आशा भट्ट से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन के विमोचन समारोह में शामिल हुए। इस पुस्तक में केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न भूमिकाओं में प्राप्त अनुभवों का सजीव वर्णन किया। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कार्यों के प्रभावी संचालन को लेकर बैठक का आयोजन। बैठक में मंडल और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली, विकास योजनाओं की प्रगति, जनहित से जुड़े मुद्दों और विभागीय समन्वय व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में पहुंच रहे हैं। शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न एजेंसियां मिलकर यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में जुटी हैं। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत दी है। अब इनरलाइन परमिट की सुविधा धारचूला के साथ ही जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल में भी शुरू कर दी गई है। चमोली जिले में आपदा से प्रभावित ज्योतिर्मठ में प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्य तेजी से किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बरसात में कोई परेशानी न हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी की सचिव नाजिश कलीम के निर्देशन में कलजीखाल विकासखंड के ग्राम कठोड़ में ग्राम विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन और विधिक जागरूकता व साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के योग विज्ञान विभाग द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 1 माह तक आओ हम सब योग करें अभियान चलाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी क्षेत्रों तथा सटे हुए पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं लू की स्थिति होने का येलो अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: सौ 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:02 हुए हैं। लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए महफूज अली खां का तबला वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं तबले पर रूपक ताल और झप ताल।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत महफूज अली खां का तबला वादन। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। पेश कार्यक्रम

एक कलाकार। कार्यक्रम एक कलाकार में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और राजनेता सुनील दत्त की, जिनका पूरा नाम था बलराज दत्त। इनका जन्म 6 जून 1929 को ब्रिटिश में पंजाब के झेलम स्थित खुर्दी नामक गांव में हुआ था। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे कार्यक्रम में। पहले सुनवाते हैं इन पर फिल्माया गया कार्यक्रम का ये पहला गीत।

शुद्धम अभिनेता सुनील दत्त की शिक्षा मुंबई के जय हिंद कॉलेज में हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी की। लेकिन उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की रेडियो सैलून में उद्घोषक के रूप में। रेडियो सैलून साउथ एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। एक उद्घोषक के रूप में सुनील दत्त बहुत ही लोकप्रिय हुए, लेकिन इनकी अभिनय में रुचि थी, इसी कारण वे मुंबई चले आए और उन्होंने 1955 में फिल्म रेलवे स्टेशन में भूमिका निभाई। लेकिन उन्होंने शीघ्र ही 1957 में बनी फिल्म मदर इंडिया में अपनी भूमिका निभाई और उस समय उनके इस अभिनय को बहुत ही पसंद किया गया। साथ ही फिल्म मदर इंडिया उस समय की बहुत ही बड़ी हिट फिल्म रही है। इस फिल्म में इन्होंने बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया और इसके बाद इन्होंने अनेक फिल्मों में अभिनय किया। आइए आपको सुनवाते हैं सुनील दत्त अभिनीत फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में कलाकार, आज के कलाकार अभिनेता सुनील दत्त। श्रोता, 1964 में आई फिल्म मुझे जीने दो में इन्होंने अभिनय किया और एक बेहतरीन अभिनय से सजी इस फिल्म के बाद इन्होंने 1964 में इसके लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार प्राप्त किया और इसके 2 साल बाद 1966 में फिल्म खानदान में इनके अभिनय को खूब सराहना मिली और उसके लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। सन 1950 और 60 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिनमें मुख्य हैं 1958 की फिल्म साधना, 1959 की सुजाता, 1963 की फिल्म गुमराह, 1965 में वक्त, 1967 की फिल्म पड़ोसन और 1967 की फिल्म हमराज मुख्य रहे हैं। इस तरह से इन्होंने अपने करियर में 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म का नाम खानदान।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम में कलाकार, आज के कलाकार अभिनेता सुनील दत्त। श्रोताओं, हिंदी फिल्मों में कई फिल्मों का अभिनय करने के बाद इन्होंने कई फिल्मों के निर्माण निर्देशन का कार्य भी किया है। सन 2003 में बनी फिल्म मुन्ना भाई MBBS में बतौर अभिनेता उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने अपने ही पुत्र संजय दत्त के पिता की भूमिका निभाई थी। सन 1963 में प्रदर्शित फिल्म ये रास्ते ही प्यार के माध्यम से इन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और इसके बाद इन्होंने मन का मीत, रेशमा और शेरा जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया। साथ ही हिंदी फिल्मों के साथ साथ आपने पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें शामिल रही हैं मन जीते जग जीते, दुख भंजन तेरो नाम, सत्य श्री अकाल आदि फिल्में शामिल रही हैं। श्रोतम, फिल्मों में अभिनय के बाद इन्होंने फिल्म निर्माण के बाद समाज सेवा से जुड़े, साथ ही राजनीति में प्रवेश किया। सुनील दत्त और उनकी पत्नी नरगिस दत्त दोनों ने मिलकर अजंता आर्ट्स कल्चरल ग्रुप के नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण किया, जिसके माध्यम से वे राष्ट्र और लोक कल्याण के लिए कार्य करने लगे। और वर्ष 1981 में इनकी पत्नी नरगिस दत्त की मृत्यु के बाद ही नरगिस मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की इन्होंने स्थापना की, साथ ही नरगिस अवार्ड भी शुरू किया। चर्चा जारी, आपको सुनवाते हैं सुनील दत्त अभिनीत फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ಚತುರ ಗೋಡ ಚತುರ ಗೋಳ ಕ್ಯಾರಾ ಗೋಳ ಚತುರ ಗೋಳ ಚತುರ श्रोताओं, फिल्मों में योगदान के लिए अभिनेता सुनील दत्त को अनेक पुरस्कार मिले। 1964 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए फिल्म खानदान के लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का पुरस्कार प्राप्त किया। 1967 के में इन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया था। फिल्म मिलन के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1962 में बम्बई के शरीफ और 1995 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और वर्ष 2005 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रोताओं, फिल्मों में अभिनय के बाद, फिल्मों के निर्माण और निर्देशन के बाद इनका सारा करियर शानदार रहा, पर सुप्रसिद्ध अभिनेता आज ही के दिन 25 मई 2005 को दुनिया को इन्होंने अलविदा कह दिया, पर इनके अभिनय को और इनके कार्य को आज भी याद किया जाता है। सुनवाते इनके द्वारा अभिनीत फिल्म से कार्यक्रम का यह अंतिम गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम एक कलाकार संपन्न होता है। हमारे आज के कलाकार थे अभिनेता सुनील दत्त। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे के प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चर्चा क्वाड सहयोग के 4 मुख्य स्तंभों पर केंद्रित रही, जिनमें समुद्री और सीमा पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियां, मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद रोधी प्रयास क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल BSF की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि बल ने न केवल सीमा की दृढ़ता से रक्षा की, बल्कि सीमावर्ती जिलों के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। उन्होंने सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए BSF, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलकर एक 4-स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया। श्री शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ग्रिड की मदद से सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकेगा। इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है, उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की उन पहलों का जिक्र किया है जिनसे देश भर के लोगों को विशेष रूप से नारी शक्ति, युवाओं और किसानों को लाभ पहुंचा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे सुनिएगा खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित होगा। अब से थोड़ी ही देर यानी शाम 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा शाम 5:45 पर, जिसके अंतर्गत किलकारी में आज आप सुनेंगे राजकीय इंटर कॉलेज खिरशु पौरी गढ़वाल के बच्चों की प्रस्तुति। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे विनय ध्यानी। किसान साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत शाम 7 बजे, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे उत्तराखंड में फलों की व्यावसायिक खेती विषय पर डॉक्टर सुरेश राम से बातचीत।

आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति सप्ताह सार का समय रहेगा शाम 7:50 पर। रात्रि 8 बजे आज आप सुनेंगे श्री विवेक ममगई से संस्कृत वार्ता, विषय रहेगा संस्कृत भाषा या लोक साहित्य वर्णनम। सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा तलत अजीज की आवाज में चंद गजलें रात्रि 8:15 पर। और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विज्ञान पत्रिका। फिल्मी गीतों के सफर फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर और कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंतर्गत रात्रि 10:30 पर।

कल रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट और कल रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। कल प्रातः 7:30 पर शैल संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे माफ कीजिएगा कल प्रातः 7:30 पर शैल संगीत के अंतर्गत सुनिएगा मोहन सिंह बोहरा और साथियों की आवाज में कुमाऊनी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा कल प्रातः 8:30 पर। सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीत कल प्रातः 9:00। कल प्रातः 9:45 पर सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा मासिक धर्म स्वास्थ्य और महिलाओं का स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर संध्या बेवड़ा से रमेश चंद्रा की बातचीत। विविध कलाकारों की आवाज में आप सुनेंगे गढ़वाली लोक संगीत कल प्रातः 10:35 पर। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा कल प्रातः 11:00। महिलाएं सुनेंगी अपना साप्ताहिक कार्यक्रम जननों का वास्ता कल दोपहर 12:30 पर। कल दोपहर 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा राग मधुवंती पर रघुनाथ बालकृष्ण सोलापुरकर का ख्याल गायन। फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम एक कलाकार का समय रहेगा कल दोपहर 4:30 पर, जिसमें हमारे कल के कलाकार होंगे फिल्म निर्देशक महबूब खान। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

हैं, या फिर अगर आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी की फील्ड में है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कोर्सेज काफ़ी ट्रेंड में हैं। डिजिटल दुनिया के बढ़ते प्रभाव के साथ ही इन फील्ड्स में जो जॉब की डिमांड है वो भी सबके लिए बढ़ती जा रही है दोस्तों। वहीं पर अगर हम क्रिएटिव स्टूडेंट्स की बात करें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, UI/UX डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन जैसे कोर्सेज शानदार अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप सभी को। आज सोशल मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ ही क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की जो ज़रूरत है वो भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग भी युवाओं के बीच तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। आजकल SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जैसे स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं जिनकी डिमांड लगभग हर एक कंपनी में है। तो आप भी इन स्किल्स को सीख कर एम्प्लॉयमेंट आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों इसी बारे में बातें रहेंगी जारी, हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है क्लिंटन कैर्जो और लॉय मेंडोंसा ने और जिसे लिया गया है फिल्म वेकअप सेट से।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
3: दोस्तों, अब अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर में करियर ऑप्शंस के बारे में, तो ये भी काफ़ी तेज़ी से उभर रहे हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं आजकल युवाओं के द्वारा। वहीं पे दोस्तों, बिजनेस और मैनेजमेंट पे इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए BBA, एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंस जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो इसमें एनरोल भी कर रहे हैं और अपने बिजनेस स्टार्टअप्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। एक और खास बात है दोस्तों कि आज के समय में स्किल बेस्ड कोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, यानी सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी बेहद ज़रूरी हो चुके हैं सभी के लिए। इसलिए कोर्स चुनते समय आप सिर्फ ट्रेंड के साथ मत जाइएगा, बल्कि आप अपने इंटरेस्ट, अपनी स्किल्स और फ्यूचर गोल्स को ध्यान में रखकर अपने लिए सही करियर चूज़ कीजिएगा, क्योंकि सही करियर वही होता है जिसमें आपका पैशन और मेहनत दोनों शामिल हो। दोस्तों, 12वीं के बाद अपॉर्चुनिटीज़ की कोई भी कमी नहीं है, ज़रूरत है सही जानकारी, सही दिशा और खुद पर खूब सारा विश्वास रखने की, क्योंकि हर एक छात्र के अंदर एक अलग प्रतिभा होती है, एक अलग टैलेंट होता है, बस हमें ज़रूरत है तो उसे पहचानने की और सही दिशा देने की। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं ये गीत जिसे लिया गया है फिल्म चांदनी चौक 2 चाइना से और जिसे गाया है कैलाश खेर ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Future proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
3: दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर एक इंसान को सक्सेस पानी है। किसी को अच्छे मार्क्स चाहिए, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, बेहतर करियर और एक सक्सेसफुल लाइफ, यही हर एक युवा का सपना भी है। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और वो है हमारी मेंटल हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, मेंटल हेल्थ यानी कि हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति। जिस तरह हमारी हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह हेल्दी माइंड भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर मन शांत होगा और मजबूत होगा, तभी हम सफलता पा सकेंगे और ज़िंदगी में खुश रह सकेंगे। आज स्टूडेंट्स हों या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और प्रेशर जैसी समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। इनके बीच सोशल मीडिया की तुलना, लगातार कंपटीशन और भविष्य की चिंता कई बार युवाओं को मानसिक रूप से थका देती है। लेकिन दोस्तों, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि ओवरऑल वेलबींग का एक अहम हिस्सा है। जब हमारा मन स्वस्थ होगा तो हम बेहतर तरीके से सोच सकेंगे, सही डिसीजन ले सकेंगे और चैलेंजेस का सामना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकेंगे,

यही वजह है कि मेंटल हेल्थ पर इतना ज़्यादा फोकस दिया जाता है और यही हमारे सक्सेस की सीढ़ी बनता है। दोस्तों, कई बार हम सक्सेस पाने के लिए इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं कि खुद को समय देना ही भूल जाते हैं, लेकिन लगातार स्ट्रेस और प्रेशर हमारी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, और वो भी नेगेटिव सेंस में। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों, हमें अपना डेली रूटीन जो है उसे बैलेंस बनाना चाहिए। पूरी नींद लेनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, और थोड़ा समय, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा समय एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने परिवार, साथ ही हमारे दोस्तों से, हमारे परिजनों से बात करते रहनी चाहिए। अगर कहीं भी तनाव की स्थिति महसूस होती है तो उनसे बात करनी चाहिए। अगर ज़्यादा स्ट्रेस या फिर एन्जाइटी महसूस हो तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि बात करना भी हीलिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि हर समय परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। कभी रुकना, आराम करना और ख़ुद को समझाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। आज दुनिया धीरे धीरे मेंटल हेल्थ को महत्व दे रही है। पहले के समय में इन चीज़ों पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन आज की जनरेशन जागरूक है इस मामले में। स्कूल, कॉलेजों और वर्क प्लेसेस में भी इस विषय पर खुलकर बात करी जा रही है, क्योंकि असली सक्सेस सिर्फ बड़ी सैलरी या फिर फेमस होना नहीं होता है। वो शांत होना, खुश होना और मेंटली स्ट्रांग रहना भी उतना ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अपने सपनों के पीछे भागिए ज़रूर, लेकिन अपने मन की शांति और खुशियों की कीमत पर नहीं, क्योंकि आखिर में एक स्वस्थ मन ही इंसान को सही मायने में सफल बनाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि अब आपको भी मेंटल हेल्थ का महत्व समझ में आया होगा और आप भी अपनी मेंटल हेल्थ पे पूरा फोकस करेंगे। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं ये गीत रघु दीक्षित की आवाज़ में, फिल्म शेफ से।

दोस्तों, एक बात अक्सर कही जाती है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है, लेकिन कई बार गंभीर बीमारी आने पर इलाज का खर्चा ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि आम परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार ने शुरू की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे PMJY के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये योजना के तहत जो भी पात्र परिवार होते हैं, उन्हें हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। यानी इलाज के लिए मरीज को अस्पताल में कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस योजना का लाभ देश के करोड़ों परिवार उठा रहे हैं। इसके अंतर्गत सरकारी और कई निजी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के कई गंभीर समस्याओं, बीमारियों और सर्जरी का इलाज शामिल किया गया है, जैसे हार्ट सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट, किडनी डिजीजेस, मेटर्निटी केयर और अन्य गंभीर उपचार। इस योजना की एक और बड़ी खास बात है, इलाज देश के किसी भी एनपैनल्ड अस्पताल में कराया जा सकता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अपने राज्य से बाहर भी हो, तब भी वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। चलिए दोस्तों, इसी विषय पर हम बात करेंगे आगे भी, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गीत अ जेंटलमैन मूवी से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

दोस्तों, इस म्यूजिकल ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक ऐसी योजना के बारे में जिसमें सभी लोगों के लिए काफ़ी लाभ हैं, जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि इसका लाभ कैसे उठाया जाए। इसके लिए जो पात्र परिवार हैं उनका नाम SECC डेटाबेस यानी सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची में होना अनिवार्य है। अगर आपका नाम उस सूची में है तो आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ये कार्ड आपके पहचान पत्र की तरह काम करता है और अस्पताल में इलाज के दौरान उपयोग किया जाता है। आज कई सरकारी अस्पतालों, CSC सेंटर्स और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। ये योजना सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, इस विषय पर आज तक जानकारी यहीं तक रहेगी। आशा करते हैं कि आप भी अपने आसपास लोगों को जागरूक करेंगे इसके बारे में और आप खुद भी इसके बारे में जागरूक होंगे, क्योंकि सही जानकारी किसी भी इंसान की बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, खासकर एक ऐसी स्थिति में। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे लिया गया है फिल्म जब तक है जान से, जिसे गाया है रब्बी शेरगिल ने।

दोस्तों, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का, मगर जाने से पहले आप दोस्तों हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। हमें पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक, आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, और हमारा पिन कोड है 248001। इसी के अलावा आप व्हाट्सएप पर भी हम पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088-000-731। साथ ही दोस्तों, आप ईमेल द्वारा भी अपने संदेश और सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youth@gmail.com। इसी के साथ आप मुझे यानी सक्षम पंत को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:45 होने को हैं और अब प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत सुनला सभी श्रोताओं थे सबिता बड़थवाल का छोड़ बटे नमस्कार सेवा सौंदी श्रोताओं आप स्वस्थ और मस्त वेला यही कामना हम सदनी माँ जगदम्बा से कर दिया और प्रार्थना कर दिया कि हमारे श्रोता सभी लोग स्वस्थ और मस्त हुए हैं। श्रोताओं जिन के आज आप जन दें कि आज चुकी मंगलवार और आप थे बता दें कार्यक्रम का बाबत कार्यक्रम में पेटोला आपको कुछ रंत रहवार सुनोला सुंदर सुंदर गढ़वली कुमाऊनी और जौनसारी गीत सुनोला अपना नान तीनों की किलकारी कार्यक्रम जो कि अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू पौड़ी गढ़वाल का नान तेना हमर दगड़ होला और प्रस्तुत करता छिन विनय ध्यानी। तो सुनोला आप थे सुंदर सुंदर गढ़वली कुमाऊनी और जौनसार गीत चर्चा करला कुछ विषयों पर लेकिन वे से पहले आप थे हमर दगड़ बनाए कर रखना ठीक 7 बजे तक क्योंकि जब हमर श्रोता हम दगड़ होंगे ना तो हम तो बहुत सुंदर लगत कार्यक्रम कनमा और लग चुकी हाँ हमर श्रोता हम तो सुनना छे ना हमारे पूरी यह कोशिश रहा कि अपने श्रोताओं थे सुंदर से सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें और अपने गाँव गुठियार से लेकर नान तीनों की किलकारी से लेकर खैरी से लेकर गाँव गाँवों की समस्याओं से लेकर जो कुछ भी कार्यक्रम होंगे ना वो आप तक पैटे सकते हैं। तो आप थे कार्यक्रम कन लग दू या कन लग लो वे के बाबूद भी आप जरूर लिख के भेजना वे को पता हमारे चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com पर आजकल की उंगली सबके हाथों में फ़ोन छिना तो आप फ़ोन घुमा सरासर और अपनी उंगली सरकनेना और हमको चिट्ठी लिख के भेजन। तो छुई बत हम ठीक 7 बजे तक लगोला लेकिन वे से पहले आप तो सुन दिया अपड़ू और आपकी पसंद को सुंदर सी गीत जामा स्वर दियों दीपा चौहान को।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: पापा लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: रविवारों से पहले आप सुनना चाहिए दीपा चौहान का सुरमा सुंदर से गढ़वाली गीत। श्रोताओं, अब सुनने आते हैं हमारा नानतिनों कार्यक्रम किलकारी। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू पौड़ी गढ़वाल का नानतिनों का दगड़ी हमारे किलकारी कार्यक्रम जैसे प्रस्तुत करना छिन हमार दगड़िया विनय ध्यानी। तो लिया सुना आप नानतिनों को कार्यक्रम किलकारी।
7: स्कूल नानतिनों, आज खिलकारी कार्यक्रम का खातिर मैं पहुंचो छू पौड़ी जनपद को खिरसू ब्लॉक और वकक स्कूल च अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू। भाई उत्कृष्ट स्कूल च और उत्कृष्ट बच्चा होला इन हम उम्मीद करदा। तो जनी हम बच्चों से मिला, बच्चा हाफ टाइम के बाद इना उना घूमना चाहे और फिर कट हो गई एक जगह। हम उन बच्चों को बोली, बच्चों जय हिंद।
8: जय हिंद।
7: जय रस वह जय हिंद। जबकि इंटर कॉलेज भिंडी बच्चा छन, एक दा फिर करला, बच्चो जय हिंद। आ न सगत ओ फार दूर डांड तक पहुंच गया बात। तो ये बच्चा आज किलकारी कार्यक्रम प्रस्तुत कराला सबसे पहली स्कूल की प्रार्थना से।

0: म्यारू हिमाला, सुंदर सी प्रार्थना का दगड़ी। यूं बच्चों अपन किलकारी कार्यक्रम की शुरुआत करायल और पर्यटक और रमणीक जगह पर खिरसु कुन जन उत्खिरसु था और जय हिमालय की बात होनी चाहे हम तो यह बुटिक चौक हम अभी दिखे जान, त्रिशूली भी दिखे जान, है ना, सुंदर बर्फ से ढकी चोटियाँ हम तो दिखेना चन। तो यानी ये सुंदर सी माहौल में यखा का बच्चा अटल उत्कृष्ट विद्यालय च और ये बगत जख माँ हम ये कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करना चुआ वो एक स्मार्ट क्लास च वर्चुअल स्टूडियो गजब लवणु नीच भाई के पहाड़ के स्कूल च। तो देखला यूं बच्चों से बात करे कि क्या क्या कर दिनिया की और कतना स्मार्ट होगी। लेकिन वैसे पहले स्कूल को परिचय यखा का प्रधानाचार्य से। नमस्कार, आप अपनों क्या च?
1: नमस्कार, मेरे नाम सुबोध नेगी।
0: नेगी जी, कितना छात्र संख्या चाहिए बच्चा आना चाहिए?
1: अभी हमारे विद्यालय में 14 छात्र छन और हमारा जो लगभग बच्चा सुकुरबटी और ग्वाड कुडगी बुदीसु और काफ़ी दूर अंदर बच्चा हमारा और पूरा ग्रामीण प्रवेश सीख और अधिकतर बच्चा जो पैदल अंदर नहीं।
0: उत्कृष्ट किला चाहिए कुछ खास या क्षमता है? सबसे बड़ी बात जो स्कूल में आग लग वही लग के पर्यावरण प्रेमी छे यहाँ का बच्चा, सुंदर फूलदान और गुलदान बनाया छे, है ना। तो और ये का अलावा क्या क्या सुख सुविधाएं छे स्कूल में?
1: हमारे विद्यालय जो सीबीएसई द्वारा संचालित छे और हर ब्लॉक में सरकार द्वी विद्यालय खुले छन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लगातार हमते अनुदान मिलते और वहीं के सहयोग से हमारे जो यहाँ पर जो इको क्लब और गमला लगाए छन सभी योगदान सरकार हो चुका।
0: योगदान सरकार को भी विद्यालय परिवार भी मेहनत करूँ चु। गुरु जी से एक सवाल, यूँ बच्चों का विभाव यानी यूँ अभिभावक वो कितना समझ रख दिन की सिर्फ स्कूल और भरोसा ना बच्चों तो छोड़े जा बल्कि हम भी ऊपर कुछ ध्यान, यानी कितना चेतना चु पढ़े का प्रति?
1: बिल्कुल, जो हमारा ग्रामीण प्रदेश बच्चे छन अधिकांश बच्चा मतलब घर में ये खेती बाड़ी भी कर दिन गोर चढ़ दिन और अधिकांश जो गार्जियन आजकल जमाने में तो अधिकांश जागरूक छन, फिर भी कुछ इन छन की मतलब जो से मतलब कि खास उन्नीस की मतलब सब हमारे भरोसा की सब गुरु जी दिखला। हालांकि पिछले कुछ सालों में काफ़ी परिवर्तन हुआ और गार्जियन बीच बीच में हम तय मिनुआ दिन मुलाकात कर देनी कि हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस क्या है और लगातार मतलब सुधार होना चाहिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद और अपना गुरु जी को ताल बजोला ना हम। तो अब बच्चों का तरफ होला और खिरसू माँ काफल पक्या इबरी तो गीत सुनला हम यूँ बांजबरासियों का काफलों का। तो कोई सुंदर गीत का खातिर अब मैं धैल लगाऊँ देख दिन कि भुला दिन कि भूली आंदिन। सुंदर सी बात है कि हम जे भी स्कूल में जाना भूली कार्यक्रम की शुरुआत कर दिन। बजाओ भूलियों गुण तैयारी भुला सैदन ठसगुर रहने पैतरी पैतर रहने वरना भाई हम नहीं जाना लेकिन एक भूली ये बता हमारे समझ में।

0: नौ क्या चाहिए आपको?
1: आराध्या रावत।
0: आराध्या रावत ही बात हमारे समझ में। कई कक्षा पढ़ देना आप?
1: मैं 8 कक्षा में पढ़
0: आठ माँ पढ़ अच्छे कक बटकार ई स्कूल बट अच्छा 5 कक बटकार
1: प्राइमरी
0: प्राइमरी तो वो तो पक्की बात है कि प्राइमरी नौ क्या चाहे वही स्कूल को फिर सु चाहे कि ग्वाड़ा चाहे कि कक्षा है
1: बुदेसु
0: बुदेसु। अरे वाह तो कि यख अब बड़ी स्कूल में पढ़नी चाहिए। आराध्या क्या सुनानी चाहिए हम तो गीत बल? हाँ
1: बेलू पाखो भरमास नरना का फुल पाखो छेता मेरे
0: पैकिन काफल भी पैकिन बेडू भी पैकिन गीत पूरु न्याणु च आणु च एथर याद आणु न्याणु ताल बजा दो। अब कार्यक्रम में 3 बोली शामिल होना चाहिए और उन बोली कि जो गीत आराध्यन सुना है वो तो हमन पूर करण तो फिर भी बात काफल हो ही जाए है ना तो यूं बोलियों का नाम पूछ ले आपक नाम क्या है?
2: खुशी।
0: खुशी अकन खुशी होने जरा बोनी आपक नाम क्या है?
2: गुंजन नेगी।
0: गुंजन नेगी ए टपका का नाम लेने चाहिए आपको?
2: कोमल रावत।
0: कोमल रावत इतने बोले हम तो ये गीत सुनाने चाहिए सुना।

0: चेला।
1: यूं भूलियों को नहीं आधा ताल बजाओ किला की यूं भी आधा गीत सुना है गया। तो किलकारी की शुरुआत भाई आधा आधा से होने कोई पूर्व सुना कविता का खातिर हम पहुंचदा आप अपनो क्या चे
0: प्रेरणा
1: प्रेरणा प्रेरणा कहीं कक्षा में पढ़ देना आप सेवंथ यानी सातवा है ना कई गाँव पठान देना आप
0: बुद्धेशु।
1: अरे वाह वाह का ज्यादा बच्चा छिन भाई है बुद्धेशु का। तो चला आप हम तो कविता सुनानी छिन सुनाओ।
0: ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुकनीत सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लह रही है, जगमग छटा निराली पक पक छह रही है, वह युद्ध वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह पूर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, वो मस्त झाड़ियों में अमराया घनी है, कोयल पुकारती है, तनमन संवारती है, बहती मलय पवन है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जको दया सिखाए, जको दया सिखाया, वह युद्ध भूमि मेरी, वह भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी,
1: वह मातृभूमि मेरी पूरी सुना दे भाई। तो कविता सुना यू नाम था जोरदार नांतिनो 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम बटकी आप सुनना छन कार्यक्रम ग्राम जगत और जखमा आज को अंक च किलकारी जैसे प्रस्तुत करना छन अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज खिड़सू का ये विद्यार्थी आप देखदा कि बच्चा क्या कर रहा। लेकिन वैसे पहले हम कर दी ना कुछ सवाल आपसे पूछे जाला सामान्य ज्ञान का जे था आलू अपन हाथ खड़ कर दिया। हाँ हमारे उत्तराखंड राज्य का जो राज्यपाल छिन्न उनको नौ क्या होलू नौ क्या छ हाथ खड़ कर दी। अरे न भय जो उत्तराखंड का राज्यपाल छिन्न उनको नौ क्या छ नहीं मालूम चलो कोई बात नहीं एकल कह रहा गुरुजन छुस बता दिया अरे तब ऊन हम तो बताण छ आ जाओ भाई आ जाओ आप अकनो क्या पहले तो अपन नो बताओ
0: काजल
1: काजल सही जवाब देने च उत्तराखंड का राज्यपाल को नो
0: गुरमीत सिंह।
1: ओहो गुरमीत सिंह बल है लेफ्टिनेंट जनरल अवकाश प्राप्त गुरमीत सिंह है ना यो च पूरु नो तो अद्धा ताल बजौला यू कुण भी धन्यवाद। अब पूरी तालिका खातिर घड़ेक मा आपक दगड़ हम अंताक्षरी खेलला लेकिन वैसे पहली अब बोलोंग बैरी आली उठस गुर लग दिन तो लगदा छन और जान मुझे पैथर बैठ जान बोली लिमाला ना हम था लेकिन हम तो लिमा दिनो एक भूला च सबसे छोटू भूला आओ म्यार दगड़ किलकारी कार्यक्रम में अब जो भूला शामिल होने पहले तो एक हम ताल बजोला। अब आप बोल लग किला अभी तुम इनको सुना भी नहीं संस्कार कम से कम है ना यख आणक और अमर दगड़ छुई लगाणक आप अकनो क्या छे
0: ध्रुविष्ट
1: ध्रुव बिष्ट कहीं कक्षा पढ़ सेवंथ माँ यानी सात माँ कई गाँव बटा देना आप
0: बुद्धेशु
1: का ज्यादा चिन्ह रहे हैं आण छो तुम्हारे गाँव में अभी घड़ेक में तो आप ही बताएं कि आप ते अपन गाँव भर लग दे कि खिरसु माँ या स्कूल
0: अच्छे लग दा
1: दुया कितना किलोमीटर जी एक बट पैदल आंदो आप
0: कभी पैदल कभी गाड़ी में।
1: अच्छा एक बात सुनो दी अजगाल ही ना यक सुनना हम के बाघ को रिख के डेर च आप तो अभी लगत डेर है कभी दिया अच्छे समझ ना
0: जी
1: देख चुपल हाँ वैसे हाँ सेंच ये माँ और इन लगनों के पक्कू फौज च है बड़ू एक क्या बनना अपन क्या बनना
0: चाहिए पुलिस
1: पुलिस हाँ देखा कह रहे आलवेल तैयारी अभी बेटा है ना सुंदर हम तो यह बल कविता सुनाना छन सुनाओ।
0: हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजरबन ना गा पाएंगे कनक तिल्लियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे हम बैदा जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे कहीं बली है कुटुम निमोरी कनक कटोरी की मैदा स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गदी सबूले बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुन के मर पर के चूल्हे ऐसे थे हनुमान के उड़ते नीले नब की सीमा पानी लाल किरण सी चू को चुकते तारक नार के दाते दाने होती सी सीमाएं शिक्षित से इन पक्कों की होड़ा होड़ी या तो शिक्षित मिलन मचा दे या तन्नी सांसों की जोड़ी नीर न दो चाहे टैनी का आशा छिन बन कर डालो लेकिन पंख दिया है तो आकर निशान में भी बिन न डालो।
1: बहुत सुंदर कविता अब तो बजा दो तैयारी है ना और अब एक सवाल आपसे फिर वे का बात आप ही ये कार्यक्रम में शामिल हुए तो अब जो सवाल छ वो बहुत आसान सवाल छ सवाल ये हो चुके रांची स्टेडियम सुनियो होला अपन तो यू कै जनपद में छ हाँ एक बुलान हाथ खड़ कर आल वो चुपचाप आल में समझ है पौड़ी जनपद में बिल्कुल ठीक अपन नौ बताओ दी अविनाश अविनाश बिल्कुल ठीक जानकारी दे कि रांसी स्टेडियम पौड़ी में बहुत सारे लोग तो पता भी नहीं होल है ना नीच बल पता तो चला यूं सवालों का दगड़ी कार्यक्रम में एथर बढ़ला और आप फिर कुछ सुन ला गीत कविता दुई भूली कार्यक्रम में आप शामिल होना चन और ये भूली नौ पूछ लेना आप नो क्या चे
2: पूर्वी रावत
1: पूर्वी ना जब बटक की किलकारी कार्यक्रम शुरू हुए तब बट हैंसने चे अरे इन्हें बिगड़ेली हैंसने बहुत सुंदर लगनो तो पहले तो बताओ किला हैंसना चाहे मुखड़ी इंच वाला है ना सुंदर लगत आप अग्नो क्या चे
3: काजल
1: काजल काजल पहले भी आया ना कार्यक्रम में देखा कोई बच्चा होने तो दोबारा आ जाए क्या सुनाना अपन हम थे
2: जी
1: जी सुना धैर्य

0: नौगो।
1: नौगो। अच्छा एक और जब तक मैं पूछना चाहे कि हाँ वो राष्ट्रीय स्तर पर भी जने जिन उनक नौ पर एक विश्वविद्यालय बीच यू भी बोल चाहे मिल हाँ लेकिन यहाँ मतलब आपका दस सवाल तो ठीक नहीं रहा आप बताओ।
0: हेमंती नंदन भोगना जी।
1: बिल्कुल ठीक ताल बजाओ बोला। आप अपन क्या चो?
0: अविनाश कुमार।
1: अविनाश ने दुई सवालों का सही जवाब दी हाँ ताल बजाओ एक दा फिर मेरे तरफ देखो। उनको गोंक नो क्या चो?
0: बुगानी।
1: बिल्कुल ठीक एक दा फिर से दोबारा ताल बजौला। और अब अविनाश था हम किलकारी कार्यक्रम में भी जगह दिवला किले कि उन दुई सवालों का सही जवाब दी। अरे बिल्कुल नजीक चिन आपका है बुगाने और हेमोती नंदन बहुगुणा ही छा जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जने जनन जो कुनो सा फार गढ़वाल विश्वविद्यालय बीच। तो अविनाश कई कक्षा पढ़ देना आप?
0: कक्षा आठ।
1: कक्षा आठ का विद्यार्थी छन है और एक माँ बारह वाला भी बैठे हैं क्या? हाँ वो अभी तक नहीं आया ना कार्यक्रम में। तो अविनाश ये बताएं कि कितना समय दिन आप अपन पढ़े थे?
0: डेढ़ घंटा
1: बस न भाई कम नहीं होना तब गौरव और क्या क्या कर देना और तो कुछ नहीं करता स्कूल बैठे जाया क्या डेढ़ घंटा ही पढ़ना बस है ना। अच्छा इन स्कूल में आप ही बताओ कि जो सुविधाएं छन कंप्यूटर च या पुस्तकालय च उकमा बैठे कुछ सीखता भी छो आप क्या क्या सीख देना?
0: टाइपिंग ड्राइंग और क्लासेस।
1: अच्छा मोहिनी छन बराबर बहुत सुंदर। इन स्कूल का सबसे बढ़िया गुरु जी को लग दिन?
0: तिवाड़ी गुरु जी।
1: तिवाड़ी गुरु जी बाकी लोग सब नाराज हो जाला तब लेकिन तिवाड़ी गुरु जी को नाम ताल बजौला है। अविनाश कुछ सुनाएल हम तक गीत कविता चुटकुला कुछ हुआ है कभी कुछ सुनो के मिमिक्री कर दिन हम के कते दा नहीं करता ठटा लगा दिन लोग को। क्या सुना कुछ सुनाना? कुछ नहीं सुनाना लेकिन जो कुछ सुनाई हूं बोल सुनाए ताल बजाओ अविनाश का खातिर। और अब कार्यक्रम में इन करता आप लोग कुछ भला भला गीत सुनाना नहीं किलकारी कार्यक्रम में। अब राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू का स्कूल है अंतर्राष्ट्रीय ख्याल वाला बल कक्षा सात और कक्षा आठ का बीच हम यह अंताक्षरी खेलना छुआ। एक माँ कक्षा सात माँ कुछ न अपना अपना नौ बताला।
2: कोमल रावत।
3: खुशी पवार।
4: गुंजन नेगी।
5: राधिका पवार।
1: कक्षा आठ
6: काजल।
7: आरुषि।
8: आराध्या।
9: पूर्वी।
1: तो ये छन वो बच्चा जो कि आज एक अंताक्षरी में भाग लेना छन। तो इन करता छोटा बच्चों से शुरू और कला है न तो उन दे दिन हम एक शब्द हा
10: मैं ऐतर का दिन टेलीफोन करिया मेरी सुआ लगी है युवास मैं तेरी कश्मीर की गाती मैं सुआ
1: आ आठ एक दो तीन

0: लमह हाय जालो
1: ल कक्षा सात एक दो
0: लाल बोतल सराबा तू छे बड़ी खराबा, लाल बोतल सराबा तू छे बड़ी खराबा। अब क्या करूं रे नसा माजी चूर वे गयूं
1: गयूं या है ना बात न कर चाहे लेकिन कोई बात नहीं अंताक्षरी होनी चाहिए या
0: यक फिरी बिजली पानी यक लंबा जलोदा
1: आप दबड़े सुनाना चाहिए फिर भी मैं लेना
0: यक फिरी

0: रंगी डाली तू दूसरा
1: ला आणु चु ना है ना, लेकिन आप कोशिश करें कि यह गलती दोबारा नहीं हो। आधा बटे गीत ना शुरू बटे की ला कक्षा सात एक दो तीन चार पांच आठ कक्षा आठ का पाठ।

0: हेलो मैं क्या जूम
1: क्या शब्द चाकरी क्या शब्द दिन होता है ज एक कक्षा सात ज दो तीन चार और फिर कक्षा आठ का पास आ गया बज्जी जितने की ज एक दुई तीन चार और पांच अगर आ गया याद एक मौका फिर न तो मैं शब्द बदलना चाहूँ जा पर अंताक्षरी रोकना छुआ हम और एक नए शब्द का दगड़ी कक्षा सात का पास म एक तीन
0: मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी मेरे कानों का झुमका मेरी रंगीली

0: छोड़ी, अरे मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी, मेरे कानू का झुमका मेरी रेसी पी साड़ी।
1: डी ड ड कुछ भी, आठ, कक्षा आठ, एक नंबर लेख ऐतरचनी, खत्म। अब आ गया सातक पास मौका, एक दुई तीन चार, फिर दोबारा जितना बारी।
0: ढोल दमो बज गे ना दगड़िया की बराती, मां कनला जान एगे सच्ची
1: सच्ची रंगत भी आ गया और कक्षा आठ ई अंताक्षरी मां जीत भी गया। तो ताल बजाओ कक्षा आठ का खाते। नांतिलो किलकारी कार्यक्रम में हम शामिल करना चाहूँ एक सवाल, एक ना बल्कि दुई सवाल, कुछ सामान्य ज्ञान टटोल दा आपको। आप ही बताओ चिपको आंदोलन आपन सुनियो छ, कई चीज से जुड़ियो छ यो आंदोलन? अविनाश बार बार हाथ खड़ो कनो, पेड़ निकटन यानी पर्यावरण से जुड़ियो। तो अविनाश बार बार सही जवाब देनो हाँ, चिपको आंदोलन की प्रणेता कहता बोलता हम कैन चला चाहो चिपको आंदोलन। हाँ ये भूली हाथ खड़ी करनी,
2: गौरा देवी,
1: बिल्कुल ठीक, ताल बजाओ यूं खंड। आप अपनो क्या थे?
2: गुंजन नेगी।
1: गुंजन नेगिन बिल्कुल सही उत्तर दे, अद्दा अविनाश ना और अद्दा हमारी भूली ना गुंजन ना, है ना। तो कुछ चीज छन सामान्य ज्ञान की, ये ध्यान रखने चंदे ना। राष्ट्रीय स्तर का एक महाकवि हुईन जो कि हमारे यही उत्तराखंड की धरती से छन, उनको नौ बताओ, को बता ले। हाथ खड़ कह रहे हो दी, नहीं पता, जरे सौर सौंग कह दिन में, उनको संबंध कुमाऊं से छ और वो राष्ट्र कवि छ, बताओ कुछ नहीं पता। हाथ खड़कार आपन की इंधार चौंठी मां, हम बता दो आपता है, कहते न्याण छ ना सुमित्रा नंदन पंत को नो सुने छ, तो मैं ताल नहीं बजाण तुम नानते नो। अब आपक जीव अगर कुछ कोई सुनान चाहू छ तो किलकारी को यू मंच खुलू छ, आप सुनाना चाहना चन कुछ हाथ खड़ करो और कार्यक्रम में शामिल हो, नि सुनाना कहन तब तो कोई बात नहीं। अब हमार गांव खोली ये बच्चा अपन किलकारी कार्यक्रम को समापन करना चन एक देशभक्ति गीत से।

0: हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और फिर एथर पर्वत हो सबसे ऊंचा। यानी कुल मिलाकर अब देशभक्ति को भी पाठ हम तो पढ़ाण पोड़लू। चला साहब यूं बच्चों तय हम बहुत बहुत धन्यवाद दियोला। तो तार बजौला कि नहीं बजौला, बजा दो देखे जाएल तब। और नानतिनो अब आपसे हम विदा लेना चाहना चाहूँ। कार्यक्रम कन रहा सुनदरा बताला है ना, लेकिन आप लोग बहुत मेहनत करी की कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, और आपक विद्यालय परिवार थे हमार तरफ बटे बहुत सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सांस्कृतिक चेतना आप एथर बढ़ेला, पढ़े लिखे में भी थोड़ा ध्यान सामान्य ज्ञान का तरफ देला, अपना बुए बबू को सम्मान करला, गुरुजनों को सम्मान करला। ई आशा का दगड़ी मी आपक भेजी विनय ध्यानी, आपक स्कूल अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू बटे की वापस लौटनो छू अपन आकाशवाणी देहरादून स्टूडियो। और आपक हूँ बोलूलू बच्चो जय हिंद।
1: अभी आप सुनना चाहिए अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू पौड़ी गढ़वाल का नानतिनों का कार्यक्रम किलकारी, जैसे प्रस्तुत करना चाह हमर दगड़िया विनय ध्यानी। तो उम्मीद कर दिया कि आप थे यह किलकारी पसंद है होली, क्योंकि नानतिनों बहुत सुंदर सुंदर बात भी बोली ने और बहुत सुंदर सुंदर गीत भी सुने नी और ज्ञानवर्धक वाली चीज भी बतैनी। तो श्रोताओं हम आप दगड़ ठीक 7 बजे तक बनाए रोला, लेकिन वे से पहले आप एक काम जरूर करना कि ये कार्यक्रम आप थे कन लगड़ो चु वे का बाबत आप जरूर लिख के भेजना, या मजू नानतिनो कार्यक्रम किलकारी च वो आप थे कने लगी ये का बाबत भी आप जरूर लिख के भेजना ईमेल के द्वारा। हम तो सदन ही जगवाल रोंद अपने श्रोताओं को ईमेल को जैसे कि हम पढ़ दें भी प्यार का दिन। तो श्रोताओं छुई बात हम 7 बजे तक लगौला आप तक दगड़ी, लेकिन वे से पहले आप तो सुन दिया कुमाऊनी गीत जैम स्वर दियों च मनोज सिंह।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, रविवार से पहले आप सुनना चाहिए मनोज सिंह का सुरमा, सुंदर सी कुमाऊनी गीत। तो श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी सारा कनिच कि भगत हुणोल च उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को, तो घड़ेक मां सुना आप उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
3: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान के जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने पौड़ी में विभागीय कार्यों के प्रभावी संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की गणना शुरू। 5 दिनों तक 72 बीटों में चलाया जा रहा विशेष अभियान। और पिथौरागढ़ जिले में कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब इनर लाइन परमिट की सुविधा धारचूला के साथ ही जिला अस्पताल में भी शुरू की गई। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। और अब समाचार विस्तार से। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में आज पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कार्यों के प्रभावी संचालन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडल और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली, विकास योजनाओं की प्रगति, जनहित से जुड़े मुद्दों और विभागीय समन्वय व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से प्राप्त हो सके। उन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर

0: करने, वनाग्नि रोकथाम, आपदा प्रबंधन तैयारियों और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों में विभागीय तालमेल बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया।
1: जो शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं वो हमने इनको कन्वे कर दिया है और इनको कहा गया है कि जो भी निर्माण कार्य करने वाले एजेंसियां हैं, विभाग हैं, वो अपने काम मानसून से पूर्व निपटा लें और आपदा में, पिछली आपदा में जो नुकसान हुए थे उनको तुरंत रिकंस्ट्रक्शन का काम, उनको पैसा मिला हुआ है, तत्काल उसको पूरा कर दे। ये इलेक्शन ईयर है तो इसमें हमारे पास काम करने के लिए बहुत कम टाइम है, तो शीघ्रता से तेजी से काम करें, गुणवत्ता बनाए रखें और जिससे किसी भी प्रकार के जो उनका निर्माण कार्य है उसमें कोई कमी न रहे।
0: प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में पहुंच रहे हैं। शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न एजेंसियां मिलकर यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में जुटी हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कपाट खुलने के बाद से अभी तक धाम में 8,72,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा मार्ग से लेकर केदारनाथ धाम तक श्रद्धालुओं के रहने, भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इसके साथ ही यात्रा मार्ग और धाम में स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु सरकार की सराहना कर रहे हैं। मुंबई से पहुंचे श्रद्धालु हर्षित ने भी यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना की।
2: अनुभव बहुत अच्छा रहा, ट्रैक काफी लंबा था, काफी कठिन था, बट जब पूरा किया तो काफी अच्छा लगा। व्यवस्थाएं काफी बढ़िया है यहाँ पे, साफ सफाई है, लोग काफी अच्छे हैं, काफी हेल्पफुल पीपल हैं यहाँ पे, कुछ भी पूछो तो अच्छे से बताते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, तो व्यवस्थाएं और लोग काफी अच्छे हैं। हर हर महादेव।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के विमोचन समारोह में शामिल हुए। इस पुस्तक में केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न भूमिकाओं में प्राप्त अनुभवों का सजीव वर्णन किया है। पुस्तक में नेतृत्व, सेवा, सुशासन व राष्ट्र निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विचारों को सरल और प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्री धामी ने पुस्तक के प्रकाशन पर केंद्रीय मंत्री को शुभकामनाएं दी तथा इसे समाज के लिए प्रेरणादायी बताया।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: नैनीताल जिले के रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की गणना का विशेष अभियान आज से शुरू हो गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत रिजर्व की सभी 72 बीटों में हाथियों की संख्या और उनकी गतिविधियों का आकलन किया जाएगा। प्रत्येक रेंज में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। अभियान में 150 से अधिक वनकर्मी और विशेषज्ञ लगाए गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि विभिन्न वन क्षेत्रों में तैनात वनकर्मी प्रतिदिन करीब 3 किलोमीटर पैदल गश्त करेंगे और मोबाइल आधारित पेट्रोलिंग ऐप के माध्यम से हाथियों की लोकेशन और गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे। ये सर्वे लगभग 5,000 वर्ग हेक्टेयर वन क्षेत्र में किया जा रहा है। इसके माध्यम से कॉर्बेट क्षेत्र में हाथियों की वर्तमान स्थिति और उनके प्राकृतिक आवास की जानकारी प्राप्त की जाएगी। डॉक्टर बडोला ने कहा कि समय समय पर होने वाली गणना से मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और वन्यजीव प्रबंधन की रणनीति तैयार करने में भी सहायता मिलती है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत दी है। अब इनर लाइन परमिट की सुविधा धारचूला के साथ ही जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल में भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले इनर लाइन परमिट के केवल धारचूला तहसील से जारी होता था, जहां यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा और औपचारिकताओं में काफी समय लगता था। जिलाधिकारी आशीष फटगाई ने बताया कि यात्रियों और स्थानीय लोगों की लगातार मांग को देखते हुए जिला मुख्यालय में भी इनर लाइन परमिट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
4: इसमें कई लोगों का ये हम सब लोगों से रिक्वेस्ट थी कि जो इनर लाइन पासेस बनते हैं उसके लिए मुख्यालय में भी व्यवस्था की जाए, तो उसी के क्रम में जिला मुख्यालय

0: में भी जिला चिकित्सालय में एक काउंटर लगा के हम लोगों ने एलएलआईएम के जो पास होते हैं उनको देने की व्यवस्था बनाई है, ताकि जो आम जनमानस है और यात्री हैं वो उसका लाभ ले सके, और पिथौरागढ़ में ही आईएलपी जो पासेस हैं वो बनाए जा सके।
1: वहीं जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर डीपी सिंह के अनुसार प्रशासन के निर्देश पर अस्पताल में एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, पुलिस सत्यापन और अन्य जरूरी औपचारिकताएं एक ही स्थान पर पूरी कर परमिट जारी किए जा रहे हैं।
2: जी, यहाँ पे जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर हमने जिला अस्पताल में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। आदि कैलाश पर्वत और ओम पर्वत यात्रियों के इनर लाइन सिस्टम के परमिट के लिए, तो यहीं पे यात्रियों का मेडिकल बन जाते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाते हैं।
1: चमोली जिले में आपदा से प्रभावित ज्योतिर्मठ में प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि ज्योतिर्मठ आपदा से प्रभावित नगर में पुनर्निर्माण और भूधसाव सुरक्षा कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बरसात में कोई परेशानी ना हो। सिंचाई विभाग द्वारा अलकनंदा नदी में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी यात्रा सीजन में हेलंग मारवाड़ी बाईपास भी बनकर तैयार हो जाएगा।
3: देखिए, दो तरह के काम चल रहे हैं जोशीमठ क्षेत्र में। एक तो जो लैंड कनेक्टिविटी है वो बीआरओ के द्वारा की जा रही है, उसमें मारवाड़ी क्षेत्र में चौड़ा किया जाना है। एक हेलंग मारवाड़ी इनका बाईपास निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है, जिसके इस वर्ष या अगले वर्ष के प्रारंभ तक पूर्ण होने की पूरी संभावना है। साथ ही जो हमारी बद्रीनाथ धाम तक की कनेक्टिविटी है, वहां तक के बीच के रास्ते में जो लैंड स्लाइड प्रोन जोन है, वहां पर ट्रीटमेंट का काम भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जोशीमठ शहर में जो भूदशा हुआ था उसकी रोकथाम के लिए पीडीएनए द्वारा प्रस्तावित रिवर प्रोटेक्शन वर्क, साथ ही स्टेबलाइजेशन वर्क, जो स्लोप स्टेबलाइजेशन है, वो भी पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन के द्वारा लगातार किया जा रहा है।
1: वहीं कार्यों को लेकर क्षेत्र के लोगों में खुशी है। स्थानीय निवासी अमर सिंह चौहान ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि नगर में हो रहे पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्य ज्योतिर्मठ को मजबूती प्रदान करेगा।
4: जोशीमठ में सरकार द्वारा जो भूस्खलन का रोकथाम के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। इसमें जो हमारे यहाँ से यात्री बाहर से आते हैं उनमें एक भय का माहौल बना हुआ था, जो कि अब कुछ कम हो चुका है। और इनके लिए जो बाईपास की जो रोड काटी जाएगी या बाईपास की व्यवस्था की जाएगी, वो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा, हमारे जोशीमठ या हमारे चमोली के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार के कार्य जनता हित में किए जाए और लगातार आपके प्रयास से हो भी रहे हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने पौड़ी में विभागीय कार्यों के प्रभावी संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी, शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की गणना शुरू, 5 दिनों तक 72 बीटों में चलाया जा रहा विशेष अभियान। और पिथौरागढ़ जिले में कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब इनर लाइन परमिट की सुविधा धारचूला के साथ ही जिला अस्पताल में भी शुरू की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं को अपनी बोली भाषा को कार्यक्रम ग्राम जगत माँ 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर मिचो आपक दगड़ी सभी तबड़थवाल और आप छह मी दगड़ सभी श्रोता श्रोताओं ठीक 7 बजे तक आप अलापुर दगुड़ बनाए कर रखना। लेकिन वे से पहले आप थे लेख के चल जाए जौनसार की छोड़ और सुन जाए धर्म सिंह का स्वरमय सुंदर से जौनसारी गीत।

0: Give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: Video like karne ke paise milenge. So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: रविवारों से पहले आप सुनना चाहे धर्म सिंह का स्वरमय सुंदर से जौनसारी गीत। श्रोताओं, अब आप थे लेके चल जाए गढ़वाल की छोड़ और सुनने विनोद बिजलवाण का स्वरमय सुंदर से गढ़वाली गीत।

0: प्रादेशिक समाचारों को गढ़वाल में तो लिया सुना आप गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मीना उनियाल। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली थे आधुनिक तकनीक द्वारा करे जानो चु और ज्यादा मजबूत। अब टीवी स्क्रीन पर भी दिखाल आपदा संबंधी अलर्ट। गढ़वाल मंडल का आयुक्त आनंद स्वरूप का अध्यक्षता में पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कार्यों का प्रभावी संचालन थे लेकी बैठक का आयोजन। चमोली जिला में आपदा प्रभावित ज्योतिर्मठ में प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्य तेजी से किए जाना छन और बर्रों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में एक महीना का आओ हम सब योग करें अभियान चले जानो जो। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली थे और अधिक प्रभावी बनाने का दिशा में अब DTS प्लेटफार्म का माध्यम से भी ज्यादा आपदा संबंधी अलर्ट प्रसारित किए जाल। राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम थे मजबूत करने का तहत DTS का जरिया टेस्ट अलर्ट का सफल प्रसारण किए गए। पहले चरण में यह परीक्षण देहरादून हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षण के दौरान कई प्रमुख DTS प्लेटफॉर्म पर टीवी स्क्रीन पर टेक्स्ट

0: अलर्ट संदेश दिखेन। यू संदेश लगभग 15 से 40 सेकंड तक स्क्रीन पर दिखेन। ई प्रणाली का माध्यम से आपदा और मौसम संबंधी चेतावनियों को कुछ ही सेकंड में बड़ा स्तर पर प्रसारण संभव हो सकलो। नई व्यवस्था का तहत टीवी स्क्रीन पर सीधा संदेश दिखेन से लोगों को तत्काल ध्यान आकर्षित होलू। ये से अचानक बाढ़, भूस्खलन, भारी बरखा, आकाशीय बिजली और लू जनी घटनाओं से पहले लोगों को समय रहते सतर्क करे जा सकलो। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमनन बोली, उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील राज्य छे। इन वजह से समय पर चेतावनी को आम जन तक पहुँचाना बहुत जरूरी छे। उन बोली कि डीटीएच आधारित अलर्ट प्रणाली आपदा से पहले चेतावनी तंत्र को अधिक व्यापक, त्वरित और प्रभावी बनोली। उन बोली कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीकों का उपयोग से अर्ली वार्निंग सिस्टम लगातार मजबूत करनी छे, ताकि कहीं भी आपदा या खराब मौसम की स्थिति में समय रहते सटीक सूचना पहुँचे की जनहानि और नुकसान को बहुत कम किए जा सको। आकाशवाणी देहरादून का समाचार कक्ष बटिन रविंद्र सिंह।
1: गढ़वाल मंडल का आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में आज पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कार्यों का प्रभावी संचालन थे लेकी एक बैठक आयोजित करेगी। बैठक में मंडल और जिला स्तर का अधिकारियों का दगड़, विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली, विकास योजनाओं की प्रगति, जनहित से जुड़े मुद्दों और विभागीय समन्वय व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा करेगी। आयुक्त ने अधिकारियों से निर्देशित करी कि शासन की प्राथमिकताओं का अनुरूप योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करे जाओ, ताकि आम जन थे योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से मिल सक। उन कानून व्यवस्था थे मजबूत बने रखना, स्वास्थ्य सेवाओं थे बेहतर करना, वनाग्नि रोकथाम, आपदा प्रबंधन तैयारियां और आधारभूत सुविधाओं से जुड़िया कार्यों में विभागीय तालमेल बने रखने पर विशेष जोर दे।
2: जो शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं वो हमने इनको कन्वे कर दिया है और इनको कहा गया है कि जो भी निर्माण कार्य करने वाले एजेंसियां हैं, विभाग हैं, वो अपने काम मानसून से पूर्व निपटा लें और आपदा में, पिछली आपदा में जो नुकसान हुए थे उनको तुरंत रिकंस्ट्रक्शन का काम, उनको पैसा मिला हुआ है, तत्काल उसको पूरा कर दे। ये इलेक्शन ईयर है तो इसमें हमारे पास काम करने के लिए बहुत कम टाइम है, तो शीघ्रता से तेजी से काम करें, गुणवत्ता बनाए रखें और जिससे किसी भी प्रकार के जो उनका निर्माण कार्य है उसमें कोई कमी न रहे।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन का विमोचन समारोह में शामिल हुए। इस पुस्तक में केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दगड़, विभिन्न भूमिकाओं में प्राप्त अनुभवों का सजीव वर्णन करी। पुस्तक में नेतृत्व, सेवा, सुशासन व राष्ट्र निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विचारों से सरल और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करेगी। श्री धामी ने पुस्तक का प्रकाशन पर केंद्रीय मंत्री से शुभकामनाएं दीं।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: चमोली जिला में आपदा से प्रभावित ज्योतिर्मठ में प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्य तेजी से किए जाना छन। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि ज्योतिर्मठ आपदा से प्रभावित नगर में पुनर्निर्माण और भूदशाओं सुरक्षा कार्य तेजी से करे जाना छन, ताकि लोगों से बरसात में कोई परेशानी निवा। जिलाधिकारी ने बोली कि आगामी यात्रा सीजन में हेलंग मारवाड़ी बाईपास भी बनी तैयार भेजाल।
4: देखिए, दो तरह के काम चल रहे हैं जोशीमठ क्षेत्र में। एक तो जो लैंड कनेक्टिविटी है वो बीआरओ के द्वारा की जा रही है, मारवाड़ी क्षेत्र में चौड़ा किया जाना है। एक हेलंग मारवाड़ी का बाईपास निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है, जिसके इस वर्ष या अगले वर्ष के प्रारंभ तक पूर्ण होने की पूरी संभावना है। साथ ही जो हमारी बद्रीनाथ धाम तक की कनेक्टिविटी है, वहां तक के बीच के रास्ते में जो लैंड स्लाइड प्रोन जोन है, वहां पर ट्रीटमेंट का काम भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जोशीमठ शहर में जो भूदशा हुआ था उसकी रोकथाम के लिए पीडीएनए द्वारा प्रस्तावित रिवर प्रोटेक्शन वर्क, साथ ही स्टेबलाइजेशन वर्क, जो स्लोप स्टेबलाइजेशन है, वो भी पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन के द्वारा लगातार किया जा रहा है।
1: सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का योग विज्ञान विभाग द्वारा बरों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य में 21 मई बटी 21 जून एक महीना का आओ हम सब योग करें अभियान चले जाणो छो। ये क्रम में पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आर्य कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं को एक महीना तक विशेष निःशुल्क योग शिविर आयोजित करेगी। छात्राओं ने रोज सामान्य योगाभ्यास का दगड़ दगड़ विभिन्न रोगों का उपचार का बाबद योगासन, प्राणायाम, ध्यान आसन, भुजंगासन आदि योगिक क्रियाओं का अभ्यास करे जानो चो। योग विज्ञान विभाग का प्रधान योगाचार्य डॉक्टर गिरीश अधिकारी ने बताई कि योग शिविरों का माध्यम से लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, गंगा स्वच्छता और भारतीय संस्कृति से जुड़ने को रेबार दिए जानो चो।
5: नमामि गंगे व सोवन सिंह जी ने विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आओ हम सब योग करें अभियान लगातार 2015 से चलता आ रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष योग विज्ञान विभाग का संकल्प रहता है कि 3 लाख से 5 लाख लोगों तक, जन जन तक यह योग का अभ्यास पहुंचे, जिसमें हमारे योग साधक कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग की विधाओं को सिखा कर केवल शारीरिक रोगों को ही दूर नहीं अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रोगों को भी दूर कर रहे हैं। जहाँ केवल अल्मोड़ा ही नहीं, अल्मोड़ा के साथ साथ मुरादाबाद, दिल्ली, लखनऊ के साथ साथ देश के अनेक अन्य राज्यों में भी योग का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और जहाँ के लोग खूब सारा प्रोत्साहित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी व प्रसन्नता जता रहे कि हाँ हमें योग से अनेक प्रकार के लाभ उत्पन्न हो रहे।
1: वकी छात्रा सिद्धि टमटा और सपना आर्या ने बोली कि योग शिविर से विभिन्न योगिक क्रियाओं थे जन का बाद वो अन्य लोगों थे भी यहाँ प्रति जागरूक कारण।
6: हमारे स्कूल में विज्ञान विभाग द्वारा योगा सिखाया जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, और योगा से हम रोज नए नए योग सीख रहे हैं और हम दूसरों को भी सिखाएंगे योग।
7: हमारे यहाँ विज्ञान विभाग द्वारा योग संचालित किया जाता है, जिससे कई सारे रोग नष्ट होते हैं, जैसे सर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, इससे हम कई जगह योग का प्रचार करेंगे।
1: पौड़ी गढ़वाल में जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आज स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करेंगे, जहां 48 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग ले। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षा जोशी ने बताई कि स्क्रीनिंग परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता का आकलन करी उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करण का बाबत मार्गदर्शन प्रदान करण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली थे आधुनिक तकनीकी से करे जानो चो और मजबूत। अब टीवी स्क्रीन पर भी दिखाल आपदा संबंधी अलर्ट। गढ़वाल मंडल का आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कार्यों का प्रभावी संचालन थे लेकी बैठक का आयोजन। चमोली जिला में आपदा प्रभावित ज्योतिर्मठ में प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्य तेजी से किए जाना छन। और बर्रो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में 1 महीना का आओ हम सब योग करें अभियान चले जानो चो। यहाँ दगड़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हो चो। नमस्कार।
8: ये कदगड़ी ही कार्यक्रम ग्राम जगत बटोलने की सभी तबड़थाल तद्या अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर शाम के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार किसान साथियों, FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत। और आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी साथी सुरुचि वर्मा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न होंगे और अपनी खेती किसानी का बहुत ध्यान भी रख रहे होंगे। और साथियों, अब गर्मियां बहुत बढ़ रही है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में आपको अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखना है ताकि आप अपनी फसल से अधिक लाभ भी ले सकें। और साथियों, अधिक लाभ लेने के लिए अब खेती को नया रूप देकर भी आप उपज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि साथियों आजकल जो है खेती केवल फसल उगाने तक सीमित नहीं रह गई है। आज समय की मांग है कि किसान अपनी उपज को नया रूप देकर उसकी कीमत बढ़ाए। इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन, यानी कृषि उत्पादों में मूल्य वृद्धि। आज हम बात करेंगे कि कृषि में वैल्यू एडिशन क्यों जरूरी है और इससे किसानों को क्या लाभ मिल सकता है। कृषि में वैल्यू एडिशन का सबसे बड़ा फायदा

ये है साथियों कि इससे हमारी आय बढ़ती है और रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। गांव में छोटे छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाकर महिलाएं और युवा भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। किसान साथियों, कई बार ऐसा होता है कि किसान अपनी उपज मंडी में बेचते हैं लेकिन उन्हें सही दाम नहीं मिल पाता। वहीं अगर वो उत्पाद जब प्रोसेस होकर बाजार में पहुंचाते हैं तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे यदि किसान कच्चा दूध बेचता है तो उसे सीमित दाम मिलते हैं, लेकिन यदि वही किसान दही, पनीर या घी बनाकर बेचता है तो उसकी कमाई उसे कई गुना बढ़कर मिल सकती है। वैल्यू एडिशन से केवल आपकी आय ही नहीं बढ़ती है साथियों, बल्कि फसल खराब होने की समस्या भी कम होती है। फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, लेकिन उनसे बने उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। साथियों, आज जरूरत है कि हम खेती को केवल उत्पादन तक सीमित ना रखें, बल्कि उसे व्यापार और उद्योग से भी जोड़ें। यही आधुनिक खेती की पहचान भी है। इसलिए आप भी कृषि में वैल्यू एडिशन अपनाकर अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त करें और आर्थिक रूप से मजबूत बने। चलिए, अभी कार्यक्रम में और भी बातें करेंगे आपसे, पर पहले थोड़ा मनोरंजन भी कर लेते हैं और सुनते हैं ये सुंदर सी रागिनी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Future proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
3: कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत। साथियों, आजकल समय बदल रहा है और खेती का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। पहले जहां खेती में कई दिनों का समय और बहुत अधिक मेहनत लगती थी, वहीं आज आधुनिक कृषि यंत्रों ने खेती को आसान, तेज और लाभदायक बना दिया है। आज के दौर में खेती केवल मेहनत का काम नहीं रह गई साथियों, बल्कि ये तकनीक और आधुनिक साधनों का भी क्षेत्र बन चुकी है। यदि किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का सही उपयोग करे तो कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक कृषि यंत्रों का एक बड़ा फायदा ये भी है साथियों कि इससे खेती की लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। जब समय पर जुताई, बुआई और कटाई होती है तो फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। आजकल सरकार भी किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं ताकि किसान नई तकनीकों का लाभ उठा सके। लेकिन साथियों, ये भी जरूरी है कि किसान यंत्रों का सही रखरखाव आप करें, मशीनों की सही समय समय पर सफाई और मरम्मत करवानी चाहिए ताकि वे लंबे समय तक अच्छी तरह काम कर सके। साथ ही छोटे किसान मिलकर समूह बनाकर भी कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। इससे खर्च कम होगा और सभी किसानों को फायदा मिलेगा। तो साथियों, आधुनिक कृषि यंत्र केवल सुविधा नहीं है बल्कि आज की जरूरत बन चुके हैं। ये खेती को लाभकारी, आसान और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप भी अपनी खेती में नई तकनीकों को अपनाइए और प्रगति की राह पर आगे बढ़िए। और अभी साथियों, हमेशा की तरह हम आपके लिए एक भेंटवार्ता भी लाए हैं कार्यक्रम में, जिसका विषय है उत्तराखंड में फलों की व्यावसायिक खेती। इस विषय पर डॉक्टर सुरेश राम से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चमोली। तो आइए साथियों, सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
4: नमस्कार किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुरेश राम। और डॉक्टर साहब से हमारी जो आज बातचीत का विषय रहने वाला है वो विषय है उत्तराखंड में फलों की व्यावसायिक खेती। जी हाँ, आप जानते हैं कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर है, मैदानी भूभाग यहाँ पर है, तो इस तरह अगर हम यहाँ पर फल वृक्षों की खेती करते हैं, फलों को लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो हमारी

0: उगाई जा सकती हैं। लेकिन उत्तराखंड जो है कि विविधता की दृष्टि से
1: जी
0: बहुत ही संपन्न है। यहाँ पर एक ही समय में प्लेन्स वाले जो हमारे क्षेत्र, थोड़ा सा अगर आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपको फिर जो है कि आड़ू, प्लम, इस तरह की चीजों की खेती आप कर सकते हैं। और जैसे थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे जहां पर जो है ज्यादा बर्फ गिरती है, उन क्षेत्रों में अगर आप बढ़ेंगे तो वहां पर आपको सेब की खेती भी मिलेगी। इसके साथ साथ जो है अगर आप देखेंगे तो आपको जो है विभिन्न स्तरों पर जो हमारे जो इनके जोन बटे हुए हैं, उन जोन को अगर आप देखें तो उन जोन में तमाम तरह की विविधताएं हैं। यहाँ जड़ी बूटियों की भी खेती होती है, यहाँ भिन्न भिन्न सब्जियों की खेती होती है। किसान, चूंकि हमारे पास जो हमारा क्षेत्र है वो क्षेत्र इतना विविध है कि जब मैदानी क्षेत्रों में लू चलती है तब हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो है अच्छी सब्जी की खेती होती है,
1: बिल्कुल,
0: जिसको हम मार्केट में आप सीजन सब्जी के रूप में जो है बेच करके और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: जी,
0: तो इस तरह से हमारा जो उत्तराखंड का भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही जो है विविध है और बहुत ही अच्छा है, जहां पर एक ही समय में आप अलग अलग जो है कि ऊंचाइयों पर अलग अलग तरह के सब्जी और फलों की खेती कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, उत्तराखंड में अगर हम समस्याओं को देखें तो यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं इनकी बहुत ज़्यादा समस्या देखी जाती है, और हर किसान यही कहता है कि भाई खेती किसानी से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है। और इस चक्कर में हम देख रहे हैं कि पलायन भी बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में देखा गया है। थोड़ा बताएं डॉक्टर साहब कि अगर हम बागों का चयन कर रहे हैं, फलों का चयन कर रहे हैं, तो किस तरह से हम बाग लगाएं कि आने वाले समय में जो जंगली जानवर हैं इसकी समस्या से बचा जा सके।
0: बहुत अच्छा सवाल किया है आपने
1: जी।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि जंगली जानवरों की जहां तक हम बात करते हैं, तो शायद मेरी बात से बहुत से लोग सहमत होंगे कि वो हमारे घरों में नहीं रह रहे हैं, हम उनके घरों में रह रहे हैं।
1: जी,
0: तो जब हम उनके घरों में रह रहे हैं तो हमें उनसे कहीं ना कहीं जो है कि सामंजस्य बैठाते हुए ही हमें जो है आगे बढ़ना है। तो पहली बात यह है कि जब किसान 5 नाली 10 नाली में खेती करता है तो उसमें जो फसल पैदा होती है तो आसपास के जितने भी बंदर हैं, जंगली जानवर हैं, वो सबका आकर्षण का केंद्र वो बनता है, और पूरे जंगली जानवरों का जो है कि और शिकार भी बनता है। तो चूंकि एरिया छोटी होती है तो हमारा नुकसान 100% होता है
1: जी।
0: तो इससे बचने के लिए कि ना हम उनको जो उनसे हम दूर भी नहीं जा सकते और ना उनको दूर कर सकते, तो हम कैसे बचें, तो इसके लिए ये है सबसे बढ़िया तरीका कि हम सभी लोग सामूहिक रूप से क्लस्टर अवधारणा अपनाते हुए खेती करें।
1: अच्छा।
0: एक आदमी करेगा तो 5 नाली में करेगा, लेकिन अगर वहीं पर पूरा गांव अगर एक साथ करेगा तो 200 नाली में करेगा, 300 नाली में करेगा। तो जब इतने बड़े क्षेत्र में जो है कि खेती होगी तो उस दौरान खेती के करते समय हर गांव का कोई ना कोई बंदा खेतों पर मौजूद होगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, चौकीदारी के लिए भी आप लगे रहेंगे
1: जी, जी।
0: तो वहां आपकी जो प्रतिशत है वो घट करके कम हो जाएगा, क्योंकि वो पहले 10 नाली होता था तो उसी पर वो फोकस करता था, आज आपके पास 200-300 नाली हो गया तो वो जो है कि उनका जो नुकसान का प्रतिशत था वो घट के नीचे आ गया। तो इससे ये फायदा होगा कि उनको भी थोड़ा बहुत जो भी नुकसान हो रहा है हमारा नुकसान का प्रतिशत कम हो गया
1: जी।
0: और जो हमने पैदा किया उससे हम जो है कि उससे हम मार्केट में अच्छा पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि जब हम सामूहिक रूप से खेती करेंगे, क्लस्टर में खेती करेंगे, तो हमारे एक ही जगह पर इतनी फसल पैदा हो जाएगी कि या तो मार्केट हमारे पास चल के आ जाएगा या फिर जो है कि हम एक ही बार गाड़ी में भर करके इतना उत्पाद पैदा हो जाएगा कि गाड़ी में भर करके हम जो है कि मार्केट तक ले जा पाएंगे, और वहां पर वो जो जंगली जानवर भी खा रहे हैं उसका बहुत आर्थिक असर हमारे जो है कि उत्पादन पर या हमारे कमाई पर नहीं पड़ेगा
1: जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि किसानों को आजकल देखा गया है, जैसे कीवी के वो बाग लगा रहे हैं, और माना यह जा रहा है कि जो कीवी के बाग हैं उनको थोड़ा अगर हम देखें काफी हद तक जंगली जानवर कम नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या इस तरह का चयन भी किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है?
0: बिल्कुल, ये जो है आजकल हमारी सरकार इस पे काफी ध्यान दे रही है, क्योंकि हमें जो है कि अपने जंगली जानवरों के साथ भी सामंजस्य बैठाना है
1: जी।
0: तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो उनको जो है अपने से दूर करती है या खाने से उन्हें रोकती है। तो कीवी एक ऐसा फसल है जिसको अगर आप लगाएंगे तो कीवी का जो अपनी संरचना है उनके पत्तों पर, उनके तनों पर, उनके जो है कि फलों पर रोएं पाए जाते हैं। वो रोएं जब बंदर या कोई जानवर उसको खाता है तो वो रोएं जो है उसको बहुत मतलब

0: खाने में जो है बहुत एक अरुचि सा पैदा करते हैं, तो वो उसको खाने से थोड़ा दूर रहते हैं क्योंकि उसमें उनका उतना इंटरेस्ट नहीं होता है।
1: जी
0: तो ऐसे में जहां पर भी जो है जंगली जानवरों का प्रकोप है वहां हम इसको जो है अपना सकते हैं। साथ ही जो हमारे पास ड्रैगन फ्रूट है,
1: जी
0: हम ड्रैगन फ्रूट को भी जो है अपना सकते हैं। तो इनमें जो है कि इनका प्रकोप अपेक्षाकृत कम होता है, और इससे हमें जो है कि यह है कि कम मेहनत में या कम जो है जंगली जानवरों को नुकसान से हम अधिक आर्थिक जो है कि वो पा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो हमारे फल हैं ये उच्च मांग वाले हैं और उच्च गुणवत्ता वाले हैं, तो इनका जो है बाजार में मांग अधिक है। तो इस वजह से जो है हमें जब हम प्रति जो है कि स्क्वायर मीटर जब उत्पादन करेंगे अन्य पारंपरिक फसलों की अपेक्षा, इनसे हमें ज्यादा जो है धन प्राप्त होगा, ज्यादा जो है कि मार्केट में हमें पैसा प्राप्त होगा। तो कम क्षेत्रफल से हम अधिक जो है कि उपज प्राप्त करके और अधिक जो है कि अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और कृषि की बात करें चाहे बागवानी की बात करें, दोनों ही जगह इसका प्रकोप हमें देखने को मिल रहा है, उत्पादन में इसका फर्क पड़ता है। अगर बागवानी को देखें और फलों की हमने खेती की है, तो कैसे इस जलवायु परिवर्तन की समस्या से हम निपट सकते हैं? क्या कुछ प्रजातियां भी ऐसी रहने वाली हैं जो आज के हिसाब से किसानों को अच्छा फायदा दें?
0: बिल्कुल, आपने बहुत ही समसामयिक या बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को छुआ है जो हमारा जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन से आप देख रहे होंगे कि समय पर बरसात नहीं हो रही है, या बरसात बहुत पहले स्टार्ट हो जा रही है, या जब जो है पूरी गर्मी पड़नी चाहिए उस समय भी लगातार बरसात हो रही है, या बरसात थोड़ी थोड़ी हो रही, मतलब ऐसी हो रही है जो हमारी अब तक की फसलें थी वो फसलों का वो जो जितना भी उनको पानी, मतलब पानी चाहिए या जितना तापमान चाहिए या जितना आर्द्रता चाहिए वो डिस्टर्ब हो रही है। कई बार ऐसा हो रहा है कि आवश्यकता से अधिक बर्फ पड़ रही है,
1: जी
0: आवश्यकता से जो है अधिक सूखा पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना है कि हम किधर को जाएं। तो हमें उस दौरान ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जो फसलें जलवायु के परिवर्तन को अपने आप में थोड़ा सा जो है कि रोक सके। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि हम सेब की अगर बात करते हैं, तो एक समय ऐसा था कि सेब हमारा 2000 मीटर से ऊपर होता था,
1: जी
0: और वो सेब जब हम लगाते थे तो वो सेब जो है कि हम 1 हेक्टेयर में 50 नाली में है हम केवल 278 पौधे लगाते। आज जो है कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए कुछ ऐसी प्रजातियां भी आ गई हैं जो छोटी हाइट की हैं और जो है कि ड्वार्फ हैं, उनको हम M9 रूट स्टॉक पर लगाते हैं और वो छोटे हाइट की होती हैं। अगर उसकी सुंदरता अगर आप देखें तो वो पहले जहां 2000 पर हम लगाते थे आज हम जो है 1200-1300 मीटर पर भी उसको लगा सकते हैं।
1: जी
0: तो इससे यह है कि जलवायु परिवर्तन तो हुआ, जो वो वेराइटियां हैं जो 2000 पर लगती थी उनको हमें और ऊपर ले जाने की जरूरत है,
1: जी
0: लेकिन ये नए जो इंटरवेंशन हैं जिसमें ऐसी प्रजातियां आ गई जो कम जो है कि बर्फ में भी अच्छा फसल देती हैं, तो वो घट करके नीचे आ गई 1500, 1600, 1200 के लेवल पर आकर के वो प्रजातियां हम कर सकते हैं। इस तरह
1: जी
0: की प्रजातियां हैं। हमारा विभाग जो है इसमें मिशन एप्पल मिशन के नाम से योजना चलाता है और उसमें जो है कि हम लोग जो है किसान को मदद करते हैं, और पर एकड़ जो है 12,36,500 खर्चा आता है, और उसमें जो है कि 60% सब्सिडी हमारी सरकार देती है, और ये
1: जी
0: काफी मांग है इसकी,
1: जी
0: इसकी काफी मांग हो गई है। इसकी दूसरी सुंदरता क्या है कि पहले हम जो है कि जो हमारे पौधे होते थे वो 6 साल 7 साल बाद फसल देते थे जो ताकि हम मार्केट ले जा सके, लेकिन आज जो हमारे फसल जो है कि पौधे हैं वो अगर आप लेना चाहें तो आप अगले साल से फल ले सकते।
1: अच्छा
0: लेकिन मेरा मेरा सुझाव होगा कि आप अगले साल फल ना लें, जब लगाएं तो अगले साल फल ना लें, उसको 1 साल रोक लें। दूसरे तीसरे साल से जब आप फल लेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा
1: जी
0: और ना जो है उसमें आपको बहुत, और जो है जहां हम 278 पौधे कह रहे हैं वहां हम इसमें जो है कि अगर हम M9 रूट स्टॉक पर लगाते हैं तो वहां हम 2200 पौधे लगा सकते हैं
1: अच्छा
0: 1 ही हेक्टेयर में 50 नाली में। तो आप समझ सकते हैं कि कहां 278 और कहां जो है 2200, और वहां पर जो है कि जो सब कुछ उसमें लगा होता है, उसमें आप पॉली जो है कि पॉली मल्च लगा होता है,
1: जी
0: उसमें जो है कि उसको संभालने के लिए स्टेकिंग भी लगी होती है, तार बाड़ लगे होते हैं, ऊपर से एंटी हेलनेट लगा होता है ताकि अगर ओला गिरे तो वो ओला से बचाया जा सके,
1: जी
0: फेंसिंग लगी होती है, ये सब इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। पौधे छोटी हाइट के होते हैं तो आप आराम से उसमें जो है देख रेख भी कर सकते हैं, उनके बीच में आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं।
1: जी
0: तो इस तरह की चीजों पर हम जा सकते हैं और कृषि पर काफी जो है कि फोकस है ताकि हमारे किसानों को पर्वतीय क्षेत्र में ही अच्छी तरह से जो है कि अपनी आय को वो सृजित कर सकें और उन्हें जो है

0: पलायन न कर पाए।
1: जी, तो डॉक्टर सुरेश राम जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे तमाम किसान साथियों तक पहुंचाई कि कैसे उत्तराखंड में फलों की खेती की जा सकती है। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद आप।
2: किसान साथियों, अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता, विषय था उत्तराखंड में फलों की व्यवसायिक खेती। डॉक्टर सुरेश राम से बातचीत कर रहे थे विकास चमोली। उम्मीद है आपने भेंट वार्ता को ध्यान से सुना होगा और भविष्य में इस जानकारी का आप लाभ भी अवश्य लेंगे। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनेंगे एक प्यारा सा लोकगीत, पर उससे पहले सुनेंगे कुछ जरूरी संदेश।
3: Future proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.

अब इसी के साथ ही साथियों, समय हो रहा है आप सभी से विदा लेने का, पर आप हमें पत्र लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपको कैसी लगती है, ये सब आप हमें पत्र लिखकर जरूर बताइएगा। तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता भी लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। हमारा पिन है 24801 और आप jagatkrishi@gmail.com पर हमें ईमेल्स भी भेज सकते हैं। अब अपनी साथी सुरुचि वर्मा को अनुमति दीजिए फिर से आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखते रहिए। साथियों नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर शाम के 7:30 हो रहे हैं और अब वक्त है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों दगड़ मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में आपदा है पहली चेतावनी प्रणाली को नई तकनीकी तय करी जानो और जात मजबूत। अब टीवी स्क्रीन में ले दिखल आपदा संबंधी अलर्ट। गढ़वाल मंडलक आयुक्त आनंद स्वरूप अध्यक्षता में पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कामों प्रभावी संचालन को लिबेर बैठकक आयोजन। चमोली जिलम आपदा प्रभावित ज्योतिर्मठ में प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा काम झट करी जानी। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक उपलक्ष्य में अलमण में एक मेणक आओ हम सब योग करें अभियान चलाई जानो। अब समाचार विस्तार। प्रदेश में आपदा है पहली चेतावनी प्रणाली को और जैत प्रभावी बनोड़े दिशा में अब DTH प्लेटफॉर्मक माध्यमल आपदा संबंधी अलर्ट प्रसारित करी जाल। राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को भलकरणक भीतर है DTH बटे टेस्ट अलर्टक सफल प्रसारण करी गयो। पहली चरण में यो परीक्षण देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलम करी गयो। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षण के दौरान विभिन्न प्रमुख DTH प्लेटफॉर्म पे टीवी स्क्रीन पे टेस्ट अलर्ट संदेश दिखाई दी। यह संदेश लगभग 15-40 सेकंड जाने स्क्रीन पे दिखाई दी। ये प्रणाली के माध्यम में आपदा और मौसम संबंधी चेतावनियों को कुछ ही सेकंड में फुल स्तर पे प्रसारण संभव है सकल। नई व्यवस्था थे टेलीविजन स्क्रीन पे सिद्ध संदेश दिखाई देने में लोगों को तुरंत ध्यान आकर्षित होल। इथे अचानक बाढ़, भूस्खलन, भारी दियो, आकाशीय बिजली और लू जैस घटनाओं से पहले लोगों को समय रहते सतर्क की जा सकल। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमनल को की उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि छे अत्यंत संवेदनशील राज्य छू, इलिजी बखत पे चेतावनी संदेश लोगों जान पहुंचान बेहद जरूरी छू। उन्होंने कहा कि DTH आधारित अलर्ट प्रणाली आपदा से पहली चेतावनी तंत्र को अधिक व्यापक, त्वरित और प्रभावी बनाल। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीकों के उपयोग में अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगातार मजबूत करने लग रहे ताकि केले आपदा या

0: गंभीर मौसमक स्थिति में समय रहते सटीक सूचना उपलब्ध कराए बेर जनहानि और नुकसान को न्यूनतम की जा सके। आकाशवाणी देहरादून लीजिए समाचार कक्ष में रेणु प्रीति।
1: गढ़वाल मंडलक आयुक्त आनंद स्वरूप अध्यक्षता में आज पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कामों प्रभावी संचालन को लिबेर एक बैठक भय। बैठक में मंडल और जिला स्तर अधिकारियों दगड़े अलग अलग विभागों की कार्यप्रणाली, विकास योजनाओं की प्रगति, जनहित से जुड़ी बातों और विभागीय समन्वय व्यवस्था में विस्तारल चर्चा की गई। आयुक्त अधिकारियों को बताणु कि शासन की प्राथमिकताओं के हिसाबल योजनाओं को बखत पे और बढ़िया काजकरण पक्कू करी जाल, जैल आम लोगों को योजनाओं का लाभ प्रभावी रूपल मिल सकल। उन्होंने कानून व्यवस्था को भल बनाई राखण, स्वास्थ्य सेवाओं को उभल करण, वनाग्नि रोकण, आपदा प्रबंधन तैयारियों और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी काजों में विभागीय तालमेल बनाई राखण मेले विशेष जोर दी।
2: जो शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं वो हमने इनको कन्वे कर दिया है और इनको कहा गया है कि जो भी निर्माण कार्य करने वाले एजेंसियां हैं, विभाग हैं, वो अपने काम मानसून से पूर्व निपटा लें और आपदा में, पिछली आपदा में जो नुकसान हुए थे उनको तुरंत रिकंस्ट्रक्शन का काम, उनको पैसा मिला हुआ है, तत्काल उसको पूरा कर दे। ये इलेक्शन ईयर है तो इसमें हमारे पास काम करने के लिए बहुत कम टाइम है, तो शीघ्रता से तेजी से काम करें, गुणवत्ता बनाए रखें और जिससे किसी भी प्रकार के जो उनका निर्माण कार्य है उसमें कोई कमी न रहे।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किताब अपना पनक विमोचन समारोह में शामिल भई। यो किताब में केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दगड़े अलग अलग भूमिकाओं बटी मिलन वाल अनुभवों का सजीव वर्णन कर रखो। किताब में नेतृत्व, सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी जरूरी विचारों को सरल और प्रभावी रूप में प्रस्तुत कर रखो। श्री धामिल किताब प्रकाशन पर केंद्रीय मंत्री को बधाई दी और यकु समाज के लिए प्रेरणादायी बता। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
3: चमोली जिले में आपदा थे प्रभावित ज्योतिर्मठ में प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा काम झट करी जानी। जिलाधिकारी गौरव कुमारल बता कि ज्योतिर्मठ आपदा थे प्रभावित नगर में पुनर्निर्माण और भूदशाओ सुरक्षा काम झट कराई जानी, जै लोगों को उद्योग बखत की परेशानी नहीं हो। सिंचाई विभाग द्वारा अलकनंदा नदी में सुरक्षा दीवार निर्माण काम ले झट करी जानो। जिलाधिकारी कह कि ऊँड वाली यात्रा मौसम में हेलंग मारवाड़ी बाईपास ले बड़बेर तैयार है जल।
4: देखिए, दो तरह के काम चल रहे हैं जोशीमठ क्षेत्र में। एक तो जो लैंड कनेक्टिविटी है वो बीआरओ के द्वारा की जा रही है, इसमें मारवाड़ी क्षेत्र में चौड़ा किया जाना है। एक हेलंग मारवाड़ी इनका बाईपास निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है, जिसके इस वर्ष या अगले वर्ष के प्रारंभ तक पूर्ण होने की पूरी संभावना है। साथ ही जो हमारी बद्रीनाथ धाम तक की कनेक्टिविटी है, वहां तक के बीच के रास्ते में जो लैंड स्लाइड प्रोन जोन है वहां पर ट्रीटमेंट का काम भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जोशीमठ शहर में जो भूदशा हुआ था उसकी रोकथाम के लिए पीडीएनए द्वारा प्रस्तावित रिवर प्रोटेक्शन वर्क, साथ ही स्टेबलाइजेशन वर्क, जो स्लोप स्टेबलाइजेशन है, वो भी पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन के द्वारा लगातार किया जा रहा है।
3: सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अलमाड़क योग विज्ञान विभाग द्वारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक उपलक्ष्य में 21 मई बटी 21 जून एक मैणक आओ हम सब योग करें अभियान चलाई जानो। यो क्रम में पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आर्य कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं के लिए एक मैण ताले विशेष निःशुल्क योग शिविर आयोजित करी जा रो। छात्राओं को रोज सामान्य योगाभ्यासक दगड़ दगड़े अलग अलग रोगों को उपचारक लीजिए योगासन, प्राणायाम, ध्यान, आसन, भुजंगासन जस यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कराई जानो। योग विज्ञान विभागक प्रधान योगाचार्य डॉक्टर गिरीश अधिकारी बता कि योग शिविरों के माध्यम लोगों को स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, गंगा स्वच्छता और भारतीय संस्कृति से जुड़ना संदेश ले दी जानो।
5: नमामि गंगे व सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आओ हम सब योग करें अभियान लगातार 2015 से चलता आ रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष योग विज्ञान विभाग का संकल्प रहता है कि 3 लाख से 5 लाख लोगों तक, जन जन तक यह योग का अभ्यास पहुंचे, जिसमें हमारे योग साधक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग की विधाओं को सिखाकर केवल शारीरिक रोगों को ही दूर नहीं अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रोगों को भी दूर कर रहे हैं।

0: जहां केवल अल्मोड़ा ही नहीं, अल्मोड़ा के साथ साथ मुरादाबाद, दिल्ली, लखनऊ के साथ साथ देश के अनेक अन्य राज्यों में भी योग का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जहां के लोग खूब सारा प्रोत्साहित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी व प्रसन्नता जता रहे कि हाँ, हमें योग से अनेक प्रकार के लाभ उत्पन्न हो रहे।
1: वे छात्रा सिद्धि टमटा और सपना आर्याल को कि योग शिविर अलग अलग यौगिक क्रियाओं को जानने के बाद वो और लोगों को ले एक बार में जागरूक कराल।
2: हमारे स्कूल में विज्ञान विभाग द्वारा योगा सिखाया जा रहा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और योगा से हम रोज नए नए योग सीख रहे हैं और हम दूसरों को भी सिखाएंगे योग।
3: हमारे यहाँ विज्ञान विभाग द्वारा योग संचालित किया जाता है जिससे कई सारी रोग नष्ट होते हैं, जैसे सर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, इससे हम कई जगह योग का प्रचार करेंगे।
1: पौड़ी गढ़वाल में जिला प्रशासन द्वारा चरणर प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आज स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करी गई, जमे 48 नांतिनोल उत्साहपूर्वक भाग ले। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशील बता कि स्क्रीनिंग परीक्षा का उद्देश्य नांतिनों की शैक्षणिक क्षमता को आगबेर उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की भल तैयारी के लिए मार्गदर्शन दीण छू। उन्होंने कहा कि इस प्रकार परीक्षाओं के माध्यम नांतिनों की तैयारी का मूल्यांकन करी जा, जैल उनको अपनी कमजोरियों को पछाड़ना और भविष्य की तैयारियों को और भर बनुण में सहायता मिले। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आपदा है पहली चेतावनी प्रणाली को नई तकनीकी तय करी जानो और जात मजबूत। अब टीवी स्क्रीन में ले दिखल आपदा संबंधी अलर्ट। गढ़वाल मंडलक आयुक्त आनंद स्वरूप अध्यक्षता में पौड़ी में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय कामों प्रभावी संचालन को लिबेर बैठक आयोजन। चमोली जिलम आपदा प्रभावित ज्योतिर्मठ में प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण और सुरक्षा काम झट करी जानी और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अलमण में एक मिनट आओ हम सब योग करें अभियान चलाई जानो। यह कदगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:40 होने को हैं। श्रोताओं, अब पेश है फिल्म संगीत। तो आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में। और श्रोताओं, सुनेंगे फिल्म संगीत में ये पहला गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। इस गीत को संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने और बोल दिए हैं गुलजार ने। फिल्म है आंधी।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:45 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत में ये अगला गीत, फिल्म दूसरा आदमी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर शाम के 7:50 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अरण्य देहरादून की प्रस्तुति सप्ताह सार।
1: नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से मैं मानव डोभाल आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार में। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे बीते एक सप्ताह की विशेष खबरों के बारे में। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में अल्मोड़ा जिला योजना की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 74,73,70,000 का व्यय अनुमोदन किया गया। कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली और आगामी कार्य योजना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर रावत ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जिले के समग्र विकास में सक्रिय सहभागिता निभाने और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर रावत ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में जिला योजना की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा 22 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि रैंकिंग के आधार पर उत्तराखंड देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हुआ है। देहरादून नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुगम और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के विरुद्ध व्यापक कार्यवाही की। नगर आयुक्त के निर्देश पर वार्ड संख्या 100 में पार्षद स्वाति डोभाल की शिकायत के बाद गुजरोवाली स्थित कृष्णा विहार क्षेत्र में सड़क पर किए गए अवैध कब्जों को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। इस दौरान संबंधित लोगों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की कड़ी चेतावनी भी दी गई। इसी क्रम में बल्लूपुर पंडितवाड़ी क्षेत्र में सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमणों

हटाकर मार्ग को बाधा मुक्त कराया गया। वार्ड संख्या 3 में भी निगम की टीम द्वारा लगातार अभियान चलाकर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम ने शहर में लगाए गए अवैध होर्डिंग्स और विज्ञापन सामग्री को हटाने की कार्यवाही भी की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थे और देहरादून के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। वे केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री रहे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2 कार्यकालों में सेवा दी। उनका राजनीतिक जीवन सादगी, पारदर्शिता और सुशासन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय खंडूड़ी ने भारतीय सेना में रहते हुए राष्ट्र सेवा, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रदेश हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विकास को नई दिशा प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय खंडूड़ी की सादगी, स्पष्टवादिता और कार्यकुशलता सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका निधन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अन्य शहरों में बढ़ते यातायात और जाम की समस्या से लोगों को जल्द राहत मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर नई पार्किंग योजनाओं पर काम कर रही है ताकि शहरों की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। आवास व राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि ऐसे कई स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां आधुनिक पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इससे ज्यादा संख्या में वाहन व्यवस्थित तरीके से पार्क हो सकेंगे और सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के बाद देहरादून के आपदा प्रभावित कार्लीगढ़ क्षेत्र में मलबे के चैनलाइजेशन का कार्य शुरू हो गया है। जिला खान विभाग द्वारा मशीनों के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों श्री जोशी ने इस क्षेत्र का निरीक्षण कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपदा के मलबे को शीघ्र हटाने और प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा इस संबंध में निविदाएं जारी कर दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। टिहरी जिले के फकोट में नरेंद्र नगर की ब्लॉक प्रमुख दीक्षा राणा की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल, टिहरी की जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सदस्यों ने क्षेत्र में सड़क, पेयजल आदि से जुड़े मुद्दों को उठाया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के फोन अनिवार्य रूप से उठाएं तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनें। ब्लॉक प्रमुख दीक्षा राणा ने कहा कि बैठक में सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। वहीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत को लेकर की गई अपील का असर भी देखने को मिला। अधिकांश अधिकारी पैदल, बसों और अन्य वैकल्पिक साधनों से बैठक में पहुंचे। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने कहा कि इससे जहां पर्यावरण प्रदूषण कम होगा वहीं ईंधन की खपत में भी कमी आएगी। पौड़ी जिले में बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल समस्याओं को लेकर आमजन से लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कार्यालय व्यवस्थाओं, शिकायत निस्तारण प्रणाली, अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति तथा फील्ड में चल रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति का गहन जायजा लिया। इस दौरान कई स्तरों पर लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता से वीडियो कॉल से संपर्क किया तो वे ड्यूटी के समय में अपने घर पर मौजूद मिले। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित के खिलाफ तत्काल प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। वहीं अधीक्षण अभियंता कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए जिसके संबंध में उनका एक दिन का वेतन बाधित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पेयजल जैसी अत्यंत संवेदनशील और जनहित से जुड़ी व्यवस्था में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कंट्रोल रूम व्यवस्था की भी समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन को त्वरित और प्रभावी पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कृषि और बागवानी को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से राजकीय पौधालय बागेश्वर में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना और रखरखाव पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

0: कार्यक्रम में जिले के लगभग 100 किसानों ने भाग लिया। वहीं राजकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी भ्रमण कार्यक्रम के माध्यम से बागवानी तकनीकों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के महत्व, उपयोगिता और रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला उद्यान अधिकारी हरीश चंद्र आर्य ने कहा कि विभाग लगातार किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। भ्रमण कार्यक्रम में शामिल छात्र ऋतिक लुमियाल ने कहा कि खेती और बागवानी के आधुनिक तरीकों को समझना काफी रोचक अनुभव रहा। राज्य सरकार ने जिला योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों को विकास कार्यों के लिए कुल 1,018,20,60,000 रुपए की धनराशि आवंटित की है। ये राशि जिलों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की गई है। आवंटित धनराशि में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत 200 करोड़ 22 लाख 10 हजार रुपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 30 करोड़ 7 लाख 80 हजार रुपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस धनराशि से जिला योजना के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य जनोपयोगी योजनाओं को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कुमाऊं मंडल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले बागेश्वर जिले को जल्द ही एक अत्याधुनिक राज्य अतिथि गृह की सौगात मिलने जा रही है। राज्य संपत्ति विभाग ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रशासनिक आवश्यकताओं के साथ ही पर्यटन और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान से भी जोड़ने का निर्णय लिया है। लगभग 17 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से 45 नाली भूमि पर प्रस्तावित इस अतिथि गृह को उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला के अनुरूप विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है। आवास और राज्य संपत्ति सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देहरादून में आयोजित बैठक में कहा कि भवन का स्वरूप पर्यावरण के अनुकूल हो तथा उसमें स्थानीय स्थापत्य कला की झलक दिखाई दे। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य अतिथि गृह के निर्माण से बागेश्वर में प्रशासनिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी, साथ ही जिले में आने वाले विशिष्ट अतिथियों, अधिकारियों और पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे स्थानीय पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही सप्ताह सार का यह विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ और खास खबरों के साथ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति सप्ताह सार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बज रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं विवेक ममगई से संस्कृत वार्ता। विषय है संस्कृत भाषाया लोक साहित्य वर्णनम।
2: लोक साहित्यस्य संस्कृतस्य च मध्ये गहन संबंधः अस्ति। यत्र संस्कृतं लोक साहित्यं अनेक विधैः प्रभावितम् अस्ति। संस्कृतं सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी अस्ति। लोक साहित्ये न केवलं शब्द संग्रह संरचना च दीयते, अपितु बहवः लोक कथाः गाथाः च संस्कृत भाषाया प्रभावितः सन्ति। यद्यपि शास्त्रीय संस्कृतं च जनैः प्रेरितम् आसीत्, तथापि जनां मौखिक परम्पराः अपि संस्कृतस्य विकासस्य अंगानि आसन्। यथा रामायणं महाभारतं च उभौ अपि संस्कृतभाषायां लिखितौ। संस्कृतभाषायां विज्ञानस्य गणितस्य च प्राचीनग्रन्थः अध्ययनं कृत्वा वयम् अस्माकं वैज्ञानिकज्ञानं समृद्धं कृत्वा आधुनिकविज्ञानप्रौद्योगिकीनां च उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। सामान्यजन सम्बद्धानां साहित्यानां लोकसाहित्यम् इति भवेत्। सामान्यजीवनं विशिष्टजीवनात् भिन्नम् अस्ति, अतः लोकसाहित्यस्य आदर्शः साहित्यात् भिन्नः अस्ति। देशस्य वा प्रदेशस्य वा लोककथा प्राचीनकालात् अद्यपर्यन्तं सामान्यजनसङ्ख्यायाः अन्तर्गतानां सर्वासां प्रवृत्तिः प्रतीकम् अस्ति। अस्मिन् साहित्ये जीवनस्य सर्वप्रकाराः भावनाः कृत्रिमतः विना

0: अंगनम सर्वथा साक्षात्काराय भवति अहम् इति उक्त्वा अहम् विरमामि।
1: अभी आप सुन रहे थे विवेक ममगई से संस्कृत वार्ता, विषय था संस्कृत भाषा या लोक साहित्य वर्णनम। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:13 हो रहे हैं। श्रोताओं, एक बार आपको पुनः याद दिला दें, रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट और रात्रि 9:30 पर विज्ञान पत्रिका। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 10 आप सुनेंगे खेल दर्पण, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर यानी रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा तलत अजीज की आवाज में चंद गजलें।

कल रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट और कल रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष बचे कार्यक्रमों की जानकारी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:15 होने को हैं। श्रोताओं, आइए सुनेंगे सुगम संगीत के अंतर्गत तलत अजीज की आवाज में चंद गजलें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:25 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत तलत अजीज की आवाज में गजलें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत तलत अजीज की आवाज में गजलें। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। मुमकिन है कि जो आज एक सपना है वही कल हमारी हकीकत का गहना है। जी हाँ श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में। और सुनेंगे फिल्म संगीत में ये पहला गीत फिल्म दिल जले से उदित नारायण की आवाज़ में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: Future-proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
2: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर. रात्रि के 8:37 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत. तो श्रोताओं, सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत. कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाज़ में इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने, बोल दिए हैं समीर ने और फिल्म है दिल है तुम्हारा.

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:41 हो रहे हैं और ये चल रहा है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो श्रोताओं, समय को देखते हुए पेश खिदमत है फिल्म संगीत में ये अंतिम गीत। इस गीत को लिया है फिल्म आशिकी 2 से और इस गीत को आवाज़ें दी हैं तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह ने, बोल दिए हैं इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध किया है जीत गांगुली ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
5: Economic resilience should be promoted.
6: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
5: Undertake more exchanges as we intend to do.
1: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
7: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
8: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
7: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: विज्ञान पत्रिका विज्ञान पत्रिका अंतरिक्ष के आज के कार्यक्रम में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
1: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में एक वार्ता के माध्यम से जानेंगे क्या है एंट्रोपी। वार्ताकार हैं डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में भेंट वार्ता के माध्यम से जानेंगे क्वांटम की दुनिया को, जहां हमारे मेहमान श्री नितेश चौहान बताएंगे कितनी अनोखी है क्वांटम की दुनिया। लेकिन इस सबसे पहले आइए जानते हैं क्या कुछ नया चल रहा है विज्ञान की दुनिया में।
2: विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो हर रोज कुछ न कुछ नया होता ही रहता है, तो चलिए शुरू करते हैं।
3: तो सबसे पहले अंतरिक्ष निसार मिशन, ये नासा और इसरो का बड़ा जॉइंट प्रोजेक्ट है, सुना है? पृथ्वी का कोई हाईटेक स्कैन जैसा?
2: हाँ हाँ, निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये असल में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, पृथ्वी पर नजर रखने वाला।
3: अच्छा, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है दुनिया का पहला डुअल फ्रीक्वेंसी रडार। आसान भाषा में कहें तो इसके पास दो तरह की आंखें हैं, एक इसरो की बनाई एस बैंड और दूसरी नासा की एल बैंड।
2: दो आंखें मतलब
3: ये दोनों मिलकर बादलों में से भी, बारिश हो रही हो या रात का अंधेरा हो, तब भी पृथ्वी की सतह की एकदम साफ हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकती हैं। ये कमाल की बात है।
2: अरे वाह, मतलब मौसम कोई भी हो निगरानी रुकेगी नहीं। और सुनाए, ये हर 12 दिन में पूरी धरती को स्कैन करेगा, इसका असर क्या होगा फिर?
3: बहुत बड़ा असर। सोचिए, हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का एक डिटेल्ड हेल्थ चेकअप। इससे हम जमीन के अंदर की हलचल, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी आने से पहले कोई संकेत, या ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहे हैं,
2: हाँ हाँ, क्लाइमेट चेंज वगैरह के लिए,
3: बिल्कुल, समुद्र का लेवल कितना बढ़ रहा है, जंगल कट रहे हैं या नहीं, इन सब पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। और खेती के लिए तो ये वरदान जैसा है, मिट्टी में नमी कितनी है, फसल ठीक है या नहीं, ये सारी जानकारी मिल सकती है।
2: अच्छा,
3: ये स्वीपसार तकनीक से एक बार में 240 किलोमीटर चौड़ा एरिया स्कैन करता है। इसे GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया था।
2: कमाल है, मतलब विज्ञान, आपदा प्रबंधन, कृषि, क्लाइमेट चेंज, कितने सारे एरियाज में काम आएगा ये।
3: अच्छा, अगला है नासा का ट्रेसर मिशन। ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमारे सुरक्षा कवच,

0: उसके लिए है।
1: सही पकड़ा। ट्रेसर मिशन का काम यही समझना है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सूरज से आने वाले खतरनाक सोलर तूफानों से कैसे बचाता है और ये सोलर विंड से कैसे इंटरैक्ट करता है। ये जानना हमारी अपनी सैटेलाइट्स और स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी जरूरी है।
0: अच्छा हाँ।
1: इसे स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया।
0: ठीक है। और जापान का गोसैट GW, इसका फोकस ग्रीन हाउस गैसों पर है, क्यों?
1: जी हाँ, गोसैट GW मतलब ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल। ये दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों का उत्सर्जन कहाँ से कितना हो रहा है इस पर नजर रखेगा और साथ ही पानी के चक्र को भी समझेगा।
0: क्लाइमेट चेंज से लड़ने की जो कोशिशें चल रही हैं पूरी दुनिया में, उसके लिए इसका डेटा बहुत बहुत कीमती होगा। इसे H2A रॉकेट से लॉन्च किया गया है।
1: उधर यूरोप में ESA और एक UK कंपनी फ्रेजर नैश मिलकर इनविक्टस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। ये अंतरिक्ष यान को हवाई जहाज की तरह लॉन्च करने वाली बात है।
0: ये तो बड़ा क्रांतिकारी लग रहा है।
1: है भी, बिल्कुल क्रांतिकारी है। अभी रॉकेट कैसे सीधे ऊपर जाते हैं ना,
0: हाँ
1: इनविक्टस का लक्ष्य है हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ और लैंडिंग। मतलब जैसे हवाई जहाज उड़ता है और उतरता है वैसे ही।
0: अच्छा।
1: इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि स्पेसक्राफ्ट को बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा, रियूजेबल होगा और ईंधन भी बचेगा। तो सोचिए अंतरिक्ष यात्रा कितनी सस्ती और आसान हो सकती है।
0: हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा।
1: और वो Mach 5 से ज्यादा यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज चलने वाले हाइपरसोनिक यान बनाने का सोच रहे हैं।
0: जबरदस्त। अच्छा, अब चीन की बात करते हैं। Tianwen-2 मिशन, मैंने पढ़ा Tianwen का मतलब होता है स्वर्ग से सवाल पूछना, है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही मतलब है। जिज्ञासा है, हाँ, अंतरिक्ष के बारे में सवाल।
1: तो ये किन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है? क्षुद्र ग्रहों पे जा रहा है क्या?
0: हाँ, ये मिशन एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, मतलब क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के पास जा रहा है। खासतौर पे एक एस्टेरॉइड है 2016 HO3 और एक कॉमेट है 311 PN stars। इनका अध्ययन करेगा।
1: सिर्फ देखेगा या कुछ और भी?
0: नहीं, सिर्फ देखेगा नहीं, बल्कि वहां से मिट्टी पत्थर के नमूने सैंपल्स लेकर पृथ्वी पर वापस आएगा।
1: अरे वाह, सैंपल रिटर्न मिशन।
0: बिल्कुल। और इन सैंपल्स की स्टडी से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, जीवन के लिए जरूरी तत्व कहां से आए। बहुत फंडामेंटल सवाल है ये। इसे लॉन्च किया गया Long March 3B रॉकेट से।
1: यानी हमारे अतीत के राज खुलेंगे। अच्छा, उधर नासा के टेस्ट सैटेलाइट ने एक सुपर अर्थ खोजा है।
0: हाँ, टेस मतलब ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट। इसका काम ही है हमारे सौर मंडल के बाहर ग्रहों को खोजना, एक्सोप्लैनेट्स को।
1: हाँ,
0: तो टैस के डेटा से वैज्ञानिकों ने TOI 1846B नाम का एक ग्रह ढूंढा है। ये पृथ्वी से करीब 2 गुना बड़ा है, इसीलिए इसे सुपर अर्थ कह रहे हैं।
1: अच्छा, साइज की वजह से सुपर अर्थ।
0: हाँ, ये खोजें हमें ये समझने में मदद करती हैं कि ब्रह्मांड में और कैसे कैसे ग्रह हैं, क्या वहां जीवन हो सकता है।
1: इसराइल ने भी Dror-1 नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये।
0: बिल्कुल, ये इसराइल का अब तक का सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। हिब्रू में ड्रॉर का मतलब होता है आजादी या संप्रभुता।
1: अच्छा,
0: तो ये सैटेलाइट इसराइल को अपनी कम्युनिकेशन व्यवस्था में रणनीतिक तौर पर ज्यादा आत्मनिर्भरता देता है, जो उस रीजन के हालात देखते हुए काफी अहम है। इसे भी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 से ही लॉन्च किया गया।
1: स्पेसएक्स काफी लॉन्च कर रहा है आजकल।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और भारत में एक बड़ी खबर है। हैदराबाद की कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजीज, उन्हें देश की पहली प्राइवेट स्पेस बेस्ड इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। ये कुछ स्टारलिंक्स जैसा होगा।
0: हाँ, कह सकते हैं कि ये उसी दिशा में एक अहम कदम है। अनंत टेक्नोलॉजीज सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देगी, खासकर उन दूरदराज के इलाकों में जहां फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंचाना मुश्किल या महंगा है।
1: हाँ, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है।
0: बिल्कुल। तो ये भारत का अपना स्वदेशी विकल्प होगा स्टारलिंक या OneWeb जैसी विदेशी कंपनियों के सामने। डिजिटल इंडिया के लिए ये वाकई एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है।
1: सही बात है। तो अंतरिक्ष में तो काफी कुछ चल रहा है, अब जरा जमीन और हवा की तरफ आते हैं। मतलब रक्षा क्षेत्र में DRDO ने हाल में कई मिसाइलों का टेस्ट किया है ना?
0: हाँ, DRDO काफी एक्टिव रहा है जुलाई में। सबसे पहले अस्त्र मिसाइल की बात करते हैं। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, मतलब A2 air। इसकी असली ताकत है इसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज या BVR क्षमता, मतलब ये दुश्मन के विमान को तब भी मार सकती है जब वो फाइटर पायलट को अपनी आंखों से दिखाई न दे रहा हो, 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से।
1: अच्छा,
0: और जो सबसे बड़ी बात है हाल के चेस्ट की, वो है इसमें स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का इस्तेमाल।
1: स्वदेशी सीकर, ये क्या होता है?
0: सीकर मतलब मिसाइल की आंख, जो उसे लक्ष्य तक ले जाती है। पहले भारत ऐसी तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, अब ये मिसाइल खुद अपने लक्ष्य को ढूंढकर मार सकती है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।
1: ये वाकई बड़ी बात है। अच्छा, और ये ULPGM V3, इसके नाम में यू ड्रोन के लिए है क्या?
0: बिल्कुल, ULPGM यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल, मतलब ड्रोन से लॉन्च की जाने वाली सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल।
1: अच्छा, ड्रोन से हमला करने के लिए?
0: हाँ, ये हवा से जमीन पर हमला करने के लिए है, एयर टू सरफेस। पी मतलब प्रिसाइज यानी एकदम सटीक निशाना। सोचिए, ड्रोन दूर से ही दुश्मन के टैंक या बंकर पर अचूक निशाना लगा सकते हैं। दिन में इसकी रेंज 4 किलोमीटर है, रात में 2.5 किलोमीटर। इसे DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने मिलकर बनाया है।
1: और तीसरी कौन सी थी?
0: आकाश प्राइम। हाँ, आकाश प्राइम ये आकाश मिसाइल सिस्टम का नया बेहतर वर्जन है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू एयर।
1: अच्छा, ये एयर डिफेंस के लिए है?
0: एग्जैक्टली, इसकी रफ्तार Mach 3 से ज्यादा है, मतलब आवाज से 3 गुना तेज। और इसमें भी स्वदेशी सीकर लगा है। ये ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों समेत हर मौसम में दुश्मन के विमानों, ड्रोन या मिसाइलों को गिरा सकती है।
1: तो भारत अपनी मिसाइल ताकत काफी बढ़ा रहा है। उधर जापान ने भी Type 88 मिसाइल का टेस्ट किया, इसमें क्या खास है?
0: Type 88 सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू शिप। लेकिन देखिए, इसकी खासियत मिसाइल की ताकत उतनी नहीं है जितनी ये बात है कि जापान ने पहली बार अपनी जमीन से, होक्काइडो आइलैंड से, किसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: पहली बार अपनी जमीन से? पहले कहाँ करते थे?
0: पहले वे अक्सर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी देशों की टेस्टिंग रेंज का इस्तेमाल करते थे। तो ये उनकी अपनी रक्षा नीति में एक तरह के बदलाव का संकेत हो सकता है कि वो अब ज्यादा आत्मनिर्भर होना चाह रहे हैं शायद।
1: हाँ, ये दिलचस्प बदलाव है। अच्छा, चीन ने Pythian-2 नाम की हाइपोसोनिक मिसाइल टेस्ट की और उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड फ्यूल इस्तेमाल हुआ है, ये कुछ अलग है क्या?
0: हाँ, ये थोड़ा अलग है पारंपरिक मिसाइल ईंधनों से। इसमें केरोसिन के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड का मिक्सचर यूज किया गया है। ये एक लिक्विड फ्यूल है जो जलने पर, कहते हैं, कम प्रदूषण करता है।
1: अच्छा, इको फ्रेंडली जैसा कुछ?
0: हाँ, तुलनात्मक रूप से। और कुछ डिजाइन्स में ये हवा से ही ऑक्सीजन ले सकता है, जिससे अलग से ऑक्सीडाइजर ले जाने का वजन बच सकता है। तो ये मिसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में एक नया एक्सपेरिमेंट है जो शायद ज्यादा एफिशिएंट हो।
1: अब बात करते हैं नेत्र MK-2 प्रोग्राम की। नाम से ही ऐसा लगता है जैसे आसमान में भारत की निगरानी करने वाली आंखें।
0: एकदम सही समझा आपने। ये असल में एक हवाई जहाज एयरबस A321 पर लगा हुआ बहुत एडवांस्ड रडार सिस्टम है। इसे AWNCS यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं।
1: पहले भी था शायद नेत्र, ये नया है?
0: हाँ, पहले MK-1 था, ये MK-2 है। काफी बेहतर, ये चारों तरफ 360 डिग्री देख सकता है, एक बार में 8 से 10 घंटे तक हवा में रह सकता है, पहले वाले से ज्यादा। और इसकी नजर भी ज्यादा दूर तक जाती है, करीब 500 किलोमीटर।
1: 500 किलोमीटर, बाप रे।
0: हाँ, इतनी दूर से ही ये दुश्मन के विमान, मिसाइल या ड्रोन का पता लगा सकता है और हमें पहले ही आगाह कर सकता है। ये वाकई हवा में भारत की चौकस निगाहें होंगी। DRDO ऐसे 6 सिस्टम बनाने जा रहा है।
1: ये तो एयरफोर्स के लिए बिल्कुल गेम चेंजर जैसा हुआ।
2: श्रोताओ, एंट्रोपी अपने आप में एक बहुत ही अनोखा विषय है। जितना ही हम इसको समझते जा रहे हैं, उतना ही हमें ये जानने को मिल रहा है कि इसके बारे में जानना अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या है एंट्रोपी और कैसे ये हमसे जुड़ा है, आइए वार्ता के माध्यम से जानते हैं एंट्रोपी की दुनिया को डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी से।
3: एंट्रोपी का मतलब है किसी सिस्टम में अव्यवस्था या अनियमितता का माप। यही एक ऐसी मात्रा है जो किसी सिस्टम में मौजूद ऊर्जा की मात्रा को दर्शाती है, जो उपयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं है और व्यर्थ चली जाती है। इसे अक्सर अव्यवस्था या अनिश्चितता के रूप में भी वर्णित किया जाता है। एंट्रोपी किसी सिस्टम में मौजूद एक जीवन को जटिल बनाने वाली छिपी हुई शक्ति है। आपने ऊर्जा के विषय में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऊर्जा को देखा है? जिस तरह से दाब, आयतन या ताप को महसूस किया जाता है और मापा जाता है, एंट्रोपी यद्यपि इन्हीं की तरह एक भौतिक राशि है, किंतु इसे दर्शाने के लिए कोई भी भौतिक माप नहीं है। एंट्रोपी की मात्रा को मापा नहीं जा सकता है, किंतु एंट्रोपी में परिवर्तन को मापा जा सकता है। एंट्रोपी जटिल प्रतीत होती है, लेकिन यह सरल है। यह किसी प्रणाली में अव्यवस्था को मापती है। अपने बेडरूम की कल्पना कीजिए, साफ सुथरा और व्यवस्थित। यह कम एंट्रोपी है, लेकिन अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो अव्यवस्था फैल जाती है। फर्श पर कपड़े बिखर जाते हैं, हर जगह कागज़ ही कागज़। यह एंट्रोपी में वृद्धि है, अव्यवस्था की ओर। यह प्रवृत्ति भौतिकी का एक मूलभूत नियम है। ऐसी इसीलिए क्योंकि उदाहरण के लिए बर्फ के टुकड़े आपके पेय पदार्थों में पिघल जाते हैं, गर्म चीज़ें अपने आप ठंडी हो जाती हैं, ब्रह्मांड धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को संतुलित करता है, लोहे पर अपने आप जंग लग जाता है। इस तरह सब कुछ अपने आप समय के साथ साथ घट रहा है। यह घटनाएं एक तीर की तरह होती हैं, जिनमें विपरीत दिशा में आना बिना बाह्य ऊर्जा के असंभव है। मुख्य बात यह है कि अव्यवस्था कोई गलती नहीं है, यह स्वाभाविक है। व्यवस्था हमेशा कृत्रिम और अस्थायी होती है। अव्यवस्था स्वाभाविक रूप से होती है, जबकि व्यवस्था ऊर्जा लेती है। अपने हाल पर छोड़ देने पर ब्रह्मांड अराजकता की ओर प्रवृत्त होता है। आपका घर खुद ब खुद साफ नहीं होता। व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऊर्जा और प्रयास की आवश्यकता होती है। तारे जल जाते हैं, संरचनाएं और बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं और बर्फ पिघल जाती है। एंट्रोपी की पहचान का श्रेय जर्मन गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी रुडोल्फ क्लॉसियस 1822 में को दिया जाता है। क्लॉसियस ने ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण का अध्ययन किया और कहा, किसी कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में ऊष्मा बिना किसी बाह्य शक्ति के प्रवाहित नहीं हो सकती है, उसे ऊर्जा देनी ही होगी। उसने अनुभव किया कि ऊर्जा का केवल 1% ही वास्तविक कार्य में परिवर्तित होता है। इस तरह देखें तो एंट्रोपी ब्रह्मांड द्वारा समय पर लगाया गया एक टैक्स है। एंट्रोपी के विरुद्ध निरंतर संघर्ष ही हमारे अधिकांश कार्यों के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच निरंतर संघर्ष ही परिवर्तन और प्रगति का स्रोत है। चारों ओर देखो, हर जगह एंट्रोपी दिखाई देगी। ऊष्मागतिक के क्लॉसियस के दूसरे नियम के अनुसार जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, किसी भी पृथक या बंद प्रणाली की शुद्ध एंट्रोपी अव्यवस्था की डिग्री हमेशा बढ़ेगी या कम से कम वही रहेगी। आप इसे प्रकृति का टैक्स मान सकते हैं। समय के साथ एंट्रोपी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। समस्याएं आती हैं, आपका घर गंदा हो जाता है, आपके बगीचे में खरपतवार उग जाते हैं, व्यवसाय विफल हो जाते हैं, आपकी कॉफ़ी की गर्मी फैल जाती है, अपराध और क्रांतियां होती हैं और यहां तक कि रिश्ते भी टूट जाते हैं। अंततः सब कुछ स्वाभाविक रूप से क्षय होता है और अव्यवस्था हमेशा बढ़ती जाती है। प्रकृति में अधिकांश घटनाएं अप्रतिवर्ती होती हैं और इस तरह एंट्रोपी ब्रह्मांड में निरंतर बढ़ रही है। एंट्रोपी उन कुछ अवधारणाओं में से एक है जो समय के अस्तित्व का प्रमाण प्रदान करती है। समय का तीर इस विचार को दिया गया नाम है कि समय असममित और केवल एक ही दिशा में बहता है और वह भी आगे की ओर। कहते हैं, बीता हुआ कल कभी वापस नहीं लौटता। इस तरह एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया जिससे एंट्रोपी बढ़ती है, समय का तीर यह तय करता है कि जैसे जैसे हर पल बीतता है चीज़ें बदलती हैं और एक बार ये बदलाव हो जाने के बाद इन्हें कभी भी बदला नहीं जा सकता। स्थायी परिवर्तन मानव होने का एक मूलभूत हिस्सा है और उसकी पहचान है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, हम सभी बूढ़े होते जाते हैं। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। लगता है ये हमारे जीवन के आनंद और दुख का एक हिस्सा है, लेकिन ब्रह्मांड में वे भव्य और महा

0: काव्य चक्र शाश्वत और अपरिवर्तनीय प्रतीत होते हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। देखिए, ब्रह्मांड के जीवन में ठीक हमारे जीवन की तरह सब कुछ अपरिवर्तनीय रूप से बदल रहा है। उदाहरण के लिए, जब हम केसर डालकर चावल की खीर को हिलाते हैं तो केसर का चम्मच अपने आप चारों ओर फैल जाता है और पीला निशान बनाता है, ठीक खगोलीय एटलस में उल्का पिंड जैसा चित्र दिखाई देता है। लेकिन अगर इसे हम पीछे की ओर हिलाते हैं तो केसर फिर से एक साथ नहीं आएगा। दरअसल खीर को इसका पता ही नहीं चलता कि वह पहले की तरह पीली होती रहती है। क्या यह कुछ अजीब सा नहीं है? जिस तरह ऊर्जा कम उपयोगी और अव्यवस्थित अव्यवस्था की ओर बढ़ती है, उसी तरह व्यवसाय और संगठन भी होते हैं। अणुओं को या व्यावसायिक प्रणालियों और लोगों को एक व्यवस्थित अव्यवस्था में पुनर्व्यवस्थित करने में निरंतर ऊर्जा व्यय की जरूरत होती है। कल्पना कीजिए, हम एक कंपनी शुरू करते हैं जिसमें 20 लोग एक अस्पष्ट लेकिन महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ एक कार्यालय में काम करते हैं और उनका कोई भी नेतृत्व नहीं करता है। हम उनसे कहते हैं कि जब तक वे वहाँ काम करते रहेंगे, हम उन्हें वेतन देते रहेंगे। 2 महीने बाद जब हम वापस आते हैं तो पाते हैं कि 5 लोग नौकरी छोड़ चुके हैं, 5 एक दूसरे के साथ सो रहे हैं और बाकी 10 को पता ही नहीं है कि इन समस्याओं का समाधान कैसा किया जाए। कर्मचारी निश्चित रूप से अपने लिए निर्धारित लक्ष्य के ज़्यादा करीब नहीं हैं। अपने हाल पर छोड़ देने पर पूरा उद्यम बिखर जाता है, कंपनी खत्म हो जाती है, व्यवसाय के हर पहलू में एंट्रोपी होती है। कर्मचारी प्रशिक्षण भूल सकते हैं, उत्साह खो सकते हैं, काम में कोताही बरत सकते हैं, उपकरण खराब कर सकते हैं, अकुशल हो सकते हैं या अनुचित उपयोग के शिकार हो सकते हैं, उत्पाद पुराने हो सकते हैं या उनकी मांग कम हो सकती है। अच्छे इरादे भी एंट्रोपी को अराजकता की ओर बढ़ने से नहीं रोक सकते। सफल व्यवसाय एंट्रोपी को कम करने के लिए समय और धन का निवेश करते हैं। आवश्यक प्रयास के बिना व्यवसाय दिवालिया हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो एंट्रोपी विनाश के बीज बोती है। सौभाग्य से ऊष्मागतिक प्रणालियों के विपरीत एक व्यवसाय एंट्रोपी के प्रभाव को उलट सकते हैं। हालांकि रचनात्मकता और नियंत्रण के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। कर्मचारियों के लिए बहुत कम स्वायत्तता अरुचि का कारण बनती है, जबकि बहुत अधिक स्वायत्तता गलत निर्णयों का कारण बनती है। अतः स्पष्ट है कि अव्यवस्था कोई गलती नहीं है, यह हमारी स्वाभाविक आते हैं। व्यवस्था हमेशा कृत्रिम और अस्थायी होती है। क्या यह दुखद या निरर्थक लगता है? बिल्कुल नहीं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहाँ एंट्रोपी न हो, सब कुछ वैसा ही रहे जैसा हम उसे छोड़ते हैं। न कोई बूढ़ा होता है, न बीमार पड़ता है, न कुछ टूटता है, न खराब होता है, न बिखरता है। सब कुछ ज्यों का त्यों बना रहता है। यकीनन यह दुनिया नवाचार, रचनात्मकता, तात्कालिकता या प्रगति की आवश्यकता से रहित होगी। भविष्य में एंट्रोपी या व्यवस्था की कमी समय के साथ स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और यह एक बंद प्रणाली में अधिकतम पहुंचने की प्रवृत्ति रखती है। इसका मतलब है कि समय के साथ एक प्रणाली अधिक अव्यवस्थित होती जाती है और ऊर्जा कम होती रहती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी अंततः अपने चरम पर पहुंच जाएगी, जिसमें ऊष्मा मृत्यु या जिसे हीट डेथ कहते हैं हो जाएगी और ऊष्मा का कोई भी प्रवाह इधर से उधर नहीं होगा, जहां कोई भी उपयोगी कार्य नहीं किया जा सकता है। हमारे दैनिक जीवन में एंट्रोपी का मतलब है कि चीज़ें समय के साथ टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं या अव्यवस्थित हो जाती हैं। इसी तरह तकनीकी क्षेत्र में एंट्रोपी का मतलब है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है और कुछ ऊर्जा हमेशा खो जाती है या अव्यवस्थित हो जाती है। एंट्रोपी का उपयोग भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि यह हमें बताता है कि चीज़ें किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए, एक गर्म कप कॉफ़ी ठंडी हो जाती है क्योंकि उसकी गर्मी आसपास के वातावरण में फैल जाती है, जिससे एंट्रोपी बढ़ जाती है। एक इंजन के काम करते समय कुछ ऊर्जा हमेशा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है, जिससे एंट्रोपी बढ़ जाती है। संक्षेप में कहें तो एंट्रोपी समय के साथ अव्यवस्था और ऊर्जा के क्षय की प्रवृत्ति है, और यह हमेशा ब्रह्मांड और दैनिक जीवन दोनों को प्रभावित करती है। परिवर्तन लाने के लिए हमें सिस्टम द्वारा निकाली गई ऊर्जा से अधिक ऊर्जा सिस्टम पर लगानी होगी। इस तरह एंट्रोपी ब्रह्मांड का कभी न रुकने वाला कालचक्र है।
1: श्रोताओं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब दुनिया क्वांटम युग में प्रवेश के द्वार पर खड़ी है। भारत, चीन और दूसरे विकसित देशों में हाल फिलहाल हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स बदलते भविष्य की गवाही देते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आइए भेंटवार्ता के माध्यम से जानते हैं क्वांटम की दुनिया को श्री नितेश चौहान से। नितेश, सबसे पहले हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स आखिर है क्या चीज और क्या है क्वांटम की दुनिया।
2: देखिए, क्वांटम फिजिक्स असल में छोटे छोटे कणों की दुनिया की भौतिकी है, यानी परमाणु और उससे भी छोटे इलेक्ट्रॉन, फोटोन वगैरह कैसे चलते हैं यह बताती है। बड़े स्तर पर जो नियम काम करते हैं वही छोटे स्तर पर वैसे नहीं चलते, वहीं से शुरू होता है क्वांटम का जादू।
1: क्या ये रिसर्च और डेवलपमेंट में अभी चल रही है? यानी हम अगर अभी बात करें, हम इसे अपने चारों ओर तो नहीं देखते हैं, लेकिन इसकी रिसर्च कैसी चल रही है?
2: अभी सबसे बड़ा काम हो रहा है क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम कम्युनिकेशन पर। क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटर से कहीं तेज हो सकते हैं। इसके अलावा क्वांटम संचार से एकदम सुरक्षित नेटवर्क पर काम चल रहा है, जिसे क्वांटम इंटरनेट कहते हैं।
1: अच्छा, क्वांटम का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या रिश्ता है? अगर हम अपने आसपास देखें तो क्वांटम कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकता है?
2: असल में असर तो इसका पहले से ही है। आपके मोबाइल, कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर, लेजर, मेडिकल एमआरआई मशीन सब क्वांटम सिद्धांत से संभव हुए हैं। आगे जाकर दवा बनाने, बैटरियों व ऊर्जा सिस्टम में भी क्वांटम रिसर्च बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: अगर भविष्य की बात करें तो क्वांटम का असर कैसा हो सकता है? हमारी दुनिया कैसे बदल जाएगी?
2: भविष्य में हम क्वांटम कंप्यूटिंग से बेहद जटिल गणनाएं सेकंडों में कर पाएंगे। दवाओं के डिजाइन तेजी से होगी। जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े सवालों के मॉडलिंग में मदद मिलेगी। और संचार सुपर सिक्योर हो जाएगा, यानी हर क्षेत्र पर इसका असर पड़ेगा।
1: क्वांटम की रिसर्च की बात करें, भारत में तो ये रिसर्च अभी हाल फिलहाल में ये सामने आया है कि भारत ने एक सक्सेसफुल क्वांटम कम्युनिकेशन किया है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से देश इस समय सबसे आगे चल रहे हैं इस रिसर्च में?
2: इस समय अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन क्वांटम रिसर्च में सबसे आगे हैं। इसके अलावा भारत भी अभी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन इसके उदाहरण है।
1: कई बार हमने विज्ञान की किताबों में या फिर इंटरनेट वीडियोस में क्वांटम सुपर इम्पोजिशन का नाम सुना है। जो श्रोता हमारे नहीं जानते हैं उनके लिए बताइए कि क्वांटम सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या है।
2: क्वांटम सुपर पोजिशन का मतलब है कि क्वांटम कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है, जैसे कोई बंद कमरा जिसे खोलने से पहले हम नहीं जानते अंदर क्या है।
1: क्या यही वजह है कि क्वांटम फिजिक्स को समझना इतना मुश्किल है?
2: हाँ बिल्कुल, अलग ही दुनिया है। जहाँ रोजमर्रा की चीजें एकदम साफ होती हैं, वहीं क्वांटम में चीजें संभावनाओं पर टिकी होती हैं, इसलिए मुश्किल लगता है।
1: इसी के साथ हमने क्वांटम इंटेंगलमेंट, यानी हिंदी में से क्वांटम उलझाव बोल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत बार जब भी क्वांटम फिजिक्स का नाम सामने आता है, क्वांटम थ्योरी की बात आती है, क्वांटम इंटेंगलमेंट की भी बात की जाती है, ये क्या है?
2: यह वो घटना है जब दो कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, फिर भले ही वह कितने भी दूर हों, एक में बदलाव तुरंत दूसरे में दिखाई देता है। यह क्वांटम की सबसे रोमांचक खोजों में से एक है।
1: अच्छा, क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में बताएं। हम क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल गूगल या फिर दूसरी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप कर चुकी हैं। क्या क्वांटम कंप्यूटर्स रोजमर्रा की जिंदगी में आज के कंप्यूटर्स की जगह ले सकेंगे?
2: नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है। वे विशेष प्रकार की कठिन समस्याओं के लिए बहुत असरदार होंगे, लेकिन सामान्य कामों के लिए पारंपरिक कंप्यूटर ही चलेंगे।
1: क्वांटम रिसर्च में

0: अगर हम बात करें भारत में कौन सी योजनाएं हैं जो इस रिसर्च को आगे ले जाने का काम कर रही हैं।
1: भारत ने अभी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम इंटरनेट और क्वांटम सेंसर्स पर तेजी से काम हो रहा है।
0: क्वांटम फिजिक्स और दर्शन का भी कोई रिश्ता है क्या? फिलॉसफी की हम बात करें, हमारे भारतीय दर्शन में बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जहां ये बात कही जाती है कि हमारी फिलॉसफी और आज के जो क्वांटम फिजिक्स में काफी समानताएं हैं। इनमें कोई रिश्ता आपको दिखता है क्या?
1: जी हाँ, क्वांटम फिजिक्स ने दिखाया है कि ब्रह्मांड पूरी तरह निश्चित नहीं है, बल्कि संभावनाओं से भरा है। इससे विज्ञान और दर्शन दोनों को नया नजरिया दिया है।
0: आम आदमी के लिए क्वांटम फिजिक्स क्यों जरूरी है? क्यों हमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानना चाहिए?
1: देखिए, क्वांटम तकनीकी हमारे रोजमर्रा की चीजों में, जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट और मेडिकल टेक्नोलॉजी में तेजी से शामिल हो रही है। इसे समझना जरूरी है ताकि
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
3: राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेल दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी प्रयागराज की है।
4: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
5: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांत तिवारी स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। आज के अंक में आप सुनेंगे अर्जुन पुरस्कार विजेता जिमनास्ट आशीष कुमार से सुंदरम तिवारी की भेंटवार्ता और हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत और अंत में सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार।
6: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं सुंदरम तिवारी और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न केवल प्रयागराज बल्कि भारत को भी स्वयं पर गर्व करने के कई अवसर दिए हैं। प्रयागराज के जाने माने अर्जुन अवार्डी जिमनास्ट श्री आशीष कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में।
7: धन्यवाद
6: आशीष जी। एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। एक जो आम माता पिता है वो अपने बच्चों से ये बात कहते हैं एक उम्र में, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने इस कहावत को झुठला दिया। कितना मुश्किल था ये डिसाइड करना या कितना आसान था आपको अपने माता पिता को कन्विंस करना कि मैं एक खेल को अपने प्रोफेशन के तौर पे चुनूंगा? कैसे आपने कन्विंस किया था अपने माता पिता को?
7: देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर खेल का अपना अलग नेचर होता है
6: जी।
7: अपनी अलग प्रतिक्रिया होती है। जहाँ तक बात है जिम्नास्टिक की
6: जी,
7: तो जिम्नास्टिक्स में क्या है कि बच्चों की जो प्रशिक्षण है वो बहुत कम उम्र से स्टार्ट होती है
6: जी।
7: तो बच्चों का जो ट्रेनिंग है, जो एक्चुअल एज है जिम्नास्टिक में, वो 4 साल मानी गई है। अच्छा, उसके पीछे भी कारण है क्योंकि हमारे गेम में क्या है, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके शरीर का लचीलापन, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। 50% स्ट्रेंथ, 50% फ्लेक्सिबिलिटी, ये होना बहुत जरूरी है।
6: अच्छा,
7: तो जब बच्चा छोटा होता है, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है क्योंकि अभी उनकी शरीर विकसित हो रही है, हड्डियां लचीली हैं। आपने देखा होगा कि मटका होता है जब बनता है हाँ। तो वो आपके हाथ में होता है, आप उसको जिस शेप में ढालेंगे वो ढल जाएगा। तो जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इसीलिए कहा जाता है कि जिम्नास्टिक्स में जो बच्चा ढल जाता है वो कोई भी गेम हो वो अच्छा ही करेगा। इसीलिए आप देखिए कई ऐसी कंट्रीज, स्पेशली चाइना, जहाँ पे जिम्नास्टिक कंपलसरी है
6: जी।
7: कि बच्चों को पहले 5 साल जिम्नास्टिक करानी ही करानी है।
6: आपके केस में किसने निर्णय लिया? आपने निर्णय लिया कि मुझे खेलना है या आपके फादर मदर जो आपके पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजूंगा?
7: ऐसा था कि मैं 4 साल का था, मेरे फादर रेलवेज में थे, वो गाजियाबाद पोस्टेड थे।
6: अच्छा।
7: उनको तो पता भी नहीं था कि मेरा एडमिशन हुआ है। 1992 में नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जिम्नास्टिक का सेंटर जो बॉयज के अंदर है वो खुला, तो वहां से ये शुरुआत हुई। मेरे भाई ने मेरा एडमिशन कराया जिम्नास्टिक हॉल में
6: जी।
7: और मेरे फादर को नहीं पता था, मेरे फादर को बहुत बाद में पता चला कि मैं जिम्नास्टिक जाता हूँ, तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई जिम्नास्टिक की।
6: क्या बात है। जिम्नास्टिक में आपने जैसे बताया कि मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है, लचीलापन फुर्ती
7: जी
6: जरूरी होती है। 2006 सूरत जो पहला पदक शायद आपको मिला
7: जी,
6: पहली सफलता जब किसी न्यूज़पेपर ने आपका नाम शायद पहली बार छापा, एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, थोड़ा सा उस मूवमेंट के बारे में हमें बताएं जब पहली बार आपको लगा कि आप आशीष कुमार से एक सेलिब्रिटी आशीष कुमार के रूप में परिवर्तित हो गए।
7: ये 2006 मेरा सीनियर का पहला कॉम्पिटिशन था।
6: अच्छा।
7: और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो मैंने 2006 में खेला था, एक्चुअल में मेरी जो एज थी
6: जी
7: उस टाइम पे जूनियर की थी।
6: अच्छा।
7: बट मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बेटर थी, इम्प्रूव्ड थी, तो मुझे सीनियर खिलाया गया। और 2006 एशियन चैंपियनशिप से मेरा पहला सीनियर में जो कंपटीशन था वो कॉमनवेल्थ गेम्स का था।
6: अच्छा।
7: वहां से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि क्या होता है जब आप खेलते हैं तो आपको पता चलता है अरे ये इतना बड़े लेवल का कंपटीशन है। फिर 2006 एशियाई चैंपियनशिप जो सूरत में हुई थी
6: जी।
7: भारत के पास इससे पहले सीनियर एशियन कैटेगरी में कोई भी मेडल नहीं था। हम वहां गए ट्रेनिंग की और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वहां पे फ्लोर एक्सरसाइज जिसपे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था।
6: हाँ।
7: 2006 में ये हुआ और 2008 ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट भी आया हुआ था जिसने 2008 में गोल्ड लिया है फ्लोर पे।
6: अच्छा।
7: तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बट सबसे अच्छी चीज नर्वस नहीं था, एक एंजाइटी थी, डर था। और जब मैं फाइनल में पहुंचा, इंडिया से अकेले मैं ही फाइनल में पहुंचा था
6: जी।
7: और फ्लोर इवेंट मेरा बेस्ट इवेंट है उस पे था। इंडिया क्राउड, मैंने पहली बार देखा कि इंडिया में जिम्नास्टिक का कॉम्पिटिशन हो रहा है और मोर देन आई थिंक 3,000 to 4,000 पब्लिक उस स्टेडियम में थी। और बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट था इंडिया में, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इंडिया में इतना बड़ा कंपटीशन खेलने का।
6: अच्छा।
7: जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की एंग्जाइटी को कंट्रोल करके, और जब मेरा मेडल आया तो वो मतलब बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मेरे लिए एक्सपीरियंस था। एज कम थी तो मुझे इन सब चीजों का मतलब नहीं पता था कि पहला मेडल जो जीतता है तो कैसा फील होता है। बस मेरे लिए था कि मैंने मेडल जीत लिया, मैं बहुत खुश था, क्योंकि कम एज में बच्चों का माइंड दूसरे तरीके से काम करता है।
6: बिल्कुल।
7: अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार कंट्री का पहला मेडल एशियन चैंपियनशिप में सीनियर में एक बहुत बड़ी बात होती है।
6: निश्चित रूप से बड़ी बात होती है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल, फिर 2010 का ही ज्वांग खेल, 2011 का ढाका दक्षिण मध्य एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, और फिर 2011 में एक भारत का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जब मिला आपको, वो क्षण कैसा था?
7: देखिए, अर्जुन पुरस्कार जिस समय मिला, अब उसको मेरा बैड लक कह लीजिए, जिस टाइम पे अर्जुन पुरस्कार मिलना था उस समय हम लोग लंदन में कैंप कर रहे थे।
6: अच्छा।
7: क्योंकि उसी साल ओलंपिक से क्वालिफिकेशन होने थे जापान में, और सेम टाइम पे ही क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, राष्ट्रपति भवन में मिलता है, तो मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंज उस समय आया, क्योंकि मेरी पूरी टिकट्स बुक थी इंडिया आने की। अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि जिस डेट में ये पुरस्कार वितरण होने थे उसी डेट के एक दो दिन गैप में वर्ल्ड कप होने थे।
6: अच्छा।
7: बेल्जियम में। मेरे लिए चैलेंज ये था कि अगर मैं इंडिया ट्रैवल करता हूँ तो देखिए आप इतनी दूर से इंडिया ट्रैवल करेंगे, एक दिन आपको लेने में लगेगा और फिर सेम डे आपको वहीं से डायरेक्ट बेल्जियम जाना पड़ता, तो मेरा बीच का जो ट्रेनिंग था वो छूटता।
6: अच्छा।
7: आपको वहां पर ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता
6: जी।
7: तो उस टाइम पे मैंने कंपटीशन को सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे लिए उस समय वो जरूरी था, वो मेरा एक सेक्रीफाइस था जिसको मैं मिस करता, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑनर लेना अपने आप में एक ऑनर की बात है।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
7: लेकिन जैसा मैंने बोला उस टाइम पे मैं एज अ प्लेयर, तो मेरे लिए डिसीजन ये था कि ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जाके हमारा आगे के ओलंपिक्स के रास्ते खुलेंगे, तो वहां पे मैं उसमें नहीं गया था। फिर इंडिया आने के बाद उस समय जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अजय माकन, उनके थ्रू मैंने अपना अवार्ड लिया, बट उनसे भी वो अवार्ड लेना मेरे लिए बड़ा प्रेस्टीजियस था, क्योंकि जब छोटा था तो मैं सुनता था कॉमनवेल्थ मेडल, अर्जुन अवार्ड, मतलब लगता था कि ये वाकई बहुत बड़ी चीज है। हाँ। क्या होता है जब आपके पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास बहुत उपलब्धियां हैं, तो आप जब उसको देखते हैं ना, तो कई बार अगर आपको लगता है मैं कैपेबल हूं तो आप उस चीज को फील कर पाते हैं कि जब वो चीज हमारे नाम से जुड़ती है तो आपको वो 100 करोड़ जनता से ना अलग कर देती है।
6: बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद जब आप प्रयागराज आए, जो मित्र थे, माता पिता, उनकी प्रक्रियाएं कैसी रही?
7: क्या होता है नॉर्मली अपने जिम्नास्टिक में जब कोई मेडल लेता है तो लोग जाते हैं
6: जी,
7: एक नॉर्मल भीड़ होती है। हम ट्रेन से आ रहे थे, मैं थे, मेरे फादर, मदर और डॉक्टर यूके मिश्रा
6: जी,
7: हम सब साथ में ही ट्रेन से वापसी कर रहे थे, और मुझे लगा कि बड़ा मेडल है, लोग होंगे, बट लिटरली जब ट्रेन जंक्शन पे लगने लगी, आप सोचिए मुझे 300 मीटर दूर से ही ना ढोल नगाड़े की आवाज आने लगे।
6: क्या बात।
7: तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, मुझे लग रहा लोग आए हैं, बट लिटरली जब मैंने इंटर किया मुझे इतना क्राउड

0: इतना क्राउड, मुझे लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है, मतलब एक्सेप्शनल क्राउड, पूरा स्टेशन भरा हुआ था।
1: जी
0: मैं अपना पैर स्टेशन पर रख ही नहीं पाया, निकलते ही गोदी में लेके मुझे मिश्रा सर को, जो मेरे कोच थे, डीके राठौर, माले पे माला, और कोई भीड़ से निकल के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, यंग्स बच्चे जो नए ज्वाइन किए हुए थे, और स्टेशन पे बाकी लोग, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं उनको नहीं पता, लेकिन जब उनको भी पता चल रहा था तो वो भी क्राउड में सम्मिलित हो रहे थे,
1: जी
0: वो भी देखना चाह रहे थे कि भाई पहला मेडल जिसने लिया है कौन है। तो वो मेरे लिए मेरे लाइफ टाइम का एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है।
1: आपकी इस अचीवमेंट से हटके अब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते आपका जो ज्यादातर समय होगा वो निश्चित रूप से आप अपनी प्रैक्टिस पे देते होंगे। एकेडमिक्स जो आपकी एजुकेशन थी वो कैसे आप उसमें एजुकेशन और अपनी प्रैक्टिस में बैलेंस बनाते थे?
0: जिमनास्टिक्स में जैसे मैंने बताया, मैं नर्सरी में था जिस समय मैंने ज्वाइन किया, मैं
1: हाँ
0: चार
1: जी
0: साल का था,
1: अच्छा
0: तो क्या होता है नर्सरी प्रेप ये फिर भी मैनेजेबल होती है स्टडी।
1: अच्छा
0: जब 2013 में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला, टूलिट पीटर कप हंगरी बुडापेस्ट में,
1: अच्छा
0: उसको खेलने के बाद क्या होता है, अंडर 14 जब आप खेलने लगते हैं तो आपका ट्रेनिंग बर्डन बढ़ने लगता है, और जिमनास्टिक्स में हम लोगों की सुबह की ट्रेनिंग 4 बजे से होती है,
1: अच्छा
0: शाम को भी, मतलब एक दिन में 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग होती थी। 2013 के बाद मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं कई बार ऐसा भी होता था कि हफ्ते में 2 दिन ही स्कूल जाता था,
1: अच्छा
0: बट इंटरनेशनल खेलने के बाद, मैं आपको बताऊं, मैं नर्सरी से लेके 8 तक राजापुर में एक स्कूल है, वहां की प्रिंसिपल ने मुझे काफी सपोर्ट किया उस टाइम
1: अच्छा
0: पे। और फिर देखिए 2013 अगर आप देखेंगे तो काफी बैक की बात है। फिर स्कूल्स को क्या रहता है ना, उनको एक्सपेक्टेशंस कम होती है कि स्कूल से कोई बच्चा निकल के यहां तक जा सकता है, वो भी जिमनास्टिक जैसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि जिमनास्टिक्स को उस समय उतनी वो नाम नहीं मिला
1: हाँ उतनी
0: था,
1: पॉपुलरिटी
0: हाँ
1: नहीं थी इंडिया
0: पॉपुलरिटी नहीं
1: में।
0: थी, लेकिन जब मैं खेल के आया वहां से मैंने लगभग 5 मेडल जीते थे, तो स्कूल्स वाले काफी सपोर्ट करते थे और
1: कुल मिला के तालमेल बन गया
0: तालमेल बन
1: बन
0: गया।
1: गया। आशीष जी, एक सीनियर प्लेयर के रूप में आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं?
0: जो यंग बच्चे हैं,
1: जी
0: स्पेशली 4 से लेके 10 साल 12 साल तक के
1: जी
0: बच्चे, उनको डेफिनेटली स्पोर्ट्स में आना चाहिए, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
1: अच्छा
0: अभी गवर्नमेंट ने, अब देखिए खेलो इंडिया स्कीम्स है,
1: जी, मैं ये बात पूछना ही चाह रहा था कि जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों में तो जो व्यावसायिक तौर पे जो प्रोफेशनल स्टेडियम भी हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पर तो संभवतः हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गवर्नमेंट से ही होती हैं,
0: हाँ
1: तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं ये भी मैं
0: देखिए
1: पूछना चाह रहा
0: मैं
1: था।
0: उनके लिए स्पेशली आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा ऑब्जर्व रहा है, बड़े शहरों की उपेक्षा छोटे शहरों में टैलेंट बहुत ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है पेरेंट्स को अवेयर होने की।
1: अच्छा
0: देखिए क्या होता है, बच्चा छोटा है, 4 साल का बच्चा, उसको क्या पता क्या करना है, आपको पता है बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसे वो
1: जी
0: पता है, लेकिन अब पेरेंट्स को भी अवेयर होना है कि नहीं बच्चे को मुझे एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में डालना है,
1: जी
0: जिमनास्टिक में डाल दीजिए, बैडमिंटन में डाल दीजिए।
1: तो ये बेसिकली माता पिता की जिम्मेदारी है कि
0: जी
1: वो डिसाइड करे कि बच्चे को किस दिशा में भेजना है। ठीक
0: जरूर,
1: है, चलते चलते बस एक सवाल ये कि सफलता के क्षण तो सभी शेयर करते हैं, सभी एंजॉय करते हैं, सफलता के क्षण शायद एक स्पोर्ट्समैन के जीवन में कम ही होते हैं, असफलताएं और दबाव ज्यादा होते हैं, उनसे कैसे आप निपटते थे? और एक सवाल और कि जो युवा इस समय स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें?
0: देखिए जहां तक सवाल है असफलता का, तो स्पोर्ट्स का शब्द ही यही है कि आपको गिरना, खड़े होना,
1: जी
0: ये स्पोर्ट्स सिखाता है, ये आपको कोई और नहीं सिखा सकता। और शायद यही एक कारण है कि एक स्पोर्ट्समैन जब गिरता है, सफलता है, तो वो उसको मेंटली टफ बनाता है, और जो प्लेयर उससे जूझ के आगे निकलता है तो वो या तो इतिहास रचता है या तो अपना एक नाम बनाता है
1: जी
0: और अच्छी जगह पे सेटल होता है। और युवाओं को मैं एक बड़ी छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ,
1: जी
0: जो मेरे सीनियर्स डॉक्टर यूके मिश्रा जी ने मुझे बताया था,
1: जी
0: और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, लोगों की थिंकिंग है कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, जो मेन चीज है वो है समय। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 साल से लेके 18 साल तक ये आपका समय है काम करने का, चाहे आप स्टडी में करिए चाहे स्पोर्ट्स में करिए। जिसने अपने आप को इन 18 साल में जी तोड़ मेहनत कर दी किसी
1: जी
0: भी फील्ड में, मैं स्पोर्ट्स की भी बात नहीं कर रहा, चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स में तो है ही है, अगर इस समय आपने अपने आप को मेहनत करके ढाल दिया तो ये आप मान के चलिए आपका आने वाला समय आरामदायक होगा, लेकिन अगर इस समय आपने आराम कर लिया तो आगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा।
1: निश्चित रूप से आशीष जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण और रुचिकर बातें की हमसे, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आइए अब सुनते हैं

0: चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, भारत में इस खेल की लोकप्रियता क्या है और उसके समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह जी। चंद्रोदय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चंद्रोदय जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें।
1: मेरा नाम चंद्रोदय नारायण सिंह है
0: जी।
1: मैं अंतर्राष्ट्रीय हैमर थ्रोअर हूँ। प्रोफेशन से मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मौजूदा समय पर मैं इंडियन ऑयल में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ, यहीं प्रयागराज में।
0: आपके कोच और रुस्तम खान जी रहे हैं, आप लक्ष्मण अवार्ड 2012 के विजेता भी रहे हैं और जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आप 9 बार इस खेल के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2014 के फाइनलिस्ट भी आप रहे हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2013 जो कि पुणे में हुआ था उसके भी आप रजत पदक विजेता रहे हैं। तो आपका जो एक खेल यात्रा है उसको किस रूप में देखते हैं?
1: मैं अपने खेल यात्रा को ऐसे देखता हूँ जैसे मैंने अपनी लाइफ को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आज जो मैं पाया हूँ वो एक हर आदमी चाहता है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए
0: जी। हैमर थ्रो जो खेल है इसको आपने करियर के रूप में चुना है, आपने कब चुना और इस खेल को चुनने के लिए जो प्रेरणा इसके पीछे होती है वो क्या है?
1: इस खेल को चुनने की प्रेरणा मुझे मेरे मदर फादर से मिली थी। मेरे फादर खुद इंटरनेशनल हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो थे
0: जी।
1: मेरी मदर भी नेशनल हॉकी टीम की खिलाड़ी रही हैं, तो मुझे अपने परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट था स्पोर्ट्स करने के लिए
0: जी।
1: और मेरे गुरु भी जिनका आप नाम ले रहे हैं मोहम्मद रुस्तम खान साहब, ये इंडिया के सबसे बड़े हैमर थ्रोअर कोच कहे जाते हैं।
0: अगर भारत की बात करें तो क्रिकेट महत्वपूर्ण खेल है, लोकप्रिय भी है, उसके बाद बैडमिंटन वगैरह का नाम आता है। आजकल जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं उसमें जो स्थानीय लोकल जो खिलाड़ी हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, तो इससे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हैमर थ्रो जो खेल है चूंकि ये भारत में इतना लोकप्रिय नहीं है अन्य देशों की तुलना में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं या इसकी चुनौतियां क्या हैं?
1: हैमर थ्रो जो है ये यूरोपियन गेम्स है
0: जी।
1: एथलेटिक्स में एक गेम होता है थ्रो में, जैसे चार थ्रो होते हैं जेवलिन डिस्कस हैमर शॉटपुट, तो उस थ्रो में एक कैटेगरी होती है हैमर थ्रो। ये यूरोप से आया था। इसको कहा जाता है वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम। टेक्निकल की बात करते हैं तो वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम दो होते हैं, एक पोल वॉल्ट होता है, एक हैमर थ्रो है जिसको वर्ल्ड ने खुद सर्टिफाइड किया है कि मोस्ट टेक्निकल गेम। और इस गेम का सरकार ने जितना बढ़ावा दिया है समय कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज बहुत अच्छी है। हैमर थ्रो एक ऐसा खेल है कि गांव से जो बच्चे आते हैं वो इसको ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वो इसको ज्यादा महत्व समझते हैं शहर के मुकाबले, क्योंकि उनको मालूम है कि हैमर में समय देना पड़ता है, आपको 8 साल की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी तब आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, मतलब आपकी स्टार्टिंग में तो आपको 5 साल 7 साल 8 साल तो प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तब आप उसमें परफेक्ट होंगे। एक कहावत कही जाती है ना, प्रैक्टिस में मेक परफेक्शन
0: जी।
1: तो हम हैमर को इस रूप में देखते हैं।
0: आपने जो हैमर थ्रो खेल चुना उसकी भारत में जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकप्रियता कम है, तो इसको अगर कोई एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी है या शहरी पृष्ठभूमि का है वो अगर इसका चुनाव करता है तो उसके लिए क्या क्या कठिनाइयां सामने आती हैं और साथ ही साथ भारत में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा या निजी प्रयासों के द्वारा?
1: हैमर एक ऐसा गेम है जो इस टाइम हमारे गांव में बहुत ज्यादा एडवांस है। गांव के बच्चों को उसको खेलने में मजा आता है, उनको देखने में भी उतना अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि इसको करने के लिए। इसके साथ कठिनाई ये है कि ये आपको देखिए नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल हैमर थ्रो बनने के लिए आपको डाइट, उसके बाद रेस्ट आपकी कितनी है, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके साथ मेहनत कर सकते हैं।
0: आपने मेहनत की बात की लेकिन मेहनत के साथ साथ जब सुविधाएं मिलती हैं यानी तकनीक, जिसे आज के समय में हम कह सकते हैं, तकनीक का इस खेल में कितना योगदान है?
1: तकनीक का तो इसमें इस खेल में इतना योगदान है कि ये वर्ल्ड का विश्व का सबसे कठिन गेम कहा गया है। जो इसकी टेक्निक कही जाती है, जिस तरीके से इसको फेंका जाता है, वो एक तरह से मतलब कि बहुत चैलेंजिंग होता है एक आदमी के लिए। एक आदमी जब स्पोर्ट्स करने आता है तो हैमर जब उठाता है तो स्टार्टिंग मतलब देखने में तो अच्छा लगेगा कि ऐसे टर्न कर सकते हैं हम, लेकिन जब आप 7.5 किलो का हैमर उठाते हैं उसको स्विंग करते हैं तब आपको समझ में आता है कि इस गेम में हम जितनी टेक्निक, जितना हम नेचर से, जितना हम फिजिक्स से, बायोलॉजी जो हम जान रहे हैं उसका यूज करते हैं तो उसका हमको रिजल्ट मिलता है। अगर हम उसका रिजल्ट उसका यूज नहीं करेंगे तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं कि परफॉर्मेंस नहीं बढ़ना, मीटर चेज नहीं होना, जो टारगेट मिला वो टारगेट चेज नहीं हो पाते हैं।
0: आज भी ये खेल जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के पृष्ठभूमि के लड़के हैं या खिलाड़ी हैं वो इसको सहज रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें तो इस खेल में भारत के जो खिलाड़ी हैं उतना प्रतिनिधित्व करते हुए

0: नहीं देते हैं, क्या कारण है
1: थोड़ा
0: इसका?
1: सा भारत में थोड़ा सा टेम्परेचर की बात होती है, क्योंकि ये यूरोप से आया है, तो यूरोप आप जान रहे हैं कि ठंडा राज्य रहा है।
0: जी
1: भारत में आप गर्मी का, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है खिलाड़ियों को, लेकिन आप हैमर का, जहां तक हम देख रहे हैं कि ये 8-10 साल बाद, जैसे आज हमारे देश में नीरज चोपड़ा जी हैं
0: जी
1: जिन्होंने जेवलिन में नाम रोशन किया, नहीं अभी तक कोई जेवलिन भी नहीं जानता
0: जी
1: था,
0: जी
1: लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे ने ऐसा करके दिखाया कि लोग आज एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो को यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही एक समय आएगा, जैसे डिस्कस थ्रो था, विकास गौड़ा जी थे हमारे, कई ऐसे खिलाड़ी थे, अनिल कुमार जी थे, जिन्होंने उस खेल को बढ़ावा दिया और जिससे लोकप्रिय खेल हुआ। तो ऐसे अब हैमर का भी समय आएगा, हैमर को 7-8 साल लगेगा ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को।
0: किसी भी खेल के पीछे प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की एक महती भूमिका होती है।
1: जी
0: तो इस खेल के लिए भारत में जो ट्रेनिंग की स्थिति है और उसकी क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: चुनौतियां तो बहुत हैं।
0: जी
1: पहली चीज तो स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन में होना चाहिए, ज्यादातर उसको कोशिश करना चाहिए कि वो नॉर्मल आम जनता में नहीं समझे अपने आप को, क्योंकि वो एक खास चीज करने जा रहा है, तो उसको अपने आप को खास मानना पड़ेगा स्पोर्ट्स को करने के लिए।
0: जी चंद्रोदय जी, आपका एक लंबा खेल अनुभव रहा है, एक लंबा करियर रहा है, वर्तमान में आप सरकारी जॉब में हैं, तो कोई ऐसा यादगार अनुभव हो जिसे आप श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
1: मेरा यादगार लम्हा रहा है जब मैंने विश्व के सबसे बड़े
0: जी
1: हैमर थ्रो से मुलाकात की थी, जिन्होंने 1986 में 86 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिनको शायद ही लोग नाम सुने होंगे, यूरी सैदिक नाम था उनका,
0: जी
1: यूरोपियन थ्रो थे वो। एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब मैं उनके पास ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि जिस साल उन्होंने ओलंपिक मेडल लिया था, उनके जो कोच थे बंदर चुक साहब,
0: जी
1: वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे ओलंपिक में, कोच भी और उनके ट्रेनी भी। कोच थर्ड था और उनके ट्रेनी फर्स्ट सेकेंड थे। तो ये ऐसा यादगार पल था जिसको हमने कभी सुना था, जिनको हम मोबाइल पे और वीडियोस देख के सीखते थे, उनसे जाके सीखना का एक एक्सपीरियंस, जो हमको सरकार ने वो मौका दिया, फेडरेशन ने, साई ने, ओलंपिक संघ ने हमको जो मौका दिया, वो
0: जी
1: दुनिया में सबसे यादगार पल है हमारा।
0: और कोई अनुभव?
1: अनुभव तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं,
0: जी
1: अच्छे भी रहे हैं, खराब भी रहे
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: अच्छे अनुभव ऐसे ऐसे रहे हैं कि जहां उम्मीद भी नहीं थी वहां पर हम अपना बेस्ट करके गए। कई खिलाड़ी उन्होंने मतलब कि उम्मीद नहीं की थी कि हम बेस्ट हो सकता है, वहां बेस्ट हुए। कई जगह अनुभव ऐसे भी थे कि जहां हम पहले से तैयार थे कि ये क्वालिफाई भी करेंगे हम और हम खेलने भी जाएंगे, लेकिन वहां पे कहते हैं ना कि खिलाड़ी का दिन होता है, तो वो
0: जी
1: दिन हमारे नहीं थे, हम नहीं क्वालिफाई कर पाए। कई बार अफसोस भी हुआ, दिल भी टूटा, बहुत कुछ होते हैं, खिलाड़ी की जिंदगी बड़ी ऊपर नीचे चलती है।
0: जी चंद्रोदय जी, जब कोई खिलाड़ी एक मैदान पर प्रैक्टिस करता है और जब कंपटीशन के मैदान पर प्रैक्टिस करता है या नेतृत्व करता है देश का, तो उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं और कई बार हम सफल भी हो जाते हैं, तो सफल और असफल होने के बीच की किन किन चीजों की भूमिका होती है, क्या क्या चुनौतियां आती हैं जब हम नेतृत्व करते हैं और उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं?
1: देखिए, खिलाड़ी के लिए सफल असफल तो ये आम बात है,
0: जी
1: क्योंकि जितनी वो मेहनत करता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सफल असफलता खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है।
0: जी
1: आज असफल हुए हैं, कल नकद सफल होंगे ही, हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं, कभी ना कभी तो हम सफल होंगे।
0: क्योंकि आप एक हैमर थ्रो खिलाड़ी भी रहे हैं और एक आपका लंबा अनुभव रहा है, तो एक सफल हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए किस प्रकार की अनुशासन और दिनचर्या की आवश्यकता होती है?
1: एक हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ेगा।
0: जी
1: अगर ट्रेनिंग नॉर्मल रूटीन बताया जाए तो सवेरे 5 बजे उठना, 5 बजे से 10 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर अपने रिकवरी में चले जाना, फिर शाम में 2 बजे 3 बजे प्रैक्टिस पर उतरना, 9 बजे तक 8:30 बजे तक प्रैक्टिस करना, तो उसकी एक लाइफ बंधी हो जाती है कि दोस्त यार नहीं रहते हैं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है नहीं, उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था,
0: जी
1: तो एक दिनचर्या ये हो गई थी मतलब कि हमको अपने आप को सफल बनाना है बस।
0: आपने डाइट की बात की कि एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए,
1: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए।
0: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे डाइट की आपने बात की, तो डाइट में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करें।
1: देखिए, डाइट तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जितना चाहिए
0: जी
1: वो उतनी पूर्ण करना चाहिए उस खिलाड़ी को,
0: जी
1: क्योंकि एक खिलाड़ी अपने शरीर का दिन भर में प्रैक्टिस के टाइम कम से कम 10 से 12 लीटर पसीना बहाता है,
0: जी
1: तो उस पसीने को रिकवरी करने के लिए आप पानी से तो कर नहीं पाएंगे, तो
0: जी
1: आपके लिए उसको हिसाब से डाइट देनी पड़ेगी।
0: जी भारत में इस खेल की संभावनाओं और जो युवा इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: भारत में इस खेल की संभावना मुझे बहुत अच्छी दिखती है,
0: जी
1: और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल छोड़िए, आप रियल वर्ल्ड में आइए, आप चुनौतियों से देखिए, तब आपको बहुत मजा आएगा।
0: चंद्रोदय जी, आप स्टूडियो में आए और इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया। हमें उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं उनको लाभ अवश्य मिलेगा।
2: अब सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स ने बनाई अपनी जगह। एथलेटिक्स में पोल वाल्टर, देव मीना और कुलदीप कुमार ने एक ही दिन में दो बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर सुर्खियां बटोरी। और गुरिंदर वीर सिंह ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 10.09 सेकंड समय के साथ 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसके साथ ही 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। आज के अंक में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: खेल दर्पण।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति था, जिसे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किया गया।
5: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 10:25 हो रहे हैं।
6: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
7: सुनो ना।
8: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
8: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
8: मुझसे।
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
8: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
7: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 10:30 होने को हैं श्रोताओं, और अब वक्त है फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, आपकी फरमाइश का।

रात के सन्नाटे में जब चांदनी मुस्कुराए, रात के सन्नाटे में जब चांदनी मुस्कुराए, 10:30 का समय है, दिल का आलम छाए। आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूँ मैं आज, दिल की हर धुन को बनाऊंगी आपकी आवाज़। जी हाँ श्रोताओं, इसी के साथ आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और आज की होस्ट सोनिया खुकशाल। तो जी हाँ श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और अपने इस कार्यक्रम का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में सुनवाए जाते हैं आपको आपके पसंदीदा गीत आपके नाम और पतों के साथ। तो जल्दी से उठा लीजिए आपका मोबाइल और व्हाट्सएप कर दीजिए हमें आपके पसंदीदा गीत। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। तो जी हाँ श्रोताओं, अक्सर मैं कहा करती हूँ कि हमारे कुछ नियमित श्रोता हैं जो हमारे साथ घड़ी की टिक टिक के साथ ही जुड़ चुके होते हैं। तो चलिए सुनेंगे आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत, और साथ ही हम जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़ने वाले हैं वो भी हमें अपने जो हैं अपने पसंदीदा गीत हमें लिख कर भेज दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं आपके नाम और पते। तो हमारे जो पहले श्रोता हैं आज के, आप हैं बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक सुगुन शारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथ्वी सिंह। और साथ ही हमारे जो अगले श्रोता हैं आप हैं आदर्श नगर मालौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायन शर्मा, निमान शर्मा। और साथ ही हमारे साथ हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना और आमिर हुसैन बेगम, तैयब शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहाम हुसैन, परिवार के सभी सदस्य आप हमारे साथ जुड़े हैं। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बरेली नबई से हमारे, वारली नबई से हमारे साथ हैं नवाब खान, इसरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान। वर्णिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। तो श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म दूसरा आदमी से

0: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
2: तो श्रोताओं सुनेंगे आपकी फरमाइश में ये अगला गीत जिसकी फरमाइश करता हमारे साथ है परी महल कांसगंज से आबाद खान नबील खान आरफ खान खान इल्मा खान एम असफ सैफी मास्टर जाहिद अली मीरा सराय बदायू से और आफरीन खान जमीर खान। तो और अगर हम बात करें हमारे अगले श्रोता की तो आप हैं मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलबीर सिंह। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप हमारे साथ हैं और व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हमारे साथ हैं भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष। आदर्श नगर मालोड पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा शाइना शर्मा निवान शर्मा आमिर हुसैन बेगम तैयब शेख फौजिया शेख।

अधिल हुसैन, अरहान हुसैन परिवार के सभी सदस्य आप हमारे साथ जुड़े हैं पटियाली रोड गंज डुंडवारा से। श्रोताओं, अक्सर मैं कहा करती हूँ कि जो भी काम हम परिवार के साथ मिलकर करते हैं ना, तो उस काम को करने का मज़ा ही दोगुना हो जाता है। और अगर हम बात करें रेडियो सुनने की, तो उसके क्या ही कहने। देखिए, रात का समय है और सभी परिवार के सदस्य मिल करके रेडियो पर ये सदाबहार नगमे सुन रहे हैं, तो उसके तो क्या ही कहने। तो तहे दिल से आप सभी श्रोताओं का शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी के देहरादून केंद्र के साथ FM 100.5 MHz पर। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 10:46 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। तो श्रोताओं सुनेंगे कार्यक्रम में अगली फरमाइश, जिसके फरमाइश करता हमारे साथ हैं जलगांव जंक्शन से हमारे साथ हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और डॉक्टर अपेक्षा अमीन दीवान। और हनोई यूनिवर्सिटी से हमारे वियतनाम से हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर वसुधा बज्रसेन, डॉक्टर स्वर्ण लता युगेन और लीबी राजवर्धन। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेहरा, जहां आजाद नगर लक्षर हरिद्वार से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कस्बा चिलकाना जिला सहारनपुर से हमारे साथ हैं जारिफ अंसारी, नीम अंसारी, डॉक्टर आमिर मुन्ना नजीम। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से हमारे साथ हैं मोहम्मद वक्काक फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। तो श्रोताओं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म डॉन से।

क्या बात है, जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे। जी हाँ श्रोताओं, अभी आप ये बेहद ही खूबसूरत नगमा सुन रहे थे आप डॉन फिल्म से। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनेंगे कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत, जिसके फरमाइशकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मशहूर, साइना हसन, अक्षा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीम हसन जी। और अगर हम बात करें हमारे अगले श्रोता की, तो आप हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोथ, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोथ और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हमारे साथ हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। शेर वाली स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। तो श्रोताओं सुनेंगे आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। और साथ ही जसपुर उत्तराखंड से हमारे साथ है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत और मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। तो पेश है आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला बेहतरीन नगमा।

तो श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घड़ी की सुइयां टिक टिक टिक टिक करके आगे ही बढ़ती रहती है, और वो आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये कह जाती है कि समय अब हमें इशारा करता जा रहा है कि समय अपने जो है इस कार्यक्रम के अंतिम छोर पर है। और ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं कि इतने सारे जो हमारे प्यारे प्यारे श्रोता है सभी का नाम हम ले सकें, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी का नाम कार्यक्रम में शामिल हो और आपके पसंदीदा गीतों को हो कार्यक्रम में सुनवाया जाए। लेकिन फिर भी श्रोताओं, आपका ये प्यार और आपका ये साथ हम संग यूं ही बरकरार रहे, इसी के साथ ही हम आपको सुनवाएंगे आपके पसंदीदा गीत जो हमारे अगले श्रोता हैं। और आप हमारे साथ जुड़े हैं मारहड़ा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रशीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यसब अब्बासी, सिकंदरा राव से हमारे साथ हैं मुबीन अब्बासी और इसरत परवीन, राजेश शर्मा, मंजू शर्मा, निशांत माफ कीजिएगा राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा, आप हमारे साथ जुड़े हैं। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे जो अगले श्रोता हैं आप हैं हमारे साथ जुड़े हैं मनोज जेठवा और हर्षा जेठवा, आप हैं बोरा वकी नगर श्री रामपुर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम बात करें हमारे अगले श्रोता की तो आप हमारे साथ हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनीजा, पूनम गंगनीजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, गुरमीत सिंह मित्ता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से आप हमारे साथ जुड़े हैं, तहे दिल से आप सभी श्रोताओं का शुक्रिया। और जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहिदास चौक पढ़नपुर सिटी से हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के और साहिना परवीन, फातिमा खुशबू, आयजा मोहम्मद, अदीब मशरूर अली, खाला पार मुजफ्फरनगर से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो तहे दिल से आप सभी श्रोताओं का शुक्रिया। और आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख